एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये एफएम शिमला है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 मई 2026। इस समय सुबह के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

0: अब समाचार आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री तोम बेरेनसेन ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 2 दिन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और महामहिम राजा और महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड्स इन क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी देश है। नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार और यूरोप में 3रा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। दोनों देशों के बीच 2024-25 में 27 अरब $80 करोड़ का व्यापार हुआ था। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात UAE की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, LPG आपूर्ति, AI सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करना आसान बनाने और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपये से घटाकर 16.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट UG परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में

आप कर रहे हैं प्रभु वंदन एफएम शिमला पर हिमांजलि के साथ, और अब देवों के देव महादेव से आइए प्रार्थना करें शुभ आशीष की।

0: एफएम शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, और आज है शनि जयंती। तो शनि जयंती के शुभ अवसर पर आइए नमन करें कर्म फलदाता शनि देव को।
1: इनके भ्रमण काल में अगर शुभ दृष्टि रहती है तो मानव का अति उत्थान होता है, और यदि इनकी अशुभ दृष्टि होती है तो मानव के जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं, दुर्घटनाएं, अहित, व्यापार में हानि, ग्रह कलह, संतान की मृत्यु अथवा अपनी भी मृत्यु हो जाती है। अतः इनकी अशुभ दृष्टि को मिटाने हेतु, इन्हें प्रसन्न करने हेतु मानव को इनकी पूजा पाठ, मंत्र जाप आदि करना चाहिए, ताकि शनि देव जैसे महाग्रह के कोप से बचाव हो सके।

प्रभु कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे इसी कामना के साथ आज फिलहाल हिमांजलि में इतना ही। 6:40 हुए हैं सुबह के और आइए अब FM शिमला पर आपको सुनवाएं मानस गान। आवाज़ लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर और साथियों की है और सतीश भाटिया का संगीत है।

एक दिन काकभुशुंडी सुमेरु पर्वत के शिखर पर वट वृक्ष के नीचे बैठे लोमश ऋषि के पास जा पहुंचे। उनकी विनम्रता देख और दीन वचन सुनकर ऋषि ने उनके वहां आने का उद्देश्य पूछा। ब्राह्मण रूप काकभुशुंडी ने ऋषिवर से सगुण ब्रह्म की आराधना का ज्ञान देने की प्रार्थना की। मुनिवर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कहीं। कई उपमा उपमेयों द्वारा लोमश ऋषि ने ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण किया, फिर भी निर्गुण ब्रह्म मत काकभुशुंडी के हृदय में नहीं बैठ पाया।

एफएम शिमला पर अभी आप सुन रहे थे मानस गान। 6:50 हुए हैं सुबह के, तो आइए आपको सुनवाते हैं देश गान।

0: एफएम शिमला पर अभी आप सुन रहे थे देश गान। 6:57 होने को है, आइए करते हैं खुद को अपडेट न्यूज हेडलाइंस के साथ।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं जगमोहन शर्मा। प्रदेश में 51 शहरी निकायों के लिए कल मतदान होगा। इसके अलावा पिछले कल खुलेआम चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। प्रचार के अंतिम दिन दोनों प्रमुख दलों भाजपा व कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन में चुनाव प्रचार किया। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रदेश के चारों नगर निगमों में कांग्रेस पार्टी की स्थिति बेहतर है। दूसरी ओर पूर्व केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने भी सोलन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर झूठे वायदे कर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि सोलन सहित राज्य के अन्य स्थानों पर शहरी निकाय चुनावों में भाजपा की ही जीत होगी। राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने नगर निगम धर्मशाला और पालमपुर में कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा किया है। धर्मशाला में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इन दोनों शहरों को आधुनिक बनाने का रोडमैप तैयार किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कल नाहन नगर परिषद के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने नाहन में संकल्प पत्र जारी करते हुए बताया कि शहर के प्रत्येक वार्ड में पार्किंग व्यवस्था मजबूत की जाएगी और सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर में धुआं रहित वाहनों को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना चलाई जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट परीक्षा 21 जून को दोबारा आयोजित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को 14 जून तक प्रवेश कार्ड उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। एफएम न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही, नमस्कार।
2: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: एफएम शिमला सुन रहे हैं 103

0: मेगाहर्ट्ज पर और अब आप सुन पाएंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल रात नीदरलैंड्स पहुंचे। नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसन ने एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस यात्रा का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। हेग में प्रवासी भारतीय समुदाय ने सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। डच सैनिकों ने भी उनका औपचारिक रूप से अभिनंदन किया। यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन के साथ यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे। ये यूरोप का करीब 60 सबसे बड़ी औद्योगिक और तकनीकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अध्यक्षों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का मंच है। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया के साथ मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोलियम के निर्यात पर ₹3 प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को ₹23 से घटाकर ₹16.50 प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को ₹33 प्रति लीटर से घटाकर ₹16 कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक में मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एफएम शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:05 हो चुके हैं। अब आइए सुनते हैं चिंतन, प्रस्तुति डॉक्टर हुकुम शर्मा की है।

आसक्ति भी हमारे बहुत से दुखों की जड़ है। ये हमारे चित्त को विषयों से जोड़ती है और दुर्बल बना देती है। जीवन में वो व्यक्ति ही ज्यादा दुखी और असंतुष्ट हैं जो आसक्तियों के भ्रमजाल में गहरे फंसे हैं। इस संसार को ईश्वरमय समझकर सबसे प्रेम करना चाहिए। किसी से भी ईर्ष्या या द्वेष नहीं करना चाहिए। हमें मन, वचन तथा कर्म से किसी का भी अहित नहीं करना चाहिए। सबसे सुखी, खुशहाल और शांत वही लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर दिया है। मनुष्य अपने शरीर की रक्षा करता है, धन की रक्षा करता है, परंतु मन की रक्षा करने का उसे कोई ख्याल ही नहीं रहता। लेकिन ये बात जान लेना बेहद जरूरी है कि मन की रक्षा करने वाले ही इस संसार में महान बनते हैं। इस संसार में रहने से मन नहीं बिगड़ता, अपितु संसार का ध्यान करने से मन बिगड़ता है। संसार का ध्यान छूट जाए, ईश्वर के चरणों में मन लग जाए तो सुख शांति की कमी नहीं रहती। घर बाधक नहीं बल्कि घर की आसक्ति बाधक है। महाकवि तुलसीदास अपने अमर ग्रंथ रामचरितमानस में कहते हैं, जगते रहू 36 है राम चरण 36, तुलसी देखू विचार ही है ये मतौ प्रवीण। अर्थात संसार में विरक्त होकर राम जी के चरणों की ओर उन्मुख रहो, हृदय में विचार करके देखो, यही बुद्धिमानों का कार्य है। हमारा भ्रम ही है जो हमसे हजार कौतुक कराता है। हम वर्तमान में जिस घर द्वार, पुत्र पुत्री, भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी को अपना मान रहे हैं, इस जन्म के बाद उनका कहीं कोई महत्व रह जाने वाला नहीं है। इस जन्म के पहले भी हम कहीं ना कहीं जन्मे थे, वहां भी हमारे घर द्वार, सगे संबंधी सभी तो थे। कभी पशु, कभी पक्षी, कभी देवता, कभी राक्षस और कभी मनुष्य। न मालूम कितने रूपों में हम संसार में खेले हैं, परंतु वे पुराने पहले जन्म के घर द्वार, संगी साथी, स्वजन अब कहाँ हैं? हम उन्हें जानते तक नहीं, उनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं। हम उनके लिए कभी चिंता नहीं करते। हम जिनके बहुत अपने थे, बड़े प्यारे थे, उनको धोखा देकर खेल के बीच में ही उन्हें छोड़ आए, वे रोते ही रह गए और अफसोस कि हमें भी कुछ याद तक नहीं। उस समय भी हम आज ही की तरह उन्हें प्यार करते थे। उन्हें छोड़ने में हमें कष्ट भी हुआ था, परंतु जैसे आज हम उन्हें भूल गए हैं, वैसे ही वे भी नए खेल में लगकर, नए घर द्वार, संगी साथी पाकर हमें भूल गए होंगे। यही होता है। फिर भी हम इस भ्रम में पड़े हुए हैं कि इस संसार के घर द्वार, इसके सगे संबंधी, ये धन संपत्ति तथा शरीर मेरा है। बच्चे खेलते हैं, मिट्टी के घर बनाते हैं। जब तक खेलते हैं तब तक तेरे मेरे के लिए लड़ते झगड़ते हैं, परंतु जब खेल खत्म होने का समय आता है तब अपने ही हाथों से उन धूल मिट्टी के घरों को ढाकर हंसते हुए चले जाते हैं। लेकिन सयाने लोग धूल मिट्टी कांच पत्थर के घरों पर बच्चों को लड़ते देखकर उन्हें मूर्ख समझते हैं और उनकी मूर्खता पर हंसते हैं। परंतु बदले हुए अर्थों में क्या इंसान भी वही सब करने में व्यस्त नहीं है?

समाचार हर रोज की तरह आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन पाएंगे सुबह 8 बजे से लेकर 8:30 के मध्य, 12 बजे दिन में, 1 बजे से लेकर 1:10 के मध्य, दोपहर 2:15 पर, शाम 7:05 पर, रात 8:45 से लेकर 9:15 के मध्य और आखिर में रात 11 बजे से लेकर 11:10 के मध्य।

एफएम शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, और अब आइए आपको अपडेट कर देते हैं उन तमाम प्रोग्राम्स के साथ जो आज आप सुन सकते हैं एफएम शिमला से। वक्त प्रोग्राम हाइलाइट्स का है।

इसके अलावा प्रादेशिक समाचार का समय रहेगा सुबह 9:20 का, 11 बजे सुबह का, दोपहर 3 बजे, शाम 6 बजे और 7:45 का। FM न्यूज हेडलाइंस ये आप सुन पाएंगे 7:57 पर, सुबह 8:30 पर और 9:57 पर। आपकी मॉर्निंग को खास बनाने के लिए लेकर आएंगे हम अब से थोड़ी देर बाद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला में कुछ खास इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन व लॉट्स ऑफ एंटरटेनिंग म्यूजिकल नंबर्स। ओल्ड हिट्स लवर्स के लिए हम लाते हैं कुछ ना कुछ खास इस फ्रिक्वेंसी पर जो है 103.7 मेगाहर्ट्ज़। तो आप ओल्ड हिट्स सुन पाएंगे आज सुबह 11:05 पर, दोपहर 3:10 पर, रात 8 बजे और आखिर में रात 10:30 पर। गज़लों से सजे खूबसूरत प्रोग्राम में आप चलिएगा हमारे साथ रात 10 बजे से लेकर 10:30 पर, सिर्फ और सिर्फ FM शिमला पर।

हिमाचली संगीत का लुत्फ आप उठा सकते हैं सुबह 8:32 पर, 11:30 पर, दोपहर 2:30 पर और शाम 4:20 से विभिन्न बोलियों के कार्यक्रम में।

12:20 पर वक्त होगा महिलाओं के पसंदीदा कार्यक्रम महिला सम्मेलन का। इसी तरीके से युवाओं के लिए उनका पसंदीदा कार्यक्रम युवाने हम लेकर आएंगे आज 3:30 पर। तो आज क्या खास होगा इस कार्यक्रम में, जानने के लिए इंतजार करना होगा आपको दोपहर 3:30 का।

0: या शाम, हर दिन हर पल रहता है आपके लिए कुछ ना कुछ खास एफएम शिमला पर। इसी के चलते सुबह 9:30 पर आप और हम होंगे एक रेडियो जर्नी पर प्रोग्राम कुदरत के रंग में। लेकिन रात 9:30 पर आप और हम होंगे एक साथ उस सफर पर जिसे हम कहते हैं दिल की आवाज भी सुन। दोपहर 2 सुनिएगा संगीत के विविध रंग प्रोग्राम सबरंग में, और म्यूजिक मस्ती लाएंगे आपके लिए हम दिन में 1:10 से लेकर 2 तक। इतना ही नहीं, शाम 7:10 पर कृषि जगत कार्यक्रम आप सुन पाएंगे सिर्फ और सिर्फ एफएम शिमला पर। तो इन तमाम इंफोटेनिंग प्रोग्राम्स के लिए ट्यून इन रहिए 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला।

मस्त चुनो मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए FM

और भानुप्रिया वर्मा। सो आज इस वीकेंड पर सैटरडे मॉर्निंग आप और हम हैं एक साथ, तो हमारे साथ हैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन विद लॉट्स ऑफ एंटरटेनिंग म्यूजिकल नंबर्स। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, अर्ली मॉर्निंग सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि खुद को मोटिवेटेड रखिए और यकीन रखिए खुद पर कि हर हाल में आप ही को जीतना है। आप जीत जाएंगे सिचुएशंस, चाहे जो मर्जी, जैसी भी, कितनी भी क्रिटिकल क्यों ना हो, और आपको जीतना ही है, क्योंकि ना जाने कितने ही लोग ऐसे हैं जो आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हैं।

किया जाता था, लेकिन इंटरनेट फैक्स ईमेल के बाद टेलेक्स सर्विस पूरी तरह से ख़त्म हो गया। बात करो साल 1975 की, तो सिक्किम भारत देश का 22वां राज्य बना और नामग्याल राजवंश शासन का अंत हुआ। साल 2010 में राष्ट्रीय डेंगू दिवस हर साल 16 मई को मनाया जाता है 2010 से ही, और इसका मेन उद्देश्य या मेन मोटिव जो है वो है लोगों को जागरूक करना, अवेयर करना डेंगू के प्रति, और किस तरीके से वो अपना बचाव कर सकते हैं, रख सकते हैं, इसी बाबत जो है इस दिन को मनाया जाने लगा। साल 2013 की अगर बात करें तो अमेरिकन साइंटिस्ट ने ह्यूमन स्टेम सेल का क्लोन बनाया, जिससे कि रोगों के इलाज का रास्ता काफ़ी हद तक खुल गया। 1969 में सोवियत संघ का अंतरिक्ष यान वेनेरा 5 जो है शुक्र ग्रह पे उतरा। और इसके अलावा क्या कुछ खास था जानने के लिए आप रहिए हमारे साथ FM शिमला 103.7 MHz पर।

एफ एम शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। और अब आइए बात कर लेते हैं उन तमाम फैक्ट्स की जिनकी वजह से आज की तारीख जो है अपने आप में खास बन जाती है। जी हाँ, 16 मई क्यों है इतिहास के पन्नों में खास, चलिए अब कर लेते हैं उसकी बात। सबसे पहले बात करूँगी साल 1960 की, जब भारत और इंग्लैंड के बीच टेलेक्स सेवा की शुरुआत हुई। टेलेक्स एक ओल्ड इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस है जिससे इंटरनेट से पहले टेक्स्ट मैसेजेस को सेफली एक जगह से दूसरी जगह पर प्राइवेसी टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत पहुंचाया जाता था। टेलेक्स को टेलीप्रिंटर एक्सचेंज भी कहा जाता था और इसकी शुरुआत जर्मनी में साल 1930 में हुई थी। हमारे देश में 1960 से 1990 तक टेलेक्स सर्विस का भरपूर इस्तेमाल

0: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
1: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
0: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
1: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे गुड मॉर्निंग शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भानुप्रिया वर्मा के साथ। हिस्ट्री ऑफ द डे की बात हो रही थी कि आखिरकार 16 मई को ऐसी क्या कुछ खास घटनाएं हुई थी जिसकी वजह से आज का दिन अपने आप में बहुत ही खास है। तो चलिए अब मैं बात करती हूँ 1929 की, जब ऑस्कर अवार्ड्स की शुरुआत हुई और जापान की जिनको ताबेई ने 1975 को विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। 1960 की अगर मैं बात करूं तो थियोडोर मेमन ने पहला सफल लेज़र लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन बनाया, और इसका जो सबसे ज़्यादा मैं बोलूं फ़ायदा इस खोज का, वो विज्ञान, चिकित्सा, संचार और रक्षा क्षेत्रों में क्रांति लेकर के आया। FM शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। और भी है आपके लिए मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। फॉर दैट यू हैव टू ट्यून इन 103.7 मेगाहर्ट्ज। सुनते रहिए।

0: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
1: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
2: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
3: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

0: गुड मॉर्निंग शिमला सुन रही हैं जी हाँ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। इससे पहले कि हम कुछ और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं, वक्त एक संदेश का है।
1: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
2: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: तो जी सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ के औसम मौसम की। तो हालांकि जो है मौसम अपने आप में बहुत ही सुहावना बना हुआ है, और अगर हम आज के मौसम अपडेट्स की बात करें तो हल्के बादल छाए रहेंगे, गर्मी से राहत मिलेगी। और वैसे भी हिल्स क्वीन शिमला जो है वो अक्सर गुलजार रहती है यहाँ के खूबसूरत वादियों के साथ साथ ठंडी फिज़ाओं के साथ में, और इसी के चलते यहाँ पर सैलानियों का आना भी लगा रहता है। और दिल खोल करके, बाहें फैला करके पहाड़ों के रानी शिमला यहाँ आने वाले हर एक मुसाफिर का इस्तकबाल करती है, उनका स्वागत करती है। और इसी के साथ में अगर हम कुछ और ख़ास अपडेट्स की बात करें तो आप सभी लोग इस चीज़ से काफ़ी अच्छे से अपडेटेड होंगे कि अभी मिडल ईस्ट वॉर के चलते जो है काफ़ी ज़्यादा सिलेंडर्स या पेट्रोल्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें हाइक हो चुका है, 3 रुपये महंगा हो गया है पेट्रोल भी। और जिसके बाद जो है अगर हम शिमला शहर की बात करें तो उसमें पेट्रोल के जो दाम है वो 98.26 रुपीज़ जो है अब आपको चुकाने होंगे पर लीटर। वहीं पर अगर डीजल की हम बात करते हैं तो 90.9 रुपीज़ आपको पे करने होंगे फॉर पर लीटर अगर आप के पास अपना व्हीकल है तो। तो काफ़ी हद तक लोग जो हैं अभी मजबूर हैं, और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि प्राइस हाइक भी हुए हैं और पेट्रोल पंप्स पर एक आम नज़ारा देखने को मिल गया है, लंबी लंबी लाइनें हैं लोगों के प्राइवेट व्हीकल्स की, कमर्शियल्स की, जो कि मैक्सिमम जो है अपना टैंक फुल करके ही रखना चाह रहे हैं। इनफैक्ट काफ़ी लोग जो हैं रिज़र्व की भी डिमांड कर रहे हैं। सो ऐसा होता है कि नहीं होता है ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। अब सिचुएशंस बदली हैं, हालात बदले हैं, और इसके चलते हर मुश्किल समय में जिस तरीके से हम सभी ने काफ़ी पेशेंस के साथ में एक साथ रह करके जो है इससे पहले भी बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना किया है, सो ये वाली भी जो प्रॉब्लम है उम्मीद करते हैं जल्दी इससे पूरे विश्व को निजात मिलेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि हम सुबह सुबह का शो कर रहे हैं, पॉजिटिविटी की हम बात कर रहे हैं, और हमारा ये मोटिव रहता है कि आपको हम हमेशा अलर्ट

0: अपडेट रखें, जिसके चलते अपडेट करते करते जो है हम आप पहुंचते हैं एंटरटेनमेंट के दुनिया में भी। सो अब आपके लिए हम लेकर के आए हैं सौदा खरा खरा फ्रॉम गुड न्यूज़।
1: सारे सुनो सुनो,

गुड मॉर्निंग शिमला सुन रहे जी आप 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। तो चलिए अब रुख करते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन का। दरअसल हिमाचल प्रदेश पुलिस में हाल ही में भर्ती हुए हैं भारतीय सेना से सेवानिवृत्त 137 जवान, और पिछले कल यानी शुक्रवार को दीक्षांत समारोह के दौरान कांस्टेबल पद का उन्होंने कार्यभार भी संभाला है। और देखा जाए दोस्तों तो इन जवानों का दीक्षांत समारोह जो है वो प्रथम रिजर्व इंडिया बटालियन बनगढ़ में आयोजित हुआ है। भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद इन 137 जवानों को हिमाचल प्रदेश पुलिस में सेवा का अवसर प्रदान किया गया है।

एफएम शिमला सुन रहे हैं जी आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर. आप पहुंचे हैं बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर और चलते चलते सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि मौसम के जो मिजाज में है कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है और मौसम

0: विभाग के अनुसार केरल में मानसून की दस्तक 26 मई को आ सकती है, और वो लोग जहाँ पर मानसून का इंतज़ार हो रहा है बेसब्री से गर्मी से निजात पाने के लिए, उनके लिए एक राहत भरी खबर ये हो सकती है। वहीं पर अगर मैं एक और ख़ास इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहूँ तो वो ये है कि पेपर लीक के कारण हुई नीट यूजी 2026 की जो परीक्षा है वो दोबारा से 21 जून को होगी, और सरकार ने छात्रों को दोबारा से परीक्षा के लिए शहर चुनने का एक और मौका देने का फैसला किया है। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर छात्रों के परिवहन की व्यवस्था भी करेंगी, ऐसा कहा गया है। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर फिलहाल वक्त हो चला है खुद को अपडेट करने का, FM न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।
1: नमस्कार, FM न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं जगमोहन शर्मा। प्रदेश में होने वाले पंचायती राज चुनावों के लिए 26, 28 और 30 मई को मतदान होना है, लेकिन इससे पहले ही प्रदेश की 129 पंचायतें निर्विरोध चुन ली गई हैं। इनमें सबसे ज्यादा 42 पंचायतें शिमला जिला में निर्विरोध चुनी गई हैं। इसके अलावा सिरमौर जिला में 28, किन्नौर में 18, लाहौल स्पीति में 17, सोलन में 12, ऊना में 5, कुल्लू में 3 और चंबा, मंडी और कांगड़ा जिला में एक एक पंचायत निर्विरोध चुनी गई हैं। प्रदेश सरकार ने ऐसी पंचायतों को 25-25 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने डीएलएड सीईटी 2026 परीक्षा की नई तिथि घोषित कर दी है। बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ये परीक्षा पहले 31 मई को आयोजित होनी थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया है। अब ये प्रवेश परीक्षा 17 जून को आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा से संबंधित अन्य सभी नियम एवं शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी। प्रदेश में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों को कल चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। राज्य में इस बार पंचायत चुनाव 3 चरणों में करवाए जा रहे हैं। पंचायत प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्यों के चुनाव परिणाम मतदान वाले दिन ही घोषित कर दिए जाएंगे, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के मतों की गणना 31 मई को की जाएगी। नगर निगम शिमला में सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। सहब सोसाइटी से जुड़े ये कर्मचारी 10% वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। सहब सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष जसवंत सिंह ने कहा कि जनता से हर वर्ष 10% बढ़ोतरी के हिसाब से शुल्क वसूला जा रहा है, लेकिन निगम प्रशासन द्वारा सफाई कर्मचारियों के वेतन में नियमों के अनुसार वृद्धि नहीं की जा रही है। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कल रविवार को पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आईपीएल का अहम मुकाबला खेला जाएगा। पंजाब किंग्स की टीम को 10 और 14 मई को धर्मशाला में होने अपने दोनों ही मैचों में हार का सामना करना पड़ा था। प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए पंजाब किंग्स को ये मैच जीतना बहुत जरूरी है। FM न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
2: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: अब आप सुन पाएंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने की सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए

0: उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। यूएई ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में यूएई गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और एलपीजी भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में यूएई की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने एलपीजी पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
2: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में, जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर ये शुल्क 23 रुपये से घटाकर 16 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।

0: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं वो 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
3: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहां प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महा आवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
4: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
2: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गईं। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में 2 दिन की वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इजराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज़ुद्दीन और गोह श्रीफेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य

0: सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटन्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मेमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत और यूएई के बीच एलपीजी की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, खत्म होगा एलपीजी संकट, यूएई से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हमलों की निंदा की। लोकसत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा यूएई। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है, मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिंदुस्तान की सुर्खी है, धार भोजशाला मस्जिद नहीं वाग्देवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, नीट यूजी की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी, लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी ये परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है। साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी शिक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगे, सीएनजी के दाम 2 रुपए बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप, नाम लिए बिना यूएई पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मॉनसून, समय से 4 दिन पहले आएंगी बौछारें।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद। द हेडलाइंस: इंडिया एंड द यूएई साइन स्लू ऑफ एग्रीमेंट्स इंक्लूडिंग सेटिंग अप स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम एंड गैस रिजर्व्स इन इंडिया। Prime Minister Narendra Modi reaches Netherlands on second leg of his five-nation tour. Prime Minister Modi rejects media report imposing tax on foreign travel. CBSE announces window for re-evaluation of answer sheets

0: में कांग्रेस अपनी शानदार जीत का परचम लहराएगी। प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 10 श्रेणियों के व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर ₹1 प्रति यूनिट बिजली सेस लगा दिया है। इस संबंध में प्रदेश के ऊर्जा सचिव की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसे तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। नई व्यवस्था के अनुसार इन 10 श्रेणियों में बिजनेस हाउस, निजी कार्यालय, निजी अस्पताल, पेट्रोल पंप, होटल एवं मोटल, निजी नर्सिंग होम, निजी शोध संस्थान, निजी कोचिंग संस्थान, शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स शामिल हैं। प्रदेश सरकार के इस कदम को आर्थिक संसाधन मजबूत करने और अतिरिक्त राजस्व जुटाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिक विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है एक सतत भविष्य के लिए प्रकाश, जो इस बात पर केंद्रित है कि प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकियां, ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्था, हरित विनिर्माण और बेहतर कृषि पद्धतियों के माध्यम से स्थिरता में कैसे योगदान देती है। इस अवसर पर यूनेस्को ने वैज्ञानिक सहयोग को मजबूत करने और शांति और सतत विकास के लिए प्रकाश की शक्ति का उपयोग करने का आह्वान किया है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मॉनसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये दिवस मच्छरों के प्रजनन को रोकने के उद्देश्य से सरल नियंत्रण रणनीतियों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसमें रुके हुए पानी को हटाना और जल भंडारण टैंकों का उचित रखरखाव शामिल है। FM News Headlines में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
1: FM शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 MHz पर, और अब आइए आपको सुनवाते हैं हिमाचली लोकगीत। शुरुआत कर रहे हैं सरिता बुशहरे की आवाज में गाए इस लोक भजन के साथ।

0: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।
1: हर खुशी अब लगे नमी,
0: मस्त चुनो मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए FM।

0: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
1: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
0: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
1: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

हिमाचली लोक संगीत का लुत्फ आप उठा रहे हैं शारदा शर्मा और तारावती की आवाज़ में गाए इस लोकगीत के बाद आपको सुनवा रहे हैं रोहित ठाकुर की आवाज़ में ये गीत।

इसी नाटी के साथ फिलहाल लोक संगीत के इस कार्यक्रम को यहीं पर थामते हैं। एफएम शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अब ले चलते हैं आपको फिल्म संगीत की दुनिया में।

0: बिल्कुल मोहब्बत है जी, और ये मोहब्बत यूं ही बरकरार रखिएगा एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ के साथ, और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप सुनते रहिए एफएम शिमला।
1: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
2: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
3: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
4: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

वेल इसी के साथ अभी फिल्म म्यूजिक में इतना ही. एफएम शिमला सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज पर. और अब आइए आपको अपडेट कर देते हैं तमाम प्रोग्राम्स के साथ जो आप सुन सकते हैं आज आकाशवाणी शिमला के मुख्य चैनल से. 9:30 पर सुबह आप सुन पाएंगे शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरबेला, जबकि रिमझिम का समय रहेगा सुबह 10:00 का. महिला सम्मेलन सुनिएगा 12:20 पर और अपना पसंदीदा कार्यक्रम

सैनिकों के लिए सुनिएगा जरूर 1:10 पर। सुनहरी किरणें आज आप सुन सकते हैं 2:00 और फिर हिमगुंजन का समय रहेगा 2:30 का। हिमाचल की विभिन्न बोलियों के कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 4:20 से और आज सबसे पहले आप सुन पाएंगे चंबियाली कार्यक्रम। मंडियाली कार्यक्रम का समय रहेगा

0: कांगड़े कार्यक्रम के लिए आपको इंतजार करना होगा शाम 6:06 का, और महास्वी कार्यक्रम आपके लिए पेश किया जाएगा शाम 6:35 पर। इसके अलावा कृषि बागवान भाइयों और बहनों के लिए हम कार्यक्रम लाते हैं कृषि जगत, तो आज भी ये कार्यक्रम आप अपने निश्चित समय पर सुन पाएंगे शाम 7:10 पर। रात 8 सुनिएगा धारा रे गीत। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात 9:30 पर आप सुन पाएंगे राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती। और आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से ही आप सुन पाएंगे रात 10 से संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। तो ये थी जानकारी उन तमाम प्रोग्राम्स की जो आज आप सुन सकते हैं आकाशवाणी शिमला के मुख्य चैनल से। आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला।
0: एफएम शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। और तमाम इंफोटेनिंग प्रोग्राम्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।
2: 20 मिनट होने को हैं, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र के साथ साथ AIR FM शिमला पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार DTH पर भी सुने जा सकते हैं।
3: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
4: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
5: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 से दोपहर 3 तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
6: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के 51 शहरी निकायों के चुनावों के लिए कल होगा मतदान। कुल 1147 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश सरकार ने पूरी की अपनी सभी चुनावी गारंटियां, चुनावों में कांग्रेस की जीत का किया दावा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते चुनावों में सबक सिखाने को जनता तैयार। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने युवा पीढ़ी से देश की पवित्र वैदिक संस्कृति से जुड़ने का किया आह्वान। और लाहौल स्पीति जिला के लोगों को अब बर्फबारी, भूस्खलन और सड़क बंद होने की स्थिति में ड्रोन से मिलेंगी दवाइयां और जरूरी राहत सामग्री। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 51 शहरी निकायों के चुनावों के लिए कल मतदान होगा। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। कुल 439 पदों के लिए होने वाले इन चुनावों में 1147 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 4 नगर निगम सहित 25 नगर परिषद और 22 नगर पंचायतों में ये मतदान होगा। इन चुनावों में कुल 3,60,859 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 1,808 मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। नगर पंचायत व नगर परिषदों में मतों की गणना कल मतदान के बाद होगी, जबकि नगर निगम चुनाव के लिए पड़ने वाले वोटों की गिनती 31 मई को की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि 5 गुटों में बंटी भाजपा

0: इन चुनावों में जीत के झूठे सपने देख रही है। सोलन में उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा पूरी तरह से आपसी लड़ाई और अंदरूनी खींचतान के दौर से गुजर रही है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश सरकार ने अपनी सभी चुनावी गारंटियां पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम सहित शहरी निकायों के चुनाव में कांग्रेस को भरपूर समर्थन मिल रहा है और निश्चित तौर पर इन चुनावों पर कांग्रेस की जीत होगी। इस बीच मुख्यमंत्री आज दिल्ली रवाना होंगे। वे कल दिल्ली से तिरुवनंतपुरम जाएंगे। उनका 18 मई को केरलम के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने का कार्यक्रम है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों और झूठी गारंटियों से प्रदेश की जनता का मोह भंग हो चुका है और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में लोगों ने कांग्रेस को सबक सिखाने का मन बना लिया है। मंडी में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने प्रदेश की चारों नगर निगमों में भाजपा की जीत का दावा किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि नगर निगम चुनाव महज स्थानीय चुनाव नहीं बल्कि प्रदेश में कांग्रेस की विदाई की पटकथा लिखने वाले साबित होंगे।
1: मैं सभी जगह जाकर के आया हूं। मैं पालमपुर भी जाके आया, धर्मशाला भी जाकर के आया हूं और उसके साथ साथ में मैं सोलन भी जाकर के आया हूं। सभी जगह इस तरह का वातावरण है। प्रदेश की सरकार के खिलाफ इतना भयंकर गुस्सा लोगों के मन में है, लोग सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं और परिणाम जब निकलेगा आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में चारू कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी की निगम बनेगी।
0: प्रदेश में 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए प्रत्याशियों को कल चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। प्रदेश में इस बार तीन चरणों में ये चुनाव करवाए जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में प्रत्येक पद के लिए अलग अलग रंग के लगभग 60 लाख मतपत्र छपवाए गए हैं। हर पद के लिए अलग अलग रंग निर्धारित किया गया है। पंचायत सदस्य के लिए सफेद रंग, उप प्रधान पद के लिए पीला, प्रधान पद के लिए हल्का हरा रंग, पंचायत समिति उम्मीदवार के लिए गुलाबी और जिला परिषद उम्मीदवार के लिए हल्का नीले रंग का मतपत्र निर्धारित किया गया है। पंचायत प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्यों के चुनाव परिणाम मतदान वाले दिन ही घोषित किए जाएंगे, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के वोटों की गिनती 31 मई को होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा है कि प्रदेश के चार नगर निगमों सहित नगर निकायों के चुनावों में कांग्रेस जीत का परचम लहराएगी। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि इन चुनावों में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जीत हासिल कर क्षेत्र के विकास में राज्य सरकार की नीतियों व निर्णयों को जन जन तक पहुंचाएंगे। उन्होंने लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने कहा है कि चुनावी गारंटियों के दम पर सत्ता हासिल करने वाली कांग्रेस सरकार के लिए अब यही गारंटियां मुसीबत साबित हो रही है। शिमला जिला के ठियोग में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान निधि से लेकर रोजगार के वादों तक सभी गारंटियों का परिणाम धरातल पर शून्य है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवा पीढ़ी से देश की पवित्र वैदिक संस्कृति से जुड़ने का आह्वान किया है। बेंगलुरु में वेद आगम संस्कृत महापाठशाला में विद्यार्थियों व विद्वानों से संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे संस्थान देश की सनातन सांस्कृतिक व आध्यात्मिक परंपरा के जीवंत प्रतीक हैं। राज्यपाल ने कहा कि ऐसे गुरुकुल हमारी सांस्कृतिक व आध्यात्मिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की पुनः परीक्षा कराने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी और CBI इस मामले की जाँच कर रही है। NTA ने बताया कि उम्मीदवार 21 मई तक अपनी पसंद के अनुसार अपना वर्तमान पता व पहले और दूसरे परीक्षा के शहर का चयन अपडेट कर सकते हैं। परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएंगी। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के लोगों को बर्फबारी, भूस्खलन और सड़क बंद होने की स्थिति में ड्रोन के माध्यम से दवाइयां और जरूरी राहत सामग्री मिल पाएंगी। हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता के अनुसार DDMA ने खोज व बचाव कार्यों के लिए अत्याधुनिक रेस्क्यू ड्रोन

0: ज्ञापन खरीदा है।
1: दुर्गम जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में अब आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों को आधुनिक तकनीक का मजबूत सहारा मिल गया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने खोज और बचाव कार्यों के लिए एक अत्याधुनिक रेस्क्यू ड्रोन खरीदा है। इस हाईटेक ड्रोन का सफल प्रशिक्षण श्रृंखला दर्रा में लगभग 16,580 फीट की ऊंचाई पर किया गया, जहाँ इसने राहत सामग्री पहुँचाने की क्षमता का प्रभावी प्रदर्शन किया। ये ड्रोन करीब 30 किलोग्राम तक का भार उठा सकता है और 18,000 फीट से अधिक ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। ड्रोन में नाइट कैमरा, 10 गुना जूम, ऑटोमेटिक रिटर्न सिस्टम और तेज हवाओं में भी काम करने जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। प्रशासन का कहना है कि बर्फबारी, भूस्खलन और सड़क बंद होने जैसी स्थितियों में ये ड्रोन दूरस्थ इलाकों तक दवाइयां और जरूरी राहत सामग्री तेजी से पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय का राष्ट्रीय न्यास अधिनियम एक मजबूत कानूनी व कल्याणकारी निकाय साबित हो रहा है। ऊना जिला में राष्ट्रीय न्यास द्वारा पंजीकृत संगठनों के माध्यम से बौद्धिक दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे ऊना जिला संवाददाता।
2: राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए ऊना जिला में उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय स्थानीय समिति के माध्यम से बौद्धिक दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण हेतु अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले जिन दिव्यांगजनों को पारिवारिक संरक्षण उपलब्ध नहीं है, उन पात्र व्यक्तियों के लिए स्थायी अथवा सीमित अवधि के विधिक संरक्षक नियुक्त किए जाते हैं। ऊना जिला में अब तक 113 स्थायी और 6 सीमित कानूनी संरक्षक नियुक्त किए जा चुके हैं। ऐसे दिव्यांगजनों के पुनर्वास और सामाजिक समावेश हेतु जिला स्तरीय स्थानीय समिति सामाजिक स्वयंसेवी संस्था आश्रय की मदद से पात्र व्यक्तियों को कानूनी संरक्षण और कौशल विकास के माध्यम से भी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा।
0: और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला के शब्द हैं, 2 लाख व्यावसायिक उपभोक्ताओं को झटका, 1 रुपए यूनिट महंगी हुई बिजली। दैनिक जागरण ने लिखा है, हिमाचल में व्यावसायिक उपभोक्ताओं को मिलेगी महंगी बिजली। दिव्य हिमाचल की एक खबर है, पुलिस कर्मियों पर केस चलाने से पहले लेनी होगी सरकार की मंजूरी। हिमाचल दस्तक के अनुसार, प्रदेश में शहरी निकायों के लिए चुनावी शोर थमा, अब डोर टू डोर प्रचार शुरू। मौसम से जुड़ी खबर को दैनिक भास्कर ने शीर्षक दिया है, बारालाचा शिंकुला दर्रा खुलने के बाद बर्फबारी देखने उमड़े पर्यटक, आज बारिश का येलो अलर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 51 शहरी निकायों के चुनावों के लिए कल होगा मतदान, कुल 1,147 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश सरकार ने पूरी की अपनी सभी चुनावी गारंटियां, चुनावों में कांग्रेस की जीत का किया दावा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते चुनावों में सबक सिखाने को जनता तैयार। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवा पीढ़ी से देश की पवित्र वैदिक संस्कृति से जुड़ने का किया आह्वान। और लाहौल स्पीति जिला के लोगों को अब बर्फबारी, भूस्खलन और सड़क बंद होने की स्थिति में ड्रोन से मिलेंगी दवाइयां और जरूरी राहत सामग्री। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
3: आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
4: एफएम शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। 9:30 हो चुके हैं और ये वक्त है आपके अपने जाने पहचाने प्रोग्राम कुदरत के रंग का। तो चलिए इस खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज करते हैं इस म्यूजिकल नंबर के साथ और आकर आपको बाद में बताएंगे कि आखिरकार आज की हमारी रेडियो जर्नी किस ट्रैवल डेस्टिनेशन की होने वाली है।

0: जी एफएम शिमला सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम जाएंगे आपको लेकर एक बहुत ही शानदार जगह जो कि हम अक्सर आपको लेकर के जाते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा।
1: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
2: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
1: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
2: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
4: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
2: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: तो जी, कुदरत के रंग सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और मैंने आपको बताया था कि आखिरकार हमारा जो आज का ट्रेवल डेस्टिनेशन है उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो जी, हम आपको लेकर के जा रहे हैं शिमला से तकरीबन 180 किलोमीटर दूर सराहन। सराहन जो कि हिमाचल प्रदेश का एक बेहद खूबसूरत शहर है, ख़ास तौर पर माँ भीमा काली के प्रसिद्ध मंदिर के लिए जाना जाता है। इसे किन्नौर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, और सराहन का जो है दोस्तों वो ख़ास बनता है सात बहती सतलुज नदी के लिए। सराहन को जो है शोणितपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। आई रिपीट अगेन, सराहन को शोणितपुर के नाम से भी जाना जाता है, और किसी समय में इसे बाणासुर की राजधानी भी कहा जाता था। तो जब भी बात आती है सराहन की तो ऑटोमेटिकली माइंड में नाम आ जाता है शोणितपुर और बाणासुर का भी। वैसे देखा जाए तो बाणासुर का जो सराहन है ना, वो बहुत ही खूबसूरत है। फूलों से लदे चीड़ के पेड़ों के बीच से सड़क जब होकर गुजरती है तो नज़र आते हैं स्लेट वाली छतों के मकान, बगीचे, खूबसूरत चेहरे वाले मासूम लोग, और उनके खूबसूरत चेहरों पर वो प्यारी सी मुस्कुराहट जो कि यहाँ आने वाले लोगों को देखकर और भी बढ़ जाती है। हालांकि बदलते दौर में अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी जो है काफ़ी सारा डेवलपमेंट हो चुका है, और नए तरीके के मकान भी वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोग वहाँ पर कर रहे हैं अपने बाग बगीचों को देखने के लिए। लेकिन ओवरऑल जो भी लोग, जो भी टूरिस्ट शिमला शहर आते हैं, हिमाचल प्रदेश को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनके लिए एक बेस्ट टूरिस्ट ऑप्शन है ये, ट्रैवल डेस्टिनेशन है ये। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो ज़रूर आइएगा, और इसके बारे में आपसे और भी मैं इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। यहाँ के खूबसूरत नज़ारों का जो है आप लुत्फ़ उठाइएगा और अपने साथ ले जाइएगा यहाँ की खूबसूरत यादें।

है, जा नहीं पाते। तो ऐसे लोग जो कि अभी तक सराहन का रुख नहीं कर पाए, उनसे हम ज़रूर कहेंगे कि एक बार ना सिर्फ टूरिस्ट बल्कि हमारे यहाँ के लोकलाइट्स भी, जो कि सराहन नहीं रहते हैं, दूर रहते हैं कहीं पर, बाकी सब डिस्ट्रिक्ट के लोग अगर हमें इस वक्त सुन रहे हैं हिमाचल में भी, तो हम आपसे गुजारिश करेंगे ज़रूर आप सराहन का रुख एक बार ज़रूर करें। वैसे देखा जाए तो नेचर लवर्स के लिए ये एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। ये वो जगह है जो कि सराहन के नाम से जानी जाती है, काफ़ी पॉपुलर है और मोस्ट विजिटेड प्लेसेस में से एक भी है। यहाँ पे जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ का जो मंदिर है वो ऑटोमेटिकली इस जगह को और ज़्यादा वैल्यूएबल बना देता है। तो जो भी कोई सराहन का रुख करता है, रामपुर शहर का रुख करता है, वो माँ भीमा काली के मंदिर में जा कर के शीश ज़रूर नवाता है। और इस मंदिर की खूबसूरती की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर है, और इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है जब सर्दियों में यहाँ पर स्नोफॉल हो जाता है। खैर, स्नोफॉल के बाद तो वैसे भी प्रकृति जो है एक सफ़ेद चादर ओढ़ लेती है, और इस मंदिर की भी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। जहाँ तक रहने की व्यवस्था की बात है तो यहाँ पर ठहरने का, रहने का बहुत अच्छा इंतज़ाम है, और यहाँ पर सराय भी है। और साथ ही अगर आप सराय में नहीं रुकना चाहते हैं तो वैसे तो मंदिर परिसर में काफ़ी अच्छी साफ़ सुथरी सराय भी है, और लेकिन इसके अलावा भी बाहर काफ़ी अच्छे खासे होटल्स आपको मिल जाएंगे। यानी कि ओवरऑल अगर आप देखें तो वहाँ पर ठहरने की जो है कोई भी कभी भी किल्लत या दिक्कत आपको नहीं आएगी। खैर, बात करेंगे हम सराहन इसके आसपास की जगह की, तो यहाँ पर जो ज्यूरी की मैं खास तौर पर बात करना चाहूँगी, जहाँ से एक टर्निंग पॉइंट है माँ भीमा काली टेम्पल के लिए, तो वो वहाँ पर काफ़ी बड़ी मार्केट है, और ज्यूरी से आगे जो है गर्म पानी का चश्मा भी है, और जहाँ पर जो लोकलाइट्स का मानना है वो पहले वहाँ पर जा करके स्नान करते हैं और उसके बाद जो है वो भीमा काली सराहन की तरफ उनका रुख होता है। खैर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं मालूम है, लेकिन ये जो झरना है जिसे मैं कह रही हूँ हॉट वाटर स्प्रिंग है, ये औषधीय गुण लिए हुए है, और लोगों का ये मानना है कि इससे चर्म रोग जो है वो ठीक हो जाते हैं। खैर, अभी हम अगर यहाँ के टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर जो है बहुत ही औसम यहाँ पर रहता है, और गर्मियों के दिनों में भी जो है यहाँ पर कॉटन क्लोथ्स या फिर मैं कहूँ कि हल्के फुल्के गर्म कपड़े आपको पहनने की ज़रूरत महसूस होगी अगर आप आ रहे हैं गर्म इलाकों से जहाँ पर खूब सारी गर्मी रहती है, जहाँ पर टेम्परेचर 40, 44, 45 अबव रहता है। तो उन लोगों को यहाँ पर यहाँ के क्लाइमेट कंडीशंस को देखते हुए, क्योंकि हाइट में ये जगह है तो सराहन है, तो वहाँ पर जाकर के जो है आपको गर्म हल्के गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। खैर, बातें करेंगे और भी, टिल देन आपने सुनते रहना है FM शिमला 103.7 MHz पर।

एफएम शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर. प्रोग्राम चल रहा है कुदरत के रंग, और इस प्रोग्राम के चलते चलते आप और हम हैं एक ऐसे खूबसूरत रेडियो जर्नी के सफ़र पर, या मैं कहूँ ऐसे खूबसूरत ट्रेवल डेस्टिनेशन के सफ़र पर, जहाँ पर कभी ना कभी या तो आप गए हैं, और अगर एक बार गए हैं तो बार बार आपका जाने का मन करता है, या फिर आपने सिर्फ नाम सुना है और प्लान कर रहे हैं, लेकिन प्लान सिर्फ और सिर्फ प्लान ही बना रह जाता है.

FM Shimla सुन रहे हैं 103.7 MHz पर और हम आपको आज लेकर के आए हैं खूबसूरत सराहन। खैर, जब भी हम कहीं पर जाते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिरकार किस मौसम में वहाँ का रुख करना चाहिए, सो दैट जो हमारी जर्नी है उसमें अच्छी अच्छी मेमोरीज़, अच्छी अच्छी यादें जो हैं जुड़ करके आएँ और कोई भी बैड एक्सपीरियंसेस हमारे साथ नहीं आए। तो अगर आप मौसम को ध्यान में रखते हुए कहीं पर भी ट्रैवल करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जर्नी दी बेस्ट रिजल्ट्स आपके लिए लेकर के आती है। मार्च से जून तक आप कह सकते हैं ये बेस्ट टाइमिंग रहता है अगर आप यहाँ पर विजिट करना चाहते हैं। सराहन की अगर मैं बात करूँ, रामपुर की अगर मैं बात करूँ, तो ये वेल कनेक्टेड है रूट्स के साथ। और अगर आप काफ़ी दूर से आ रहे हैं, कहीं दूर पार हमें हिमाचल के बाहर से आप हमें सुन रहे हैं, और अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश, तो सराहन जाने के लिए आपके पास सबसे नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो पड़ेगा जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट। और बाय ट्रेन अगर आपको आना है तो आप आ सकते हैं रेलवे स्टेशन शिमला। और बाय रोड अगर आप अपना ट्रिप प्लान करते हैं तो जी, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो आप

0: प्रक्रिया को जो है जारी रखें। आपकी मेहनत और संकल्प ही आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकती है।
1: याद रखिए बहनों, सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए लगातार मेहनत, धैर्य और सही सोच की ज़रूरत होती है। और सबसे ज़रूरी बात है कि खुद को कभी भी कमज़ोर मत समझिए। हर इंसान में कोई ना कोई खासियत तो ज़रूर होती है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने मीनाक्षी, हर इंसान में कोई ना कोई खासियत ज़रूर होती है, यानी कि हर इंसान जो है अगर अवगुणों से भरा है ना तो गुण भी उसमें होते हैं। बस क्या होता है कि उसे पहचानना पड़ता है। अगर और जिस दिन इंसान अपने गुणों को, अपनी खासियत को पहचान गया ना, तो उस दिन उसे कोई भी नहीं रोक सकता अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। और बहनों कहा भी है कि सपने वो नहीं होते जो हमें सोते समय दिखते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते हैं।
1: जी तो देखिए बहनों, आप भी जो भी मेहनत करते हैं वो करते रहिए, सपने देखते हैं उन्हें पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए।
0: जी बिल्कुल। तो मीनाक्षी क्यों ना अब हम अपनी बहनों को एक गाना सुनाने के साथ साथ खुद भी सुन लेते हैं।
1: जी बिल्कुल।

0: तो बहनों कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रगति के अंतर्गत किस प्रकार आप हिंदी भाषा में अपना करियर बना सकते हैं। बहनों हिंदी दुनिया की 10 शक्तिशाली भाषाओं में से एक है। आज देश विदेश के सैकड़ों विश्वविद्यालयों में इस भाषा की पढ़ाई होती है। आजकल हिंदी में अवसरों की भरमार है। हिंदी माध्यम में पढ़ रहे जो बच्चे हैं लोग हैं वो भी अपना करियर बना सकते हैं और बहुत सारे अवसर उन्हें मिल रहे हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: अगर आपके पास हिंदी भाषा और साहित्य में डिग्री है तो सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र में मौजूद अवसरों का आप लाभ उठा सकते हैं।
1: बहनों आपकी काबिलियत ही आपकी पहचान है और यही बात आपके करियर की दिशा तय करती है। आप हिंदी साहित्य में डिग्री के दम पर अध्यापन से लेकर अनुवादक और दूरभाषीय की नौकरी कर सकते हैं। कॉल सेंटर्स और पर्यटन के क्षेत्र में भी हिंदी वालों के लिए अवसरों की कमी नहीं है।
0: जी, हिंदी का प्रयोग केंद्र सरकार द्वारा संसदीय, न्यायिक और सामान्य संचार में किया जाता है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में हिंदी खूब इस्तेमाल हो रही है।
1: जी बिल्कुल।
0: यहाँ तक कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी हिंदी का दबदबा है। गूगल है और माइक्रोसॉफ्ट जैसी जो दिग्गज कंपनियाँ हैं उन्होंने भी हिंदी में काम करना शुरू कर दिया है, जिस वजह से इसमें बहुत सारे करियर की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ती जा रही है।
1: जी बिल्कुल। तो देखिए मीनाक्षी, इसके लिए आवश्यक योग्यता का होना भी ज़रूरी है। तो नौकरी पाने के लिए जो है बहनों भाषा की अच्छी समझ आवश्यक है, इसलिए हिंदी ऑनर्स या एमए हिंदी करते समय छात्रों को भाषा की जो है अच्छी समझ विकसित करने पर भी ध्यान देना चाहिए। यानी कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, चाहे आप ऑनर्स करें या एमए हिंदी करें, तो आपको जो है हिंदी की जो भाषा होती है ना उसकी अच्छी समझ होनी चाहिए। क्योंकि देखिए मीनाक्षी, हमारी जो हिंदी भाषा है ना, बोलनी तो आसान है, लेकिन जो इसको मतलब हमें ऐसा लगता है कि अगर हम इसे प्रॉपर तरीके से अगर हम पढ़े ना तो ये इंग्लिश से काफ़ी टफ हमें लगती है। अगर छात्र जो है हिंदी भाषा को अच्छी समझ अगर रखना चाहते हैं तो पढ़ाई करते समय ही इसको विकसित करना बहुत ज़रूरी है। हिंदी भाषा और साहित्य अध्ययन करने के साथ उसके व्यवहारिक पक्ष को समझने का भी भरपूर प्रयास करना चाहिए।
0: जी बिल्कुल ठीक कहा सुषमा आपने। इससे जो कविता है, कहानी है, उसके अलावा मीडिया, अनुवाद और रचनात्मक लेखन में भी आप करियर बना सकते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: अगर आपकी हिंदी अच्छी होगी तो आप कुछ अच्छी कविताएं लिख सकते हैं, कहानियां लिख सकते हैं, इस तरीके से भी आप अपना करियर बना सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: साथ ही हिंदी से ऑनर्स करने वालों को नौकरी पाने में दिक्कत नहीं होती, वे

0: जो परीक्षाएं हैं उनमें भी शामिल हो सकते हैं। न्यायिक सेवा, सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विस, रेलवे, बैंक आदि में नौकरी पा सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। और स्पोर्ट्स कमेंट्री से लेकर फैशन जगत, एड एजेंसी और एनजीओ में हिंदी के छात्र जो है भरपूर कमाई कर सकते हैं। अध्यापन, मीडिया, हिंदी अधिकारी, अनुवादक, फिल्म और टीवी सीरियल आदि जो प्रमुख क्षेत्र है वहाँ पर भी जो है आप हिंदी के छात्र रोजगार प्राप्त कर सकते हैं।
0: जी हाँ, तो बहनों आप भी हिंदी भाषा में अगर अपना करियर बनाना चाहती हैं तो आप इनमें से कहीं पर भी नौकरी कर सकती हैं जो अभी हमने आपको विषय बताए, और खुद ब खुद आत्मनिर्भर बन सकती हैं।
1: जी बिल्कुल। देखिए बहनों, अब हर इंसान का एक सपना होता है। हर इंसान ये चाहता है कि हमें अपने जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो हमारे पास जो है बहुत सारे करियर ऑप्शन होते हैं। और जब हम पढ़ते हैं ना, जब हम कॉलेज या
0: जी
1: यूनिवर्सिटी में होते हैं, तभी से जो है हमारे दिमाग में मीनाक्षी एक अपना करियर के लिए थोड़ी सी टेंशन आनी शुरू हो जाती है।
0: जी
1: हर
0: बिल्कुल
1: छात्र, हर स्टूडेंट ये चाहता है कि हमें ज़िंदगी में कुछ करना है। और कुछ करने में अगर आप अपने करियर के लिए सोचना चाहते हो, तो आज हमने जो हिंदी विषय आपको बताया है, और बहुत सारे मीनाक्षी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो हिंदी भाषा को बहुत अच्छी तरह से, बहुत बारीकी से जानते होंगे। और
0: जी
1: हमारी बहनें इनमें से बहुत ऐसी होंगी जो हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान रखती होगी। और अगर उनके दिमाग में ये हिंदी का करियर नहीं आया है, तो हम उनसे गुजारिश करेंगे या हम उनसे बोल सकते
0: कहेंगे
1: हैं कि आप जो है अगर चाहते हैं तो अभी भी आप हिंदी भाषा में अपना करियर बना सकते हैं। अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो अपना करियर आसानी से आप बना सकते हैं, जो हमने अभी आपको प्लेटफॉर्म्स बताए।
0: जी, ये तो हमने अपनी बहनों को करियर संबंधी जानकारी दे दी, तो
1: जी
0: क्यों ना बहनों का मनोरंजन कर दिया जाए और ये गीत सुन लिया जाए।
1: जी बिल्कुल।

0: तो देखिए बहनों, अब हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में पहुंच गए हैं और आज हम बात करते हैं चलते चलते में फलों के बारे में, कुछ ऐसे फल जो हमारे आहार में शामिल होने ही चाहिए।
1: जी हाँ बहनों, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम काफ़ी सुस्त जैसे हैं, हमारे चेहरे की जो चमक है वो कहीं खो गई है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो संभावना है कि आपके अंदर खून की कमी हो गई हो। ये एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ आपके रक्त में पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि RBC या हीमोग्लोबिन की कमी होती है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो कुछ ऐसे फल हैं जिन्हें अगर हम नियमित रूप से अपने आहार में शामिल कर लें तो जो ये खून की कमी है वो पूरी हो सकती है।
0: जी बिल्कुल। और देखिए बहनों, उन फलों में एक फल है अनार, यानी कि आपकी जो रक्त गणना यानी कि खून को बढ़ाने के लिए अनार जो है सबसे अच्छे फलों में से एक है। ये जो है आयरन, विटामिन ए, सी और ई का एक समृद्ध स्रोत है और इस फल में मौजूद जो एसिड रक्त की गिनती को नियंत्रित करने वाले शरीर में आयरन को ये बढ़ाता है। यानी कि अनार एक ऐसा फल है बहनों, अगर आपको लगे कि आपका जो खून है वो थोड़ा कम हो रहा है तो आपको इस फल को अपने सेवन में लाना चाहिए और इससे जो है आपके खून की कुछ कमी यानी कि कुछ मात्रा पूरी हो सकती है।
1: जी जहाँ बात बहनों खून की हो रही है वहाँ हम सेब की बात कर लेते हैं, क्योंकि सेब में विटामिन सी अधिक मात्रा में होता है। ये शरीर के अंदर जो आयरन हम लेते हैं उसे अवशोष करने में मदद करती है, शरीर में आयरन के स्तर को भी बढ़ाता है। साथ ही सेब का छिलका भी फाइबर से भरपूर होता है, इसलिए कहा भी जाता है कि जब आप कभी सेब खाएं तो उसे अच्छे से धो के खाएं, लेकिन छिलके के साथ ही खाएं।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा मीनाक्षी आपने। और इसके साथ अब हम बात करते हैं आड़ू की। आड़ू भी विटामिन सी और आयरन का समृद्ध स्रोत होता है बहनों। जहाँ विटामिन सी आयरन को अवशोषित करने में मदद करता है, वहीं जो है बेकार लाल रक्त कोशिकाओं के दोहराव को रोकता है और साथ ही आड़ू वजन घटाने, त्वचा में सुधार और आंखों के स्वास्थ्य को भी बढ़ाने में मददगार होता है।
1: जी तो बहनों अब बात कर लेते हैं आलू बुखारा की। आलू बुखारा विटामिन सी और आयरन के साथ हीमोग्लोबिन को बढ़ाने की में मदद करता है।
0: जी
1: इसके साथ ही आलू बुखारा मैग्नीशियम का भी एक समृद्ध स्रोत है जो लाल रक्त कोशिकाओं को बढ़ाता है और हमें स्वस्थ रखने में मदद करता है।
0: जी बिल्कुल। और अब बात करते हैं जामुन की। तो देखिए

0: विटामिन सी और आयरन से भरपूर होने के कारण जो है ये हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करता है, और साथ ही जो है ये रक्त को शुद्ध करने वाले एजेंट के रूप में भी काम करता है। यानी कि जैसे जैसे रक्त साफ होता है वैसे वैसे ये बाहरी रूप से साफ त्वचा में भी परिवर्तित, हमारी जो त्वचा है उसमें भी परिवर्तित तो हमें होता नज़र आता है। लौह तत्व अधिक होने के कारण जो है पीलिया और एनीमिया से पीड़ित लोगों को जामुन का सेवन करना चाहिए।
1: जी बहनों, खून की कमी यानी एनीमिया जैसी जो समस्याएं हैं ये लगातार बढ़ती जा रही है। इसका रिश्ता पोषण से है। अगर आपका आहार सही होगा तो आप एनीमिया से लड़ सकती हैं, साथ ही कई अन्य बीमारियों से भी आप बच सकती हैं अगर सही तरीके से आप अपने भोजन में फलों का इस्तेमाल करें।
0: जी हाँ बिल्कुल। देखिए बहनों, हमारी जो दिनचर्या है ना मीनाक्षी, वो आजकल ऐसी हो गई है कि हमें अपने लिए टाइम ही नहीं लगता है। जो
1: जी
0: हमारी बहनें हैं वो सुबह से लेकर शाम तक इतनी बिजी होती है, इतनी व्यस्त होती है कि उन्हें अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचने तक का टाइम नहीं लगता है। खैर, अपने स्वास्थ्य का ध्यान तो वो कैसे रख पाए। तो हम अपनी बहनों से यही प्रार्थना या गुजारिश करेंगे कि बहनों, अपना आपका जो अपना स्वास्थ्य है ना, अगर आप पहले खुद स्वस्थ रहेंगी तभी आप जो है परिवार का भी ख्याल रखेंगी, अपने बच्चों का भी ख्याल रख पाएंगी। इसलिए अपने जो आपका जो दिनचर्या है, आपका जो आहार है, उसमें अगर आप फल सब्जियों का अच्छी तरह से सेवन करेंगी तो आपकी जो कुछ हद तक की जो बीमारियां हैं ना मीनाक्षी, जो हमारी बहनों को आजकल वैसे लग जाती है, तो
1: जी
0: अगर वो अपना प्रॉपर ध्यान रखेगी, अपने खाने पीने का अगर ध्यान रखेगी, तो वो उनसे थोड़ा सा बच सकती है। और हम बहनों से यही गुजारिश करेंगे कि आप जो है अपना अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने आहार में जो है अच्छे फल और सब्जियों का सेवन करें।
1: जी इससे आप सुस्त भी नहीं रहेंगी, बिल्कुल स्फूर्ति से भरी रहेंगी और
0: जी
1: आपके चेहरे की जो चमक है ना वो भी बरकरार रहेंगी और आप हमेशा ही खूबसूरत दिखती रहेंगी।
0: जी बिल्कुल
1: तो क्यों ना आप कार्यक्रम का अंतिम गीत सुन लेते हैं।
0: जी बिल्कुल।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला सम्मेलन। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, 1 बजने को है। हिंदी व अंग्रेजी समाचार अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने ये बात कही।
2: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल और इतिहास का हिस्सा बना रहना चाहता है या नहीं।
1: सेना प्रमुख की यह टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री की राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री अपने प्रवास के दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और वहां के प्रमुख व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगे। वहां हजारों भारतीय समुदाय के उपस्थित होने की उम्मीद है। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री की नीदरलैंड्स यात्रा का एक मुख्य आकर्षण होगा। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड्स संबंधों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड्स पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके आगमन पर पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था, जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपये से घटाकर 16.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। त्रिपुरा में कानून व्यवस्था सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी

0: दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए 50 करोड़ रुपए का एकमुश्त वित्तीय अनुदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए तक की राशि मंजूर की है। ये बटालियन साजो सामान और तैनाती के लिए मानक संघीय प्रोटोकॉल का पालन करेगी, उग्रवाद रोधी अभियानों और सीमा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगी। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाके डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा और इसके अंतर्गत राज्य में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। जनगणना कर्मी मकानों के निर्माण में इस्तेमाल हुई सामग्री और उनमें उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित 33 प्रश्न पूछकर जानकारी एकत्र कर रहे हैं। राजस्थान में लगभग 15 लाख परिवारों ने स्वगणना सुविधा के माध्यम से अपनी जानकारी जमा करने का विकल्प चुना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में हुई तेज वर्षा और तूफान से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिनभर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Excitement is building among the Indian diaspora in the Netherlands as Prime Minister Narendra Modi prepares to address the community this afternoon during his official visit. Thousands of Indian community members are expected to attend what organizers are calling a historic address. The event will be a highlight of the Prime Minister's trip to the country. Prime Minister Modi reached the Netherlands late last night to a warm reception. Members of the Indian community, representing different age groups, regions and faiths, gathered to welcome him with traditional dance and musical performances. The venue echoed with chants of Modi Modi and Vande Mataram as he arrived.
2: Modi Modi Modi Modi Modi Modi Modi ji Bharat Vande Mataram Bharat Vande Mataram
1: The community event is expected to focus on India-Netherlands ties, the role of the diaspora, and India's global outreach. Indian Army Chief General Upin Dwivedi today said that Pakistan must stop harboring terrorists and operating against India. Speaking at Sena Samvad in New Delhi, Mr. Dwivedi said that if Pakistan continues these activities against India, then they will have to decide whether Pakistan wants to be a part of geography or history.
3: I think if you have heard me earlier, what I have said that Pakistan, if it continues to harbor terrorists and operate against India, then they have to decide whether they want to be part of the geography or history or not.
1: In a significant move to strengthen the law and order framework in Tripura, the Ministry of Home Affairs has officially sanctioned the raising of an additional India Reserve Battalion. The centre has sanctioned a one-time financial grant of 50 crore for its establishment and up to 30 crore for infrastructure development. This new unit will primarily focus on counter-insurgency operations and border guarding, with the centre retaining the authority to deploy these personnel anywhere across the country as needed. Sikkim is observing its statehood day today, marking its transition from a monarchy to becoming the 22nd state of India in 1975. Vice President C.P. Radhakrishnan will undertake his first visit to Sikkim today after assuming office. He will attend the statehood

सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला। मस्त चुनो, मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

आकाशवाणी FM शिमला, आपने ट्यून किया है 103.7 MHz पर। दोपहर के 1:11 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती। दोस्तों, सुरों का सिलसिला, मस्ती का सफर और दिल से निकली हर धुन और साथ लाए हैं कुछ बेहतरीन नगमे सिर्फ आपके लिए प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती में। तो चलिए दोस्तों, प्रोग्राम का आगाज करते हैं इस खूबसूरत नगमे के साथ, जिसे लिया है तुमसे अच्छा कौन है फिल्म से। आवाज सोनू निगम की है, समीर के बोल है, नदीम श्रवण का संगीत।

0: दोस्तों, प्रोग्राम के बाकी के गीत आपको सुनवाएंगे इस ब्रेक के बाद।
1: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
2: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
1: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
2: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी FM शिमला से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम म्यूज़िक मस्ती। दोस्तों, हल्का सा सुकून और हल्की सी मुस्कान लेकर हाजिर है प्रोग्राम का अगला नगमा, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में। समीर के बोल हैं, जतिन ललित का संगीत और फिल्म है अलबेला।

0: बने रहिए आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ, आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
1: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
2: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
3: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
4: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रोग्राम म्यूजिक मसी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। दोस्तों, म्यूजिक का सफर जारी है। अब आपको सुनवाते हैं नीरजा पंडित और अभिजीत की आवाजों में प्रोग्राम का अगला गीत, खूबसूरत फिल्म से। गीत लिखे हैं गुलजार ने और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

दोस्तों, कुछ गीत ऐसे होते हैं जो दिल में बस जाते हैं। ऐसा ही अगला गीत लेकर हाजिर हैं हम शोल्डर फिल्म से। आवाज़ें हैं हेमा सरदेसाई और कुमार सानू की, समीर के बोल, अनु मलिक का संगीत।

0: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है, वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
1: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आप हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ और इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती। तो चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक की आवाज़ में दिल का रिश्ता फिल्म का ये गीत, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

कुछ गीत दोस्तों दिल में बस जाते हैं, ऐसा ही अगला गीत लेकर हाजिर है हम कल हो ना हो फिल्म से। आवाजें हैं साधना सरगम, सुजीता भट्टाचार्य, उदित नारायण, सोनू निगम और शंकर महादेवन की। जावेद अख्तर के बोल हैं, शंकर एहसान लोई का संगीत।

0: बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी एफएम शिमला में, आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
1: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
2: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
1: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
2: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रोग्राम म्यूजिक मसी आप इंजॉय कर रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। अगला खूबसूरत गीत आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ों में। फिल्म है कभी खुशी कभी गम, समीर के बोल, संदेश शांडल्य के संगीत।

0: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
1: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
2: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
3: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी FM शिमला से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती। सुरों का जादू जारी है दोस्तों, और अब आपको सुनवाते हैं लकी अली की आवाज में कहो ना प्यार है फिल्म का ये गीत। सावन कुमार टॉक के बोल है, राजेश रोशन का संगीत।

0: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
1: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ। दोस्तों, अब आपको सुनवाते हैं सुनिधि चौहान और KK की आवाज़ों में हमराज फिल्म का गीत, सुधाकर शर्मा के बोल, हिमेश रेशमिया का संगीत।

दोस्तों प्रोग्राम का आखिरी गीत सुनिए, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से। आपको सुनवाने जा रहे हैं उदित नारायण की आवाज़ में ये गीत, आनंद बख्शी के बोल हैं, जतिन ललित का संगीत।

दोस्तों प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती के इस सुहाने सफर में आज बस इतना ही। आप यूं ही सुनते रहिए आकाशवाणी FM शिमला। आप है आकाशवाणी FM शिमला के साथ 103.7 MHz पर। दोपहर के 2 बजे हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम सब रंग। कार्यक्रम का पहला गीत पंकज उदास की आवाज़ में।

दोस्तों कार्यक्रम सबरंग में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ। दोपहर के 2:15 होने को हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से दोपहर हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे हैं, और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2,00,000 से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पच्चीस में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
0: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलेम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा में से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
0: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी

0: हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था, जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है।

0: सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थी, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सग्रम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, AI, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसे पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
3: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
0: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र द्वारे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
4: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम

0: बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से दो दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री जीयूडीसी और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपैलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेड स्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टागन ड्रग्स जब्त की हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: अब से कुछ देर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
0: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूरजुद्दीन और गो से फेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए AI के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीफ अली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, AI और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जाँच के आदेश दिए। CBSE ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये

0: अंग समाप्त हुआ, नमस्कार।
1: पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला। दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए ये संदेश।
2: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
3: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
2: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
3: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: आप हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ 103.7 MHz पर। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम शिखरों के स्वर। श्रोता, लोकगीत जो सिर्फ संगीत ही नहीं बल्कि हमारी विरासत और पहचान है। पहाड़ों की घाटियों में गूंजता हुआ संगीत, मिट्टी की सुगंध और जनजीवन की कहानियां लेकर हाजिर है हम कार्यक्रम शिखरों के स्वर के संग। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं नेक सिंह ठाकुर की आवाज़ में इस लोकगीत के साथ।

0: कार्यक्रम के बाकी के लोकगीत आपको सुनवाएंगे इस अंतराल के बाद।
1: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
2: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
3: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
4: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी FM शिमला से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शिखरों के स्वर। श्रोताओं, अगला लोकगीत प्रेम और अपनेपन की भावना से भरा हुआ है। लीजिए सुनिए उषा शर्मा की आवाज में ये लोकगीत।

0: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है, वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में, सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
1: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: कार्यक्रम शिखरों के स्वर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला से। लोकगीतों की इस यात्रा में लीजिए सुनिए ये लोकगीत अचर सिंह परमार की आवाज़ में।

0: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
1: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
0: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
1: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: लोकगीतों का कार्यक्रम शिखरों के स्वर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला से। लोकधारा से निकला ये गीत दिल में अलग सा मिठास भर देता है। आइए सुनते हैं सरिता नेगी की आवाज़ में ये लोकगीत।

0: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
1: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
2: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
3: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: आप हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ और इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम शिखरों के स्वर। लीजिए सुनिए एक और मधुर लोकगीत सुखदास की आवाज़ में।

कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है, वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी

0: प्रलोभन में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
1: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: कार्यक्रम का आखिरी लोकगीत लीजिए, सुनिए मनसा पंडित की आवाज में।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम शिखरों के स्वर में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। कृपया हमारे
1: और एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला, डीटीएच और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर भी सुना जा सकता है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन नगर निगमों सहित प्रदेश के 51 शहरी निकायों में कल मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा, जो दोपहर बाद 3 बजे तक जारी रहेगा। नगर परिषद और नगर पंचायतों के लिए डाले गए वोटों की गिनती मतदान खत्म होने के तुरंत बाद शुरू होगी और कल शाम तक परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा नगर निगमों के लिए डाले गए वोटों की गिनती 31 मई को होगी। शहरी निकायों के लिए प्रदेश में 439 पदों के लिए 1147 उम्मीदवार मैदान में हैं। नगर निगम के चुनाव पार्टी चिन्ह पर करवाए जा रहे हैं और मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच होगा। दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं और प्रदेश के सभी बड़े नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की है। नगर पंचायतों और नगर परिषदों के चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं करवाए जा रहे हैं। शहरी निकाय चुनाव में लगभग 3,80,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। नगर निगम सोलन में मतदान के लिए 38 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 14 मतदान केंद्रों का जिम्मा महिला कर्मचारियों को सौंपा गया है। शहर में 7 मतदान केंद्र संवेदनशील घोषित किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी मनमोहन शर्मा ने बताया कि पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दी गई हैं। उन्होंने शहर के सभी लोगों से मतदान करने की अपील की है।
1: नगर निगम सोलन का चुनाव है, उसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। इसमें हमारे जो शहर में इस वक्त 38 पोलिंग बूथ्स बनेंगे, इस बार हमने 14 पोलिंग बूथ्स जो पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित किए जाएंगे, ये प्रयत्न किया है कि महिलाओं को इस चुनाव में उनकी ड्यूटी लगाई जाए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए एडेक्वेट पुलिस पर्सनल डिप्लॉय किए गए हैं। और मैं सभी सोलन निवासियों से निवेदन करूंगा कि वो इस अवसर पर अपने मतदान का प्रयोग करें और भारी संख्या में लोग जो है अपने घरों से बाहर निकलकर मतदान अवश्य करें।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शिमला से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। उनका कल नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम जाने का कार्यक्रम है, जहां वे 18 मई को केरलम के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू का 19 मई को शिमला लौटने का कार्यक्रम है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मॉनसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। यह दिवस मच्छरों के प्रजनन को रोकने के उद्देश्य से सरल नियंत्रण रणनीतियों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने इस मौके पर नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ व सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार बेहतर निगरानी, व्यापक परीक्षण, बेहतर उपचार सुविधाओं और व्यापक जागरूकता अभियानों के माध्यम से डेंगू नियंत्रण प्रयासों को मजबूत करना जारी रखे हुए हैं। इस वर्ष का विषय है डेंगू नियंत्रण के लिए सामुदायिक भागीदारी, जांच करें, साफ करें और ढकें। जेपी नड्डा ने डेंगू के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर बल दिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में एक नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। CBSE ने कहा है कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं, वे 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। अधिक ब्यौरा इस रिपोर्ट में।
2: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय 700 रुपए है।
0: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि यदि पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है, तो उसे यह खुद तय करना होगा कि वो भूगोल और इतिहास का हिस्सा बना रहना चाहता है या नहीं। सेना प्रमुख की यह टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।

0: ये थे प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। अब प्रस्तुत है सामयिक चर्चा। विषय है राष्ट्रीय डेंगू दिवस, जागरूकता, बचाव और सामूहिक जिम्मेदारी का संदेश। वाचक हैं राकेश शर्मा।
1: हर वर्ष 16 मई को भारत में राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य लोगों को डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी के प्रति जागरूक करना, इसके लक्षणों, बचाव और समय पर उपचार के बारे में जानकारी देकर मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये दिवस मच्छरों के प्रजनन को रोकने के उद्देश्य से सरल नियंत्रण रणनीतियों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है डेंगू नियंत्रण के लिए सामुदायिक भागीदारी, जांच करें, साफ करें और ढकें। डेंगू के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर बल दिया गया है। बदलते मौसम, बढ़ते शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के कारण डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये केवल एक मौसमी बीमारी नहीं रह गई है बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है। ऐसे में राष्ट्रीय डेंगू दिवस समाज को ये याद दिलाता है कि थोड़ी सी सावधानी और सामुदायिक प्रयास से इस बीमारी पर काफ़ी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। डेंगू एक वायरल बीमारी है जो इजिप्ट नाम मच्छर के काटने से फैलती है। ये मच्छर साफ और रुके हुए पानी में पनपता है और दिन के समय अधिक सक्रिय रहता है। घरों के आसपास रखी पानी की टंकियां, पुराने टायर, कूलर, गमले, डिब्बे और अन्य पात्र मच्छरों के प्रजनन स्थल बन जाते हैं। यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग समय समय पर लोगों से घर और आसपास सफाई बनाए रखने की अपील करता है। भारत सहित दुनिया के कई देशों में डेंगू तेजी से फैल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर वर्ष करोड़ों लोग डेंगू से संक्रमित होते हैं। भारत में मॉनसून और उसके बाद के महीनों में डेंगू के मामले अधिक सामने आते हैं। हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में भी अब डेंगू के मामले बढ़ने लगे हैं। पहले ये बीमारी केवल मैदानी और गर्म क्षेत्रों तक सीमित मानी जाती थी, लेकिन अब बदलते मौसम और तापमान के कारण इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। डेंगू के प्रमुख लक्षणों में तेज बुखार, सिरदर्द, आंखों के पीछे दर्द, शरीर और जोड़ों में तेज दर्द, कमजोरी, उल्टी और त्वचा पर लाल चकत्ते शामिल हैं। कई बार मरीज की प्लेटलेट्स तेजी से कम होने लगती हैं, जिससे स्थिति गंभीर हो जाती है। हालांकि हर बुखार डेंगू नहीं होता, लेकिन लक्षण दिखाई देने पर तुरंत जांच करवाना और डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। स्वयं दवा लेने या लापरवाही बरतने से खतरा बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि डेंगू का सबसे प्रभावी इलाज बचाव ही है। अभी तक डेंगू के लिए कोई निश्चित एंटीवायरल दवा उपलब्ध नहीं है, इसलिए समय पर पहचान और उचित देखभाल अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। लोगों को चाहिए कि वे अपने घरों और आसपास पानी जमा ना होने दें, कूलर का पानी नियमित रूप से बदलें, पानी की टंकियों को ढककर रखें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। पूरी बाजू के कपड़े पहनना, मच्छरदानी का उपयोग करना और मच्छर भगाने वाली क्रीम या स्प्रे का इस्तेमाल भी बचाव में सहायक होता है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग, नगर निकाय, स्कूल, पंचायतें और विभिन्न सामाजिक संस्थाएं जागरूकता अभियान चलाती हैं। रैलियां, नुक्कड़ नाटक, पोस्टर प्रतियोगिताएं और स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाते हैं ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। स्कूलों में बच्चों को बताया जाता है कि वे अपने घरों और मोहल्लों में पानी जमा न होने दें और परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करें। कई स्थानों पर स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर लार्वा की जाँच करते हैं और लोगों को सावधानियाँ बताते हैं। डेंगू केवल स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर और आसपास साफ सफाई रखें तो मच्छरों के प्रजनन को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। अक्सर देखा जाता है कि लोग छोटी छोटी लापरवाहियों के कारण डेंगू को बढ़ावा दे देते हैं। घर की छत पर रखे टूटे बर्तन, खुले ड्रम, गमलों की ट्रे और अनुपयोगी सामान में जमा पानी मच्छरों के लिए आदर्श स्थान बन जाता है। इसलिए हर रविवार मच्छर पर वार जैसे अभियान लोगों को नियमित सफाई के लिए प्रेरित करते हैं। आज सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म भी जागरूकता फैलाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ वीडियो, पोस्ट और संदेशों के माध्यम से लोगों को सही जानकारी दे रहे हैं। हालांकि कई बार गलत सूचनाएँ भी फैलती हैं, इसलिए लोगों को केवल विश्वसनीय स्रोतों से ही जानकारी लेनी चाहिए। डेंगू के दौरान प्लेटलेट्स को लेकर भी कई भ्रांतियाँ फैल रहती हैं। डॉक्टर के अनुसार घबराने के बजाय समय पर चिकित्सीय सलाह लेना सबसे ज़रूरी होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। कई गांव में लोग अभी भी डेंगू के लक्षणों और बचाव के बारे में पूरी जानकारी नहीं

0: पंचायतों और आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि गांव स्तर पर नियमित सफाई अभियान चलें और लोगों को जागरूक किया जाए तो डेंगू के खतरे को कम किया जा सकता है। इसके साथ ही सामयिक चर्चा संपन्न हुई। नमस्कार।
1: सामयिक चर्चा आपने सुनी। विषय था राष्ट्रीय डेंगू दिवस, जागरूकता, बचाव और सामूहिक जिम्मेदारी का संदेश। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी एफएम शिमला। दोपहर के 3:10 हुए हैं, लीजिए सुनिए प्रोग्राम ओल्ड हिट्स। दोस्तों, सुरों की उस दुनिया में आपका स्वागत है जहाँ यादें मुस्कुराती हैं, नगमे दिल से बात करते हैं। वक्त के पन्नों से चुनकर लाए हैं कुछ अनमोल नगमे जो आज भी उतने ही हसीन हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ओल्ड हिट्स। प्रोग्राम का पहला गीत चोर मचाए शोर फिल्म से आपको सुनवाते हैं। आवाज़ें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की, गीत और संगीत रविंद्र जैन के।

0: दोस्तों, प्रोग्राम के बाकी गीत आपको सुनवाएंगे इस ब्रेक के बाद।
1: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
2: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
1: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
2: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी एफएम शिमला से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ओल्ड हिट्स। दोस्तों, यादों का सिलसिला जारी रखते हुए अब सुनते हैं अगला नगमा द ट्रेन फिल्म से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। आनंद बख्शी के बोल हैं आर डी बर्मन का संगीत।

0: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
1: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
2: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
3: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी FM शिमला से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ओल्ड हिट्स। लीजिए अब सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज़ में आराधना फिल्म का ये गीत, आनंद बख्शी के बोल, SD बर्मन का संगीत।

0: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है, वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में, सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
1: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: ओल्ड हिल्स प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला।

दोस्तों ओल्ड हिल्स प्रोग्राम में आज बस इतना ही। आप बने रहिए आकाशवाणी FM शिमला के साथ। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम ओल्ड हिट्स 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ। दोपहर के 3:30 हुए हैं। अब युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युवानी।

नमस्कार दोस्तों, मैं रजत ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हम सभी जानते ही हैं कि इन दिनों हमारे प्रदेश का मौसम बड़ा अस्थिर सा हो गया। कुछ दिन हमें या तो गर्मी का एहसास होता है, तो कुछ दिन हमें ज़्यादा सर्दी का एहसास होता है। और ये अस्थिर सा मौसम आजकल बहुत से लोगों को बीमार करते जा रहा है। तो क्यों ना आज के कार्यक्रम में हम बात करें बदलते मौसम में स्वास्थ्य की देखभाल, और साथ ही ये जानने व समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस बदलते मौसम में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह का हमारा खान पान रहना चाहिए, किस तरह का हमारा दिनचर्या रहना चाहिए, और साथ ही जो लोग पहले से ही बीमारियों से ग्रसित हैं उन्हें किन विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। खैर, हमारी बातें यूं ही चलती रहेगी, उससे पहले हम सुनेंगे एक प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, खुद को स्वस्थ रखने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर मौसम में बदलाव से हमारे शरीर पर किस तरह से असर पड़ता है। तापमान में तेज़ी और तेज़ी से उतार चढ़ाव होने के कारण शरीर को नए वातावरण में ढलने में समय लगता है, जिससे कई तरह की परेशानियाँ हो सकती हैं। सबसे पहले हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकता है, जिसमें शरीर में वायरस और बैक्टीरिया के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। साथ ही सर्दी, खांसी और फ्लू होने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। पाचन तंत्र में गड़बड़ी, अक्सर हमने ये देखा है कि मौसम में बदलाव से काफ़ी लोगों को पेट की समस्या भी देखने के लिए मिलती है। चौथा है त्वचा और बालों में बदलाव। मौसम में बदलाव से त्वचा के ऊपर बहुत ज़्यादा सीधा असर पड़ता है। ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी हमारी त्वचा को ख़राब कर सकती है। चौथा और आखिरी प्रभाव जो हमारे शरीर पर देखने के लिए मिलता है, वो है मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव। अक्सर मौसम में बदलाव होने के कारण हमारी नींद कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है। इससे हमारा सीधा असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। खैर, इसके बाद हम बात करेंगे किस तरह का हमारा दिनचर्या रहना चाहिए ताकि हम इस बदलते मौसम में खुद को स्वस्थ रख सकें। उससे पहले सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना।

दोस्तों, अगर दिनचर्या की बात की जाए तो इस बदलते मौसम में खुद को स्वस्थ रखने के लिए आपका दिनचर्या का बेहतर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आपको पर्याप्त नींद लेनी होगी ताकि आप पूरा दिन एनर्जी से अपना दिन व्यतीत कर सकें। साथ ही सुबह जल्दी उठकर आप व्यायाम या योगा कर सकते हैं, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। समय समय पर अपना खान पान ग्रहण करें और 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर करें 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पिए ताकि आपकी बॉडी पूरा दिन हाइड्रेट रहे। साथ ही हो

सके तो आप फ़ोन, कंप्यूटर आदि जैसी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है इसका इस्तेमाल कम से कम करें, ताकि आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बेहतर बना सके बना रहे और अपने आसपास की जगह को आप साफ बनाए रखें, क्योंकि इस बदलते मौसम में कीट पतंगे और बैक्टीरिया वायरस जैसी जो बीमारियां है वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाती है। इसीलिए इस बदलते मौसम में अपने आसपास के जो एरिया है उसे स्वच्छ बनाए रखना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।

दोस्तों, अभी हमने जाना कि आखिर बदलते मौसम में खुद को स्वस्थ रखने के लिए खान पान कितना ज़रूरी है, क्योंकि अच्छा भोजन ही है जो हमारी इम्यूनिटी को बेहतर कर सकता है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मौसमी फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए और हो सके तो घर के बने खाने का ही इस्तेमाल करें, और ख़ास तौर पर जो पैकेजिंग फूड है उसका इस्तेमाल कम से कम करें। पेय पदार्थों की बात की जाए तो आप समय समय पर पानी पीते रहें ताकि आप अपने शरीर को हाइड्रेट रख सकें और घर पे बने जूस का भी आप सेवन कर सकें, और अपनी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करने के लिए आप आंवला या चमनप्राश आदि चीज़ों का भी सेवन कर सकते हैं।

बदलते मौसम से जो सबसे पहले लोग प्रभावित होते हैं वो हैं छोटे बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और ख़ासतौर पे जो लोग पहले ही बीमारियों से ग्रसित हैं, जैसे कि अस्थमा, दिल की बीमारी, डायबिटीज़। इन लोगों को ख़ास तौर पे विशेष बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको दवा का रूटीन समय पर फॉलो करना है, अपने खान पान और अच्छी डाइट बनाए रखना है, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये लोग बीमार होने के लिए ज़्यादा ग्रसित हो जाते हैं और इनका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक रहता है, इसीलिए इन्हें अपने आसपास सफाई बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मौसम अनुसार कपड़ों का चयन करें ताकि आप बीमार ना हों। एलर्जी और प्रदूषण से खुद को बचाए रखें। हल्की एक्सरसाइज और व्यायाम समय समय पर करते रहें और पर्याप्त नींद ज़रूर लें। समय समय पर डॉक्टर के पास जाँच के लिए जाते रहें ताकि समय रहते ही इसका इलाज, आपकी बीमारी का इलाज किया जा सके।

तो दोस्तों हम अपने कार्यक्रम के अब अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और आप भी अपना और अपने परिवार का इस बदलते मौसम में बचाव रखने में प्रयास करेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक के लिए आप सुनते रहें, मुस्कुराते रहें।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर. आप है आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ. शाम के 4 बजे हैं. लीजिए सुनिए फिल्म संगीत. फिल्म संगीत का पहला गीत हम लेकर आए हैं दर्द फिल्म से. आवाज है लता मंगेशकर की. नाकश लयालपुरी के बोल हैं. खय्याम का संगीत.

किशोर कुमार की आवाज़ में लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म है कलाकार, इंदिवर और मनोज कुमार के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

दोस्तों इसी गीत के साथ अब शैलजा चौहान को दीजिए इजाज़त। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। अब हमारे हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम आरंभ होते हैं। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम आप आकाशवाणी शिमला के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुन सकते हैं। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों में आइए सबसे पहले सुनते हैं चंबियाली कार्यक्रम।

जी श्रोताओं, ये सुने तुसी लोक गीत ते अब इसी गलबात करनी से है बेरोजगारी दे पर कि भई दिखा असां दा जैसे देश है भारत दुनिया दा सबका बड़ा नौजवाना दी आबादी वा देशा का एक है। इत्ते श्रोताओं लगभग 65% जनसंख्या 35 साल का घट उम्र दी है। इतनी ज़्यादा नौजवानों की जनसंख्या किसी भी मुल्क की तरक्की का आधार बन सकती, पर जिस मौके नौजवानों जो पर्याप्त रोज़गार नहीं मिलता तो ये स्थिति जड़े से सामाजिक ते आर्थिक संकट का रूप भी धारण करी लेंदी। वर्तमान टाइम विच भारत विच बेरोजगारी एक गंभीर मुसीबत बनी चुकी दी है। ग्रामीण ते शहरी दोनों इलाकों विच रोज़गार की गुणवत्ता स्थायित्व ते मौकियां दी कमी सीधे तौर पर नज़री इंदी। हाल ही दे असां दे सरकारी आंकड़ियां दे मुताबिक भारत विच बेरोजगारी दी दर जड़ी से कुछ घट दिखाई देंदी, पर नौजवानां ते पढ़े लिखे तबकियां विच बेरोजगारी अभी भी चिंता दा विषय बनी हुई है। असी देख देखे भी एक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण हुंदा जिस जो PLFS भी बोलदे, साल 2025 दे आंकड़े दे मुताबिक भारत दी सामान्य बेरोजगारी दर लगभग 3.1% है। उत्ते ही असी देखते भी चालू साप्ताहिक स्थिति जिहड़ी पद्धति है जिस जो करंट वीकली स्टेटस भी बोलदे, इस पद्धति दे मुताबिक ये दर 5% दे आसे पासे दर्ज की गई है। अप्रैल 2026 दे नवे आंकड़े दे मुताबिक देश की बेरोजगारी दर 5.2% रही है, जबकि शहरी इलाकों में 6.6% ग्रामीण इलाकों में ये जड़े से 4.6% रही है।

श्रोताओं, भारत विच सबका ज़्यादा प्रभावित नौजवान वर्ग है। नौजवान वर्ग मतलब है कि भाई 15 का 29 साल दी जिहड़ी आयु वर्ग विच असी देखते कि बेरोज़गारी दर सामान्य औसत का थोड़ी ज़्यादा नज़री आती। कई रिपोर्टों विच ये दस्या गया कि नौजवानों वास्ते पर्याप्त रोज़गार उपलब्ध नहीं हैं। नौजवानों विच बेरोज़गारी दे मुख्य कारण हैं कि भाई शिक्षा असा जी पढ़ाई लिखाई है तो उद्योगों की जरूरतों में जड़े से कुते ना कुते फासला है, असमानताएं होर है कि भाई तकनीकी कौशल की भी जड़ी से कमी है। सरकारी नौकरियों पर ज़्यादा जड़े से माणुआ की निर्भरता है, सारे माणु सरकारी नौकरी तरफ दिखते, तो दूजी तरफ दिखते कि निजी क्षेत्र में अस्थाई रोज़गार हैं। प्रतियोगी जड़े सा असा इम्तिहान होंगे थे तिना विच भी असां दी दिखदे कि सीटा दिन ब दिन घटे कर दी है। असां दे जड़े से जितने भी जो भी है असां दे जिसे बोलते कि भई आर्थिक नीतियां हैं तिस ते चल दे। अज लाखों नौजवान कई साल तक प्रतियोगी इम्तिहान की तैयारियां कर रहे पर सीमित सीटा की वजह कने अधिकांश माणु जो जड़े से रोज़गार नहीं मिली पाता सरकारी क्षेत्र के अंदर, तो तिना दी जड़े से तोप रही कि वैसे कोई होर जड़ा से वैकल्पिक जड़ा से रोज़गार के साधन है तिस तरफ देखो। जिस मौके श्रोताओं असी गल करते कि रोज बेरोज़गारी है तिसे भी कई प्रकार होंगे। असी कई बार देखते कि माणु 24 घंटे काम धंधा बिच लगे रहेंगे लेकिन कुते ना कुते देखते कि तिना की जी सी जीविका है से नाकाफी होंगी। तो तुम देखते तेरे पिछे जड़े होंगे से कई तरीके की बेरोज़गारी जिस वास्ते जिम्मेवार होंगी। तिना प्रकारां दे अंदर अस देखते खुली बेरोज़गारी मतलब है कि एक माणु है जिहड़े काम करना चाहते काम करने वास्ते तैयार हैं पर तिस जो असी देखते भी कोई काम धंधा नहीं मिलता तो तिस जो बोलते खुली बेरोज़गारी। एक छुपी हुई या प्रछन्न बेरोज़गारी बोलते से कि भी ग्रामीण इलाके में एक ही काम में जरूरत का ज़्यादा माणु लगे रहते जो मान लो कृषि है, खेत छोटे हैं बड़े हैं, एक बीघा है दो बीघा है या एक हेक्टेयर है दो हेक्टेयर है, लेकिन माणु जड़े से जितने माणु तिस बिच कम करने वास्ते चाहिए तिसका ज़्यादा माणु तिस बिच लगे रहेंगे। अगर अस देखते कि यदि कुछ माणु तिस कम का बाहर भी निकल जाते तो तिस कम पर या तिस कम का जो उत्पादन होंगे तिस उत्पादन पर कोई भी प्रभाव नहीं पाता लेकिन फिर भी ज़्यादा माणु कम करे करते हैं तो तिस जो बोलते असी प्रछन्न कने छुपी हुई बेरोज़गारी। एक होर बेरोज़गारी होंगी श्रोताओं तो जो बोलते कि मौसमी बेरोज़गारी। असी कृषि क्षेत्र में फसल के टाइम देखते कि कम मिलता पर बाकी टाइम रोज़गार ही नहीं होंगे तो फिर माणु जो बेरोज़गारी हो जाए कोई कम धंधा नहीं कोई कमाई नहीं तो इस जो मौसमी बेरोज़गारी बोलते। एक होर है शिक्षित बेरोज़गारी कि भाई माणु डिग्रीधारी नौजवान जो है से उन्होंने काबिलियत है तेरे मुताबिक रोज़गार नहीं मिलता। अल्प रोज़गार है जिस मौके माणु अपनी क्षमता का घट काम करता या घट तनख्वाह पर जड़े से काम करने जो मजबूर होंगे तो इस जो जड़े से असी बोलते कि भाई अल्प बेरोज़गारी अल्प रोज़गार। तो श्रोताओं असी गलबात इस बेरोज़गारी विषय पर आगे भी जारी रखनी पर उसका पहले तो जड़े से असी देखते कि तो मनोरंजन कराना नरोत्तम कुमार की भाख में गाए इसी चमेरी लोकगीते कन्या।

जी श्रोताओं, असी गलती कर दे कि भई बेरोजगारी दे मते सारे प्रकार होंगे। अब असी गलबात करनी कि भई बेरोजगारी दे जड़े से खास कारण क्या रहेंगे, जिस वजह कने जड़े से असी बेरोजगारी अपने आसे पासे दिखते। इस बीच सबका बड़ा कारण है श्रोताओं, जनसंख्या की वृद्धि। इस वजह कने जड़े से असा देश बीच हर साल करोड़ों जड़े से नौजवान हैं से रोज़गार के बाजार बिच दाखिल होंगे, पर उन्हें जो रोज़गार उस औसत कने पैदा नहीं होंगे या मिल ही नहीं पाते। होर है कि भाई शिक्षा प्रणाली की भी असं दिखते कुछ कुछ नुक्स या कमजोरी बोली सकते कि असी दी शिक्षा प्रणाली हले भी जड़े से ज़्यादा सैद्धांतिक है। उद्योगों जो तकनीकी ते व्यवहारिक कारीगरी चाहिए, पर अधिकांश असं जो नौजवान है सिर्फ डिग्रियां ले करी घूमते, तिना जो व्यवहारिक जड़े से एक बोली सकते कि भाई अनुभव या जड़ी जरूरत असं उद्योगों जो हिन जिस हुनर दी से नहीं मिल पाते। होर कारण है श्रोताओं, किसानी पर ज़्यादा निर्भरता। असं मुल्क जड़े से अधिकांश ग्रामीण है, अधिकांश ग्रामीण असं खेतीबाड़ी किसानी पर जड़े से असं आबादी से निर्भर है, पर यह जड़ा क्षेत्र है से सीमित आमदनी ते रोज़गार जड़े से बड़ा घट सीमित प्रदान करता। होर है कि भई औद्योगिक तरक्की दी जड़ी से सीमित रफ्तार है कि असी दिखते कि भई आज चौथी चरण का जड़े से औद्योगिक क्रांति दे युग बिच रेह करते, पर भारत बिच विनिर्माण क्षेत्र अपेक्षित गति कने विकसित नहीं हो पाया है। इस कने बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन नहीं हो सके। होर है तकनीकी परिवर्तन ते ऑटोमेशन आज दिखते कि

सभिनी सुने वारे जो राकेश शुक्लानी जी नमस्कार ताजी लिखा आज तो साजो लोकगीत भी सुनाने कने जी गलबात भी होनी भई आज के दौरान देखा भई ईमानदारी होना बहुत जरूरी है कने दूजी गलबात होनी जी शिल्प कला कारीगरी और रोजगार कने जी नौ ताजी भी दसनी तुसो ताजी सभिनी दे पहले आसा देखा भई खबर सुन लैनी धर्मशाला पालमपुर मंडी और सोलन नगर निगम सौगी प्रदेश रे कुंजा शहरी निकाय मंज भई कल मतदान होगा। मतदान ब्यागा 7 बजे दे शुरू होगा कने भई दिने 3 बजे तक जारी रहेगा। भई नगर परिषद नगर पंचायत कट्ठे भई वोटारी गिनती मतदान खत्म होने के बाद शुरू हो जाएगी। कल सांझा तक परिणाम घोषित होंगे कने नगर निगम कट्ठे वोटारी गिनती 31 मई जो

होंगी। नगर निगम सोलन मंज मतदान कट्ठे भई 38 मतदान केंद्र बनाए गए रहे कने 14 मतदान केंद्र वाला जिम्मा जनानिया कर जो कर्मचारियों जो भई सौंपया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू आज शिमले दे नई दिल्ली जो गए कने कल नई दिल्ली दे तिरुवंतपुरम जाने रा कार्यक्रम कने 18 मई जो केरलम रे मुख्यमंत्री बीडी सतीशन रे शपथ ग्रहण समारोह मंज भाग लेंगे। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस आ। केंद्रीय स्वास्थ्य कने परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूपा दे भई घोषित इदी दिहाड़े रा मकसद डेंगू रे प्रति जागरूकता बधाना। मानसून दे पहले इदरे खिलाफ निवारक उपाय जो मजबूत करना। ताजी तुसें नौता जी भी सुन लें जी, तासा जी सुनना जी एक बड़े देवारा गीत, ता सुना जी।

जी तुसें सुनेआ दिक्खा जी ब्रिज लाला रिवाजा च एह् बड़े दे बारा गीत ता जी दिक्खा हून भाई असा गलबात करनी भाई माह्नू अंदर ईमानदारी ता बहुत जरूरी होनी अज के टाइमा कने ईमानदारी जीवन जीने री एक कला है असें सब जाना है माह्नू रे जो चरित्र जो ऊंचा बनाए भाई ईमानदारी समाज मंज सम्मान भाई दिखा अड़े माह्नू जो काफ़ी ज़्यादा मिला जिस माण्हू अंदरि सचाई ईमानदारी हूंदी कने भई से भई माण्हू काफ़ी सारी परेशानी मंझि बि ॾेखा भई से डरदा नी आहे कने भई परेशानीअ जो दूरि करे कने रहिया भई से अॼु के टाइम मां भले ई माण्हू भई जो ॾेखा छोड़े सफलता पाण कठे ग़लति रस्ते चुन लिया फिर बि ॾेखा सफलता हमेशह भई ॾेखा ईमानदारी ॾे ई मिलाई कने भई ईमानदार माण्हू भले ई कुझु टाइम तक संघर्ष करा कने ॾेखा जीत तेसरी हुई कने भई ईमानदारी त बोलाए भई लंबी चलाई कने धोखाधड़ी त चलाए ज़रूरी पर से थोरे वक़्त तक चलाई बाधा थी ती दरा ॾेखा जी अंत भई ठीकु नी हूंदा कने फिरी बेइज़्ती मिलाई भई कने आ सारे सियाणे बि हमेशह बोला कराए भई ईमानदारी जो फल मिठाइयूं आहे कने ईमानदार अर्थ भई ॾेखा अपने कर्तव्य जो पूरी निष्ठा और सच्चाई कने निभाणा जे भई कोई माण्हू अपने कामा जो बिना लालच बिना धोखे और बिना जिम्मेवारी कने करा ते भई माण्हू ईमानदार मञिया जा एक विद्यार्थी ॾेखा भई अगरि पढ़ने वारा विद्यार्थी आहे भई अपनी परीक्षा मंझि नकल न करो एक व्यापारी भई ॾेखा तोलन जो भई गलत ना करो कने कोई भी कर्मचारी अपने काम का जो भई लगना कने करो कने भई देखा एक नागरिक मुल्क हारे नियमन जो कानून इधर पालन करो ता से भई देखा से ही मानू ईमानदार मना जाए भई आज के टाइम कने एड़ा जीव देखा ईमानदार मानू जो भीतरा दे मजबूत बनाई जो ईमानदारी एड़े मानू निडरोई कने भई जी है कने भई से देखा किदी भी बात रे से निडर दे भई देखा कने अड़े माण्हू रे मन मंझि संतोष हुआ कने आत्मविश्वास हुआ कने भई शांती रही आज के नवे ज़माने मंझि समाज भई देखा छोड़े बदलना लगरा कने भई सभु माण्हू छोड़े ई डबे कमाइण अहिड़ी दौड़ मंझि भई देखा लगरे कने ग़लति रस्ते जाई कने डबे बि कमाइण लगरे कने बहुत ज़्यादा कोशिश ई भई रिश्वतखोरी धोखाधड़ी झूठ भ्रष्टाचार काफ़ी सारी बुराई आ कने भई देखा नशे में तो देखा काफ़ी ज़्यादा भई लगी गिरे हर दिहाड़े भई देखा बदना लग रहा भई हर चीज़ बुराई कने अड़े टाइम भई देखा ईमानदारी रा देखा महत्व और बधी जा समाज में अगर देखा भई ईमानदारू जो माणू ऐसे रहेंगे तो ईमानदारी माणू देखा भई इसे भी होना जरूरी है और ईमानदारी देखा भई विश्वास भी देखा बन रहा रहा कने भई विश्वास भी खत्म नहीं होता कने भई कोई भी किस पर देखा विश्वास नहीं कर सकता आज के ज़माने कने यदि घटे भई टब्बर समाज और मुल्क जो मजबूत बनाना जो

ज़रूरी आहे जो भई देखा ईमानदारी ते ई मज़बूत बणी सघां कन ईमानदारी वधिया संस्कार दे ई भई बचियारे जो व्यक्तित्व जो बणाइण मंझि ख़ासि भूमिका निभाई भई कन भई अहिड़ा माउ बाप भई बचिया जो सचाई और ईमानदारी पाठ पढ़ाई सघां कन आने वारी पीढ़ी ईमानदारी जे बारे में भई देखा भई ॼाणणु ज़रूरी आहे इहे भई एक आदर्श समाज रहा बनना भई देखा बहुत जरूरी है कने भई अड़ा ईमानदार मानू जो सम्मान विश्वास और सफलता देखा सब कुछ मिल सका कने ईमानदार मानू जो समाज में देखा आदर मिला और भई मानू अड़े जो मानू इन गास भी देखा भरोसा भी बहुत ज़्यादा हुआ ईदी दे आत्म सम्मान देखा भई बधाई जा मानू रहा कने अड़ा जी देखा ईमानदार मानू जो समाज मंझ सब कुछ मिल जा भाई देखा ईमानदार मानू जो समाज मंझ आदर समानता मिला और कनेड़ा भाई देखा अगर अड़े मानू ईमानदार मानू कठे तीसरे जीवन जो देखा सो भाई भाई थोड़ा ध्यान रखना जरूरी हुआ सीख लेनी जरूरी हुई कने भाई छात्र जीवन मंझ मानू रे भविष्यरी नींब हुई भाई छात्र जीवन मंझ ईमानदारी अपनाई जाओ तो अगे चली कने भाई मुल्ख रा वधिया नागरिक बना कने भाई सही देखा देश चलाई सका कने भाई भाई परीक्षा मंझ देखा कई बार अड़ा हुआ नकल करना झूठ बोलना और भाई दूजे रा अपमान करना और गलत आदत पाली लेनी भाई इदी मंझ भाई कुछ टाइम कट्ठे देखा थोड़ा जहा लाभ तो मिल जा पर तिदे बाद देखा भाई दुर्गति बहुत ज़्यादा हुई कने भाई और नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ कने भाई ईमानदार विद्यार्थी मेहनत पर विश्वास कराँ कने से भाई धीरे धीरे आगे बढ़ा अपने ज्ञान और क्षमता रे बल पर तेजो देखा भाई सफलता भी मिली जाई कने एड़ी सफलता भाई देखा स्थाई हुई कने जीवन भर भाई से भाई फायदे जी रहे हैं और जीवन भर सम्मान भी मिला कने टब्बर भी विश्वास पर चला भाई कने विश्वास री नींव ईमानदारी दे हुई कने टब्बरा रे सदस्य एक ही दूजरे देखा भाई सच बोलना और जिम्मेवारी निभाना और घरा प्रेम और शांति बनाई कने रखना भी जरूरी हुआ ताई देखा तुसे ता थोड़ी जी गलबात सुनी ता जी हुण सुनना सा लोकगीत सुना जी ए लोकगीत।

जी तुसे सुनया लोकगीत आवाज थी अक्षर सिंह परमार और ज्वाला प्रसाद शर्मा री। ता जी तो सारा मनोरंजन भी हो गया भाई। हुण एक और गलबात करनी शिल्पकला कारीगरी और रोजगार। भारत अपनी संस्कृति परंपरा और कला कठे पूरे विश्व में प्रसिद्ध आ। शिल्पकला कारीगरी केवल भाई आ सारी पहचान ही नहीं बल्कि लाखों मानवारी आजीविका भी मंज कने भारत मंज अजे भी भाई ग्राम छोटे शहर तक बहुत सारे टब्बर भाई पीढ़िया दे हस्त शिल्प और पारंपरिक कारीगरी माध्यम दे भाई अपना जीवन भाई यापन लग रहे करना। कने शिल्प कला रार था भाई हाथ दे बनाई जाने वाली बढ़िया और कई सारी चीज़ा इद मंज भाई लकड़ी री नकाशी मिट्टिया रे बर्तन बांसा द्वारा भी कई चीज़ा बनाई जाई। कने भाई काफ़ी सारी चीज़ा ही और जो भाई काफ़ी प्रसिद्ध ही कने माणू भी लाना लग रहे चीज़ा भाई ऊनी शौला कढ़ाई हथकरघा धातु कला पत्थरारी मूर्तियाँ कने भाई और चंबा रुमाल कांगड़ा चित्रकला भाई शामिल ही। कने भारत रे हर राज्य मंज अपनी विशेष शिल्प कला और परंपरा ही कने भाई हिमाचल प्रदेश री ऊनी शॉल भाई और हाथा दे बने री चीज़ा देश विदेश मंज प्रसिद्ध ही। शिल्प कला एक कला ही कने बल्कि मेहनत धैर्य और प्रतिभा रा संगम आ।

एक कारीगर जो अपनी कला मंज काफ़ी सालार अनुभव हुआ कहने भाई हाथ आ रही मिन्नत दे किस भी चीज़ा जो भाई से भाई आकर्षक और मूल्यवान बनाई दिया कहने यही कारण है भाई आज भी हाथ दे बने चीज़ा की मांग भाई काफ़ी ज़्यादा हो कहने आज के नौ जमाने सब चीज़ा मशीन लग रही बनना फिर भी हाथ दे बने रही चीज़ा री मांग भाई कम नहीं हुई कहने अड़ा जी भाई ग्राँव रे इलाक मंज जनानिया कट्ठे आत्मनिर्भर भाई बनना बहुत जरूरी है कहने बनना भी लग रही भाई जनानिया सिलाई कढ़ाई बुनाई टोकरिया बनाना पत्तल बनाना ऊनी मस्त्र बनाना इदे अपनी आय जो और ज़्यादा बधाई सकें कहने डबे कमाई सकें भाई इदे जनाने मंज भाई आत्मविश्वास और बधी जा कहने और अपने घर जो भी चलाई सकें कहने अड़ा भाई देखा सरकार भी शिल्पकारा और कारीगर जो प्रोत्साहन लग रही देना कहने इदी कटे प्रशिक्षण कार्यक्रम ऋण सुविधा और हस्तशिल्प मेले स्वयं सहायता समूह कहने भाई ऑनलाइन विपणन कटे भी सुविधा दीती जाना लग रही कहने इंटरनेट और सोशल मीडिया मंज भी भाई शिल्प कला जो नई दिशा दीती जाना लग रही कहने ऑनलाइन माध्यम दे भी विदेश मंज अपने उत्पाद बेची सकें कहने भाई रोजगार रे नए मौके भी मिली सकें नौजवान भाई डिजिटल माध्यम दे भी हस्त शिल्प उत्पाद रा प्रचार कर सकें कहने भाई विद्यालय और प्रशिक्षण संस्थान मंज ज़्यादा पाठ्यक्रम भाई शुरू होना लग रहे कहने भाई ये जरूरी भी है ईद में ही देखा भाई आसर है जो नौजवान है भाई काम का सीख सकें और भाई अपने रोजगार जो भाई देखा बधाई सकें कहने अपनी पहचान संस्कृति और शिल्प कला भाई आसारी जो संस्कृति रा खास हिस्सा और आसे अपनी पारंपरिक कला जो भाई संरक्षित भाई कर गए कहने जो आने वाली पीढ़ियाँ भी देखा भाई जो जानगी और अपनी संस्कृति दे जुड़ी रहेंगी कहने और भाई माणुआ जो कहने भाई देखा ये जो रोजगार मिलता रहेगा भाई ये जो शिल्प कला और कारीगरी ताजी देखा तुसे थोड़ी जी गलबात सुनी जी ताजी आसा सुनना जी लोकगीत ताजी सुना जी ये लोकगीत।

जी तुसें सुनया लोकगीत, आवाज थी राजेंद्र शर्मा री। ता जी इदी सोगी मंडियाली कार्यक्रम मारा वक्त पूरा होना लग रहा। आ गया देवा, नमस्कार।

आकाशवाणी शिमला बेलदी 5:20 भोरे पेश है त्यों मन पसंद पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम। पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम सुनने वाले से भेजना करताप सिंह ठाकुर पंगवा तरफा बेलदी नमस्ते।

जी सुनने वाले हो हाजरा अखबार, फिर तुम अपने मनपसंद पंगवाली बोली कार्यक्रम गिनके तुम सुभियाँ सुनने वाले के आज इस कार्यक्रम अंतर अखबार फिर स्वागत करते। सुनने वाले जिन तुम सुबह पता है कि हैं कार्यक्रम

आकाशवाणी जे प्राइमरी च्यानल आहे मीडियम वेव जसबो ते, तस जो साथे साथे आकाशवाणी एफएम चैनल 104.7 मेगाहर्ट्ज़ से फ्रिक्वेंसी एस पुट भी था साथे साथे है से कार्यक्रम में त्यों आनंद डीटीएच तो मोबाइल ऐप पुट भी नहीं थे हैं कार्यक्रम हफ्ते अंत चार रोज सुमारे बुस्ते शंचरे बेल दे 5:50 पुठा शुरू करते और 5:50 तक पंगवाड़ी बोलिया कार्यक्रम चलता इलाके अस जे गीतियारी के आवाज़ अंतर गीते से सुनाते देशी प्रदेशी खास खास खबर और जे भी बते रेड़ी विषय भूते तस पुठा सुझे डखबोख लाते आज जे असा डखबोख लानी अस्ती तस अंतर असा जिलहणु तठा बुजुर्ग के इज्जत करे अतपुट गल लानी जे बोट्याती जे हक अस्ता तसे बड़े इस्तेमाल बारे भी असा गल लानी अस्ती शुरुआत अंतरख लोग गीत सुनाते गीत सुन के बाद फिर तुम्हें डकबुक लाते फिर तस के बाद गीत सुनाते खबरें सुनाते और अखिन छुट्टिया फिर रख तुम लोकगीत सुनाते तो शुरू करते इस बेदे जिन लोकगीत क्या तुम पूरा आनंद नहीं है।

पांच बज के 50 मिनट तक पंगवाड़ी बोलिया कार्यक्रम चलता। इलाके अस जे गीत्यारे के आवाज़ अंतर गीते से सुनाते देशे प्रदेशे खास खास खबर और जे भी बते रेड़ी विषय भूते तस्पुटा जे डखबोख लाते आज जे असा डखबोख लाने अस्ती तो संतर असा जिलहानू तठा बुजुर्ग के इज्जत करे अतपुट गल लानी जे बोटियाती जे हक आस्ता तसे बड़े इस्तेमाल बारे भी असा गल लानी अस्ती। शुरुआत अंत रख लोग गीत सुनाते, गीत सुन के बाद फिर तुम्हें डकबुक लाते, फिर तस्के बाद गीत सुनाते, खबरें सुनाते और अखिर छुट्टियाँ फिर तुम लोकगीत सुनाते। तो शुरू कते इस बेदे जिन लोकगीत क्या तुम पूरा आनंद नहीं है।

जी शून्य वाली लेख राम पाले आवाज अंतर है बेदे जिन लोग गीत तुम सुनो अगर बढ़ते थोड़ी डख बोख लाते अपू बूटे जी हक खाई तस ढंग जो इस्तेमाल करे सुनने वाले हक तो हर मैनु अपना अपना पता है अपना अपना भला भी सुभिया पता है कसकनार दिखा रोई कसकनार दिखोटोई ऐसे बारे भी ढंग जो सब सोचते और आज कनी गल तैब है जागृति भी यही गेरी कि अपू जे संविधान दे तौरा हक है तो इस्तेमाल कना कना कना तैसे बारे भी ज़्यादातर मैं जस्ते से बड़े तरीके से जानते किसके ज़्यादातर मैं जे पढ़ो लिखो रस्ते तठा अपनी जिम्मेवारी जस्ते तो ना भी खरी बड़े तरीके जो समझते और जे अगर पढ़ो लिखो नहीं भी तो तैना भी आवे माता अरसा हो गया माते बारे तना जस्ते से अपने हक इस्तेमाल करी बठोरे और तना इन्हें भी पता लग गया कि असा किखे है हक जस्त से सुसर इस्तेमाल किया और किखे असा जे भैन फटोरा फिर भी जिखे अस आपस बच्च विचार करते एक्की होरी विचार सुनते और कई बार हेते कि अस कई बार कि माते बार हेते कि अस इन्हू भी भूतू कि अस हरियाणी के जिखे विचार सुनते तो कुड़ी न कुड़ी अपना विचार या फिर बोल सकते अपना जे फैसला है इसे भी बदलते जनू कि सहते कि आजकल जे दौर बोटे आती चलो रहा इस दौरान इस वास्ते कि भाई अपनी बोक जस्ते से समझाए फिर और होरा भी तसे बोक छूने इस वास्ते जे खासा टाइम भी भुता सके इस वास्ते जे उम्मीदवार आए भी ये तठा जे वोट छाना रहे तसके भी खासा टाइम है दीता कि अस एक्की होरी विचार खरे तरीके जो सुन के आपू राय आपू फैसला करने बारे सोच सके सुबहकना पहले अगर अस अपने इलाके कनार नज़र दौड़ाते अपने इलाके भोरे तरक्की वाले कम काज पुट नज़र दौड़ाते और इन भी हेते कि भाई काका कम कसे कसे बजाए जो कहनी कहनी करो रे कहनी कहनी पूरे रो रे और अगर कोई कम छूट गए रहे तो ईने वाला का ना नुमाइंदा स्ता या का जस्ता तो नहीं सोच थैता जे एना कम पूरे इन जस्ता से अगर बढ़ के कम कर सकता असा ये भी है ना जरूर आए कि जे नुमाइंदे आस्ते से आम मैं जी जड़ोर लोड़ी पहली गलत है और साथ साथ जड़ोरे तो ठीक है आज हर मैं जुड़ने की कोशिश करता से ईमानदार भी लोड़ी जे कि अपने काम काज अपनी जिम्मेवारी जस्ते से ईमानदारी जो पूरे रहे इस वास्ते बोते कि भाई जे बोटियाती अपना हक है से बड़ा सोची समझ के करना चाहिए मते बारह सनू भी हेते कि भाई अस कोई मैं रस्ता से बोक के तो खरी लाता जने कि अस बीठा बिश के बोक लान लगो रे तुहां जे खरी खरी बोक लाते अस भी लेकिन अगर कोई खास काम जस्ता अगर कन होए तस्ती अगर हैं काबिलियत नहीं तो तैड़ियाँ तुहां जस्ते से हैं बोके ना छूननी चाहिए काबिलियत वाला मैन होना चाहिए कि जैसे काबिलियत दस्ते तस कनार अस जस्त से अस अगर बढ़े क्योंकि अस अपने बारे नहीं सोचनु कि हैं रिश्तेदार भय अस जो खारी बोक कता या हैं कनार तसे जस्ता बर्ताव सुस रस्ता और हैं जस्त से कम काज भी कता से ठीक है ऐसे भी गल है तनपुट भी नज़र दौड़ानी जरूरी ऐसे भी जरूरी गल है लेकिन बड़ी गल अस्ती से इलाके बारे की सोचता से हर मैं जो जस्त से है कि नज़र जो हेता कि ना हेता अपने कमे बारे से जस्ता कतरा बोते कम काज तस्का नहीं था और ईने वाले टाइम अंत दूरे नज़र जस बोते भी दूर तक हेरी सकता है तसे बारे तसे की ख्याल आए से कनु सोचता इस बारे से अगर चढ़ने बढ़ने बारे भी सोचते हैं था कि भाई ठीक है जिखे इवें कम बोन लगो तस आप जो सोचन लगो असे ए गल ग्रांत जड़ी बोते हर मैनों अस रोज उठते बिछते तड़ी खर मतलब अस इन बोल सकते किसी भी मैनों लगभग गल पता बूती और अगर न भी पता हुई थी तो हरियाणा क्या पता लग गई थी।

तो इसलिए ए चीज़ें असें इस दौरान ध्यान थे क्योंकि इन्हें बारे टाइम जस्ता फिर 5 साल असा सिर्फ इंतजार करना तिखे असा सिर्फ बते जो है ना शुणनू है तिखे असा जो है ना मौका नहीं आती कि अस भी कोई अपना फैसला देने वाला जिस तरह से अपना कदम उठाई सके। हिबे जी असें छाड़ देनी अस्ती हिबे जी असें जे कदम उठान आस्ता हिबे जी असें फैसला करना आस्ता हिबे जी हैं राय बनोरी हिबे जी हैं सोच विचार बनोरा से आंसा जस्ता से अगर कुछ भी न समझीण लगू कि भाई आबे मुँह की कानून है मुँह तो पता नहीं लगन लगो रो तो कम से कम भगवान के यहाँ प्रार्थना करनी चाहिए कि मुँह आबे कहनु कानू जी मुँह ये भी ठीक लगन लगो रही भी इनू भय इसे भी कम जो जस्ता से ठीक है अस्तु वो भी कर सकता एनू माते जो है ना सब विचार जस्ते दिमाग अंतर ही थे तो आंसा कोड़ी न कोड़ी जस्ते से आस पड़ोस अंतर या जड़ी भी बुछ जस्ते से आपू गल थैन दी भी जे नुमाइंदे थे तना के भी छून लगोरे बोते थोड़ा तठा भी आंसा जानकारी नहीं आनी आज के टाइम अंतर सोशल मीडिया वाला जमान नस्ता मोबाइल से बयान के आता है तड़ी भी जानकारी हती लगोरी और अस ग्रां अंतर अगर अलग अलग टाइम अंतर हाजिर भूते जनि कि ग्राम सभा अंतर पूछते अस है ना या कोई अन्य ग्रह कम भी भूते तड़ी कहाँ सा मैं आनू कि मजद कन दी कागरी था ग्रह जस्ते से कम वास्ते जे अगर ये कैसे बोक का कन लगोरा या इन्हें भी बोल सकते कि हैं सेवा कन दी हैं जे आम मैन है तसे सेवा कन दी हमेशा का हाजिर है जस भी कसे जरूरत हुई तिखे से तैड़ी कब कब पूछता या ऐसे जस्ते पढ़ाई लिखाई बारे कतरा से जस्ता से स्तर रस्ता और ए भी सब ऐसा हेनु जरूरी है किसकी अगर से हैं ग्रह अंतर कम कन दी लेख हस्ता तो तस्के अगर अगर ऐसा घेण अस्तु तस्के अगर नुसुण अस्तु तो होरे भी कम करने आस्ते तो से थोड़ा अगर नसने लायक भी लोड़ी से अना में लग लोड़ी नहीं से ग्रां बते बेर निसके भी से काम करने वाला लोड़ी तस नज़र जो भी ऐसा हेनी चाहिए और ई ऐसा थोड़ा कोड़ी न कोड़ी ऐसा थोड़ा दूरेरी थैन क्यों जिस तरह से कस गल मनता या कमा धर्म है कमा जाति है का हैं बोते जे खानदान भय ऐसे चीज़ें कई बार सेन लगते और तस्वर जो चीज़ें करते फिर बाद में तेना दी मारे जाते अबे ऐह खोटो भी तिखे ऐसा ऐसे वो क्यों आज इन्हों क्यों तेनू क्यों तो इस कनार भी ऐसा ध्यान थे आना चाहिए लेकिन जे काबिल मैन उसका जे इलाके तरक्की बारे जे गल कर सकता अगर तरक्की बारे सोच सकता या कम कन भी लगो रसे या कम पहले भी तेनी कोई करके उरा लो रोस्तु तो ऐसे गल ऐसा ध्यान थे आनी चाहिए और अगर कुछ भी ना समझो तो भगवान के प्रार्थना करनी चाहिए दंड देवतियाँ के प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे थोड़ी जनी अकल दिए मुँह जो यानी सोच दिए भैया क्यों कस कनार दी जस्ता से अपने हक जस्ता से इस्तेमाल करूँ ताकि ईने वाले टाइम अंतर जस्ता से हैं ग्राम वाड़ी की सेवा भी लोड़ी भोरी तरक्की काम भी लोड़ी भोरे और ईने वाले टाइम अंतर जस्ता से जनी मैं अग्रीणा लगो रहा अगर बढ़ना लगो रही सोच अगर बढ़ना लगो रही तेनों जो है नुमाइंदे भी जस्ते अगर बारी क्या सारी कम करे खैर मौके हिसाब जो अस्त हो ईने वाले टाइम अंतर फिर लाते और रख बेदे जन लोक गीत त्यार थे अस सुनते श्लोक गीत।

जी सुनने वाले कृष्ण काली आवाज अंतरै बेदे जनू देश गीत तुआ सुनो। डखबोक लाने आस्ते आ ब्यासा जिलहैन तठा बुजुर्ग के इज्जती बारे। सुनने वाले इनू तो आज कने जागोरे समाज अंतर एनी गल लानी बड़ी अजीब जनी भी लगती, पर कनू की जिखे अस समाज अंतर अलग अलग जे नजे जो हेते ता हो भी बड़ी भारी जिसते से दूरी आ रही है, जे बोलन अंतर आई हैं, सोचन अंतर अस्ती और हैं जे कम का अंतर भी बड़ा भारी फर्क अस्ता। खासकर अस कनार जस जिखे अस जिलहैनू तो बुजुर्ग के इज्जत वाली गल कते। हालांकि आज कल जे डक बोख है असा बोटियाती दौरे हिसाब जो ये भी लानी अस्ती कि भाई जिलहैन उठा बुजुर्ग के बारे आपू जे विचार आए आपू जे राय या फिर हैं अपना जे बर्ताव आए तस भी है ना असा जरूरी है, तस कनार भी असा लाने अस्ती गल। मते बार अस इनू भी सुनो रो कि भाई ओहो इस बार ता जिलहैनू के राज भून होए, खोटे भी अस अपने जे वोट जैसे सिख हुए खातिर फटाने इन भी गल आते कई बार सुनते नहीं। सुनने वाले अगर हैं आपू भी इन्नी सोच आए इन्ना विचार आए इन्ना ख्याल आए इन्नी है नज़र आए तो अस बदलने जरूरत हस्ती अस किसकी बते। अगर अस जलहणु के किनार इन्नी सोच थैन लगो रे तो यह बिल्कुल ठीक गल नहीं किसकी। ऐसे मतलब तो इन्ना बसता कि जे जलहैन जानी अस पैदा किए रे पालो रे पोसो रहे अस कोड़ी ना कोड़ी जगह पुठ पजाई छड़ो रे, अगर अस जलहैन प्रति इन्नी नज़र थैन लगो रे इन्नी सोच थैन लगो रे इन्नी विचार थैन लगो रे इन्ना है रवैया अस्ता तेने बारे तो अस कोड़ी ना कोड़ी अपनी पैदा करने वाली अपनी इज्जी भी बेइज्जती करन लगो रे, अपनी भेणी भी बेइज्जती करन लगो रे, कुड़ी ना कुड़ी अपनी भैनी भी बेइज्जती करन लगो रे, आपू ज्वेली भी बेइज्जती करन लगो रे और अपना कुई या होरी भी जे समाज अंतर है तेने भी बेइज्जती करन लगो रे। किसके आपू अगर अस ध्यान जो हेरे तो अगर कोई इलाके जे जलहैन आए जे हिम्मत करके अगर ईण लगो रही और हैं ग्रहें हैं समाजे हैं इलाके सिवाकन वास्ते जी अस्ते से अगर वोटियात दी भी खड़े रस्ती से चाहती किसे अगर ये के सेवा करे तसे बारे अगर अस इन्नी नज़र थैन लगो रे तो ये जे अस्ते नज़र जे अस्ते सोच सकते कि अस अपने गिहे जे जिलहैन अस्ती सचे हैं इजिए सचे हैं ज्वेलिए से या कसरे भाणिए कसरे कूए है ना जे भी भेण भी है जे तस आप जे सोच सकते क्योंकि अभी कसरे ना कसरे तो ईजिए कसरे कूए कसरे बैठे कोई ना कोई रिश्ता तो अस्ता ना जिलहैनू रे और बते इस दुनिया।

इस दुनिया अंतर इने वाला सिर्फ आके रास्ता है, और से रास्ता से बोते से जिल्हाणु के जस्ता से माध्यम जो जस्ता इस दुनिया अंतर इते घेते अंस माते तरीके जिस दुनिया के नष्ट अलग अलग तरीके जो, लेकिन इते जे तने तने अगर तिखे से हैं नुमाइंदी के करने चाहते हैं, अगर जिम्मेवारी ने आने चाहते तिखे सोचते हैं कि भाई ऐसे भी नहीं इते भाई कोड़ी कर सकती वे, ओहो ऐसा बड़ा मुश्किल भैगे हैं तेन भैगे तेन ठीक है माता टाइम थे जिखें पता जिल्हाण पतली थ्रे पतली थ्रे पतली थ्रे, पर ऐसे मतलब है नहीं कि हमेशा तने पतेल पतेल थाल था अगर बढ़ने टाइम के खेना थोड़ा हो सकता गलती भूल हो सकता जैसे कसे जे जिसके पहले अनुभव खरा थे जानी खरु दुनिया हेरोरी पढ़ो लिखो रहे हो सकता से थोड़ा बढ़िया काम करे, लेकिन ये भी बाले बाले शिष्ट रह ले तो अभी बढ़िया काम कर सकते एनुअस जिखे बुजुर्ग के बारे भी सोचते कि भाई नौजवान घबरों के कई बार इन्हों छूटते मिलते अब त्यू टेम नशिया ऐब हैं टेम है ठीक है गल अंतर भी सच्चाई है अभी सही हस्ते कि आज के टाइम अंतर नौजवान जैसा से मौके हती चाहिए से अगर इन चाहिए, पर ऐ मौके हती चाहिए ए बुजुर्ग धक्या के ना हती चाहिए, अगर तड़िका बुजुर्ग नहीं या कोई ऐना अनुभव वाला मैं नहीं जस काम करने नहीं थे और बोते तस जगह भरन दिया अगर जैसे नौजवान या जिल्हाण अगर इन लगो रही तो से खरी गल हस्ती तसे अस इज्जत करनी चाहिए, लेकिन अगर अस सोचते कि जे बुजुर्ग काम करने लगो रहा तड़ी पे ले आवे तसे जरूरत नहीं तसोरों करते तो से भी शायद कुड़ी ना कुड़ी हैं जे इज्जत देने वाली गल हस्ती जे बुजुर्ग के किनार तस थोड़े जने कुड़ी पतेल कन लगो रे, और ऐसे बारे से थोड़े सोचना चाहिए, और अगर जस्त से अपने बते राय अपने विचार जस्ता अपना व्यवहार जस्ता से बदलना ही रहा। खैर मौके साहब जो सीने वाला टाइम अंतर फिर हो ऐसे बारे तो हाँ जी डकबोक लाते खास खास खबर तो पहले सुनाते धर्मशाला पालमपुर मंडी सोलन नगर निगम समेत हिमाचल 51 शहरियाँ बोटियात भूनी आई शू ए बोटियात भ्यागे 7 बज के शुरू भूनी और दुसवा 3 बजे तक चलनी अस्ती इस बच्चे नगर पंचायती तो नगर परिषद आस्ते तने रिजल्ट भी शू बेल दिया ये गेण आस्ते तने जे गिनती कन के बाद, और जे ऐसे अलावा जे चर नगर निगम आस्ते धर्मशाला पालमपुर मंडी तो सोलन एने जस्ते से रिजल्ट 31 मई रोज जस्ते से बताइन आस्ता, ऐसे अलावा शहरी के जे 439 सीटें दी 1147 उम्मीदवार मैदान अंतर आस्ते नगर निगम वाले बोटिया थे जे पेट के निशान जस्त से तना पुठ जड़ी भी नगर पंचायती तथा नगर परिषद वाले निशान अस्त से तना जो हती गेरे, और ऐसे अलावा हो रही सके खबर अस्ती कि भाई हिमाचल सरकार पंचायती राज संस्था वाली के बोटियाती हिसाब जो जो जुड़ोरा जो भुगतान वाली छुट्टी अस्ती तसे बारे खास जस्त से अधिसूचना तना कार्ड हो रही कि भाई 26, 28 ते 30 मई रोज जस्त से पहले जड़ी जड़ी भी जन जन इलाक जैसे बोटियात हस्ती तैसे हिसाब जो तना छुट्टी हतीन हस्ती जैसे 26 ते 26 जैसे 28 ते 28 जैसे 30 ते 30 और जे दिहाड़ीदार जे मुलाजम हस्ते तना भी छुट्टी बोनी हस्ती। खबर हस्ती है IPL बारे की धर्मशाला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम अंत 17 मई रोज पंजाब किंग्स तथा रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जस्त से मुकाबला भूणा है। ऐसे अलावा खोरी खबर अस्ती CBSE की बारे कि भाई 12वीं जे रिजल्ट कैडिए रस्ता तसे बारे अगर कसे कोई शक शुभ आस्ता था जे सहूलियत आती थी तब जे अपने जे नंबरी के अगर तना लगतू कि घाट हेरे तो तस वास्ते जे अस्त से 2 चरण अंतर जे है ना समीक्षा भूती तसे फायदा जे अस्त से हर गैबरू जिस जे भी इन्हें सोचने लगो तस उठान चाहिए था मौके साहब जो कुछ खास खास खबर थी तुम्हें सुनाई छड़ी अखबे जिन्हें होर लोक ही सत्यार थे सुनते लोकहित।

छोड़ने वाले वो कृष्णा शर्मा तो साथी के आवाज़ अंतर बदे जिन्होंने लोकगीत जो साथ पंगवाली कार्यक्रम टे पूरे ने इजाजत दी तो वहाँ से भियाँ जमेली नमस्ते तथा वोट आती शुभकामनाएं तशुश।

अभी आप सुन रहे थे पंगुवाली कार्यक्रम, आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। आइए अब सुनते हैं भारती शर्मा की आवाज़ में ये लोकगीत।

चंद्रमोहन ठाकुर की आवाज में अभी आपने ये लोकगीत सुना। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार प्रसार भारती की रेडियो DTH सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुने जा सकते हैं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। निर्वाचन आयोग ने कल प्रदेश में होने वाले शहरी निकाय चुनावों के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और पोलिंग पार्टियों को गंतव्य स्थानों पर भेज दिया गया है। शहरी निकायों को लेकर प्रदेश में 439 पदों के लिए 1147 उम्मीदवार मैदान में हैं। नगर निगम के चुनाव पार्टी चिन्ह पर करवाए जा रहे हैं और मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच माना जा रहा है। नगर पंचायतों और नगर परिषदों के चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं करवाए जा रहे हैं। शहरी निकाय चुनाव में लगभग 380,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन नगर निगमों सहित प्रदेश के 51 शहरी निकायों के लिए कल सुबह 7 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक मतदान होगा। नगर परिषद और नगर पंचायतों के लिए डाले गए वोटों की गिनती मतदान खत्म होने के तुरंत बाद शुरू होगी और कल शाम तक ही परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा नगर निगमों के लिए डाले गए वोटों की गिनती 31 मई को होगी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शहरी निकायों में पार्टी की जीत का दावा किया है। उन्होंने आज शिमला में कहा कि चारों नगर निगमों में कांग्रेस पार्टी ने ईमानदार व कर्मठ प्रत्याशी उतारे हैं और सभी शहरी निकायों का संतुलित विकास करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
1: चाहे वो मंडी है, चाहे वो धर्मशाला है, चाहे वो पालमपुर है, चाहे वो सोलन है, हर जगह में जो ऑब्जर्वर्स लगाए गए थे, जिनको जिम्मेवारियां पार्टी की ओर से दी गई थी, हमने पूरी मजबूती से पार्टी को जिताने का हर संभव प्रयास किया है। हम शहरी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमने एक पूरा रोड मैप जो है वो जनता के बीच में रखा है कि किस तरीके से हम शहरी विकास के लिए कार्य

0: करेंगे उसमें, चाहे पार्किंग्स का डेवलपमेंट होना है, हाइड्रोलिक पार्किंग्स का डेवलपमेंट होना है, सिवरेज सिस्टम का डेवलपमेंट होना है। और हमने हमेशा केंद्र से भी हिमाचल के, चाहे वो मेरे पीडब्ल्यूडी से संबंधित मसले हैं, वैसे ही शहरी विकास में भी, उसमें भी हमने बजट लाने का प्रयास किया।
1: दूसरी ओर प्रदेश भाजपा ने भी नगर निगम चुनावों में अपनी जीत का दावा किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज नाहन में कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने शहरी निकायों में विकास कार्यों की अनदेखी की है और लोगों को झूठी गारंटियां दी जा रही है। उन्होंने कहा कि चारों नगर निगमों में भाजपा की जीत से विकास का नया दौर शुरू होगा और जनता को कांग्रेस सरकार की विफलताओं से मुक्ति मिलेगी। बिंदल ने कहा कि भाजपा की जीत के बाद नगर निगमों में पेयजल, पार्किंग, सड़क और अन्य आधारभूत सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में मतदान को लेकर प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं। जिले में धर्मशाला और पालमपुर नगर निगमों के अलावा अनेक नगर परिषदों और नगर पंचायतों में मतदान हो रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज बैरवा ने बताया कि मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की पार्किंग या अन्य गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने जिला के सभी मतदाताओं से वोट डालने की अपील की है।
2: जो पोलिंग डे का टाइम है, सुबह 7 बजे से लेके शाम को 3 बजे तक पोलिंग का टाइम है। उसके बाद जो ईवीएम्स हैं, वो ईवीएम्स को सील किया जाएगा और जो नगर निकाय में जो नगर निगम हैं उनको छोड़कर बाकी की काउंटिंग, वहां पर जो तय काउंटिंग स्थल है वहां पर काउंटिंग की जाएगी। सारे जगह पोलिंग पार्टीज हमारी मूव कर चुकी हैं। सभी से समान रूप से अनुरोध है कि सब आएँ और अपने मत का प्रयोग करें।
1: शहरी निकाय चुनावों के अलावा प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर भी गतिविधियां जारी है। राज्य में इस बार 26, 28 और 31 मई को 3 चरणों में पंचायती राज चुनाव करवाए जा रहे हैं। सिरमौर जिला में 28 पंचायतें निर्विरोध चुनी गई हैं और सरकार द्वारा इन्हें 25-25 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका वर्मा ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए जिले में कुल 3,909 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं।
3: जिला परिषद में टोटल 53 कैंडिडेट्स हैं जो कंटेस्ट करेंगे। पंचायत समिति टोटली 36 प्रधानों के उसमें जाते हैं और 8 ब्लॉकों के जो टोटल कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं वो 8-6 हैं। जिला सिरमौर में इस बार 28 पंचायतें ऐसी हैं जिन्होंने निर्विरोध ग्राम पंचायत की सूची में ये जो शामिल हुई हैं।
1: शिमला शहर में सहब सोसाइटी से जुड़े सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिससे सफाई व्यवस्था पर असर पड़ा है। शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने सफाई कर्मचारियों से हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने की अपील की है। उन्होंने आज शिमला में कहा कि चुनाव आचार संहिता के बाद 10% वेतन वृद्धि का फैसला लिया जाएगा और वे सफाई कर्मचारियों की सभी जायज समस्याओं को मुख्यमंत्री व शहरी विकास मंत्री से उठाएंगे।
4: किसी के बहकावे में आकर के आप ये इन चीज़ों को मत करिए, क्योंकि नुकसान किसका हो रहा है? गार्बेज जो कलेक्टर है उसका होता है। सफाई व्यवस्था का होना यहाँ बहुत जरूरी है। आप जल्द से जल्द इस हड़ताल को वापस करके, इस तरह से वो करना, शिमला का नाम खराब करना कोई अच्छी बात नहीं है। नगर निगम के इतिहास में 30 लाख तक का इंश्योरेंस मैंने करवाया, जो शायद इन्होंने कभी मांग नहीं रखी थी मेरे पास। 7 डेज की छुट्टी हमने एक्स्ट्रा बढ़ा दी। ईजीएम में जो कह रहे हैं कि 10% हमारी वृद्धि का जो फैसला है ईजीएम में होता है, हमारा अभी कोड ऑफ कंडक्ट है। जल्द से जल्द मैं एक ही सिंगल उसको लेकर के जा सकता हूं, मैं ईजीएम करवाऊंगा।
1: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी के हमीरपुर धर्मशाला केंद्र और एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कांगड़ी कार्यक्रम।

कन्नै शहरां जो बसाने ताईं जिहड़ा है जंगलों की अंधाधुंध कटाई करी दिती है। बेचारे जानवर अपनी ही घरे ते बेघर हो गए हैं। कहने का मतलब है जेड़े जंगली जानवर जंगलों च रहिंदे थे उत्थों इंसान ने बड़ियां बड़ियां बड़ियां फैक्ट्रियां पाई दी हैं, अपने कारोबार पाई लिया हैं, अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगा पाई लिया हैं, कने सह जानवर कने पेड़ पौधे जड़े हैं जंगल कटी ते हैं, कने सह जड़े जानवर हुण शहरां दी तरफ होना शुरू हो गए हैं, सह अपने घरे ते बेघर हो गए हैं। हाथियों के दंद, कस्तूरी मृग की नाभी, शेरां दी खाल कने हड्डियां कने रिछां दे अंगां ताई जानवरां दा गैर कानूनी कारोबार बाहरले मुल्कां तक चलता है। चंद पेशियां ते बेजवान जीवां जो जड़ा हा जीवां जो जड़ा है मारिया जाता है। कहने का मतलब है कि ये भी सिर्फ अपने कारोबार पैसे के कारण इंसान इतना गिरी गया है कि अज जड़ा है जंगली जानवरों की हत्या करने ते भी नहीं जड़ा है घबरांदा नहीं डरता है। कस्तूरी मृग की नाभी होई हाथियों के

हत्या उन्हें जो नुकसान नहीं पुजाना चाहिदा है, क्योंकि ये भी एक कुदरत दा साढ़े साई ही इन्हां च भी जान है। तो दिखा ये गल कीती असा जंगली जीवां दी सुरक्षा साडा परम फर्ज है। हुण चलदे हन सुनदे हन शांति बिस्ता गाया कार्यक्रम दा ये लोक गीत।

अभी आप सुन रहे थे कांगड़ी कार्यक्रम, हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम आप आकाशवाणी शिमला के साथ साथ एफएम शिमला पर भी सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं महाश्वी कार्यक्रम।

महाश्री कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं के मीरा वर्मा रा नमस्कार। उम्मीद करूँ मारे श्रोता ठीक ठाक होले और देखो जी मारे हिमाचली कार्यक्रम और आनंद लड़ने लगी रो होले। आज कार्यक्रम दी जो मेरे तुसो सही बातचीत करनी से बातचीत होनी। देखो आज असो राष्ट्रीय डेंगू दिवस तेथे अलावा बातचीत करनी मारे हिमाचल प्रदेश दे हस्तशिल्प उद्योग और खबरसार और लोकगीतों होने ही होने। तो सभी तो पहले बात करे लो मैं राष्ट्रीय डेंगू दिवस और बारे दी। भारत वर्ष दे राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई के मनाया जाओ। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित इस दिहाड़े का उद्देश्य मानसूनों तो पहले डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इतरे प्रसारों के रोकना सो। राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाए जाने का उद्देश्य आमजनों के डेंगू रोगों के प्रति जागरूकता फैलाना, मच्छर जनित बीमारियों के प्रसारों पर नियंत्रण करना और मच्छरों के प्रजनन स्थलों के खत्म करी रो डेंगू संक्रमणों की रोकथाम करना आसो। इत रीति क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और जन सामान्य री सहभागिता बहुत जरूरी मानी गई आसो। डेंगू और चिकुनगुनिया संक्रमित एडीज मच्छरों के माध्यम से ही फैलने वाले रोग आसो। मानसून और मानसूनों तो बादों के वक्तों दे पानी का जमाव होने की स्थिति बनने पाए एडीज मच्छरों के प्रजननों दे बढ़ोतरी हो जाओ जनी सही डेंगू और ओरो मच्छर जनित रोगों रे प्रकरण बढ़ने की संभावना रहो। वर्तमानों दे स्वास्थ्य विभागों द्वारा मच्छर जन्य परिस्थितियों रे रोकथाम रही लार्वा सर्वे काम भी किया जाने लगी रहा। स्वास्थ्य विभागों द्वारा आमजनों दो अपील की गई है सो जैसे अपने घरों और आसपास वाले क्षेत्रों दे पानी जमा ना होने दो और एडीज मच्छरों के प्रजननों के रोकने रीते ही विशेष सावधानी बरतो। पानी की टंकी

कूलर, फ्रिज, फ्रिजरी ट्रे, गमले, फूलदान और जो कंटेनर हो, तीनों रे नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए और तीनों के पूरी तरह से ही ढकी रखना चाहिए। कूलरों का पानी हर हफ्ते जरूर बदलना चाहिए। घर और छतों पाए देखो, कई बार हमें टायर, डब्बे या और ऐसी चीज़ों जो उपयोग दी ना हो, तिंदा भी पानी जमा नहीं होने देना। मच्छरों तो बचाओ नहीं ते घर और खिड़कियों और दरवाजे पाए मच्छरों ते जाली लानी चाहिए। और देखो, पूरी बाजू के टाले पहनने चाहिए और सुतते वक्त मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। जे परिवार और किसी सदस्य के बुखार आओ तो तीनों के तुरंत ही नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य कार्यकर्ता साथी संपर्क करी रहो, खून और जाँच करवानी चाहिए। बीमारी देखो कोई भी हो, तेरे उपचारों तो बेहतर तेरा बचाव ही हो। और डेंगू के मामले दे तो बचाओ ही सभी तो बड़ा हथियार माना गुआ सो। इतरी ती बरखा रे मौसमों तो पहले ही लोगों के इतरे बारे में जागरूक करना बेहद जरूरी हो ही जाओ। घरों की साफ सफाई का ध्यान रखना बेहद जरूरी हो। जे किथी पानी जमा हो ही जाओ तो तिथी डेंगू मच्छरों की उत्पत्ति का मुख्य कारण हो। तवे तेती माटी का तेल या पेट्रोल पाए देना चाहिए ताकि मच्छरों का सफाया हो ही जाओ। पानी रे बांडे टंकियों के अच्छी तरह से ढकी रखी देना चाहिए और हमों के अपने हाथ पैरों के भी अच्छी तरह से ढकी रखना चाहिए। डेंगू रे लक्षण उभरने पाए डॉक्टरी सलाह जरूरी लेनी चाहिए। डेंगू हो ही जाने पाए रोगी के हर हालत में पौष्टिक और संतुलित आहार देते रहना चाहिए। डेंगू होने पाए तुलसी और गिलोय का सेवन करना चाहिए। विटामिन सी हमारे शरीर और इम्यून सिस्टमों के सही रखने दे मददगार हो। इतरी तई के आंवला, संतरा, मौसमी जे विटामिन सी सही भरपूर फलों का सेवन करना चाहिए। बुखार होने पाए पैरासीटामोल का इस्तेमाल करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए जे बुखार ज़्यादा ना बढ़ी जाओ। डेंगू रे बुखारों रे तई बकरी का दूध फायदेमंद माना जाओ, क्योंकि बकरी का दूध पीने से ही प्लेटलेट जो सो से बढ़ी जाओ। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पाए विभिन्न सरकारी और निजी संस्थानों द्वारा शपथ ग्रहण और जन जागरूकता अभियान चलाए जाओ। इस सालों की थीम सो एकजुटो कार्रवाई करो और उन्मूलन करो। तो जी, ये थी बातचीत राष्ट्रीय डेंगू दिहाड़े बारे दी और ये सुनो तुसे लोकगीत

हवा टीरोरी। तो जी अमरनाथ शर्मा री आवाज़ों का तुसे ही लोग गीत सुना। बात कर लेनी मारे वे हस्तशिल्प उद्योग और हिमाचल। मारा हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं और वीरों री भूमि नहीं असो, बल्कि हुनरमंद हाथों री भी जननी असो। प्रदेशों दे हस्तशिल्प और हथकरघा रे समृद्ध खजाने के एतिरे शिल्पी और बुनकरों रे हुनरमंद हाथ ना सिर्फ संवारने लगे रोए, बल्कि मजबूती साई आगू भी बढ़ाने लगी रोए। आधुनिक जमाने रे बदले परिवेशों दे भी पारंपरिक विरासतों के सहेजी रो हिमाचली हस्तशिल्प और हथकरघारी धमक आज भी कायम असो। बात चाहे सुई रे आश्चर्य रे तौरों पाए चंबा रुमालों री हो, या तबे धातु शिल्प रे कमाल चंबा थालों री, कुल्लू किन्नौरों रे शॉल और पूड़ों री हो, या तबे कांगड़ारी पेंटिंग लेखनू कला और सिरमौरी लोहियारी हो। हिमाचलों रे पत्थर शिल्प और काष्ट कला रा भी कोई सानी नहीं असो। इस सफलता रा सीधा श्रेय सूबे रे कारीगरों और बुनकरों रे हुनरमंद हाथों के ही जाओ। हिमाचल प्रदेशों दे द्वार लेखन या भित्ति लेखनों री परंपरा प्राचीन वक्त दई प्रचलित असो। आज भी घरों दे जब कोई शादी समारोह या मुंडनोरा अवसर हो, तो एक कला घर और द्वारों पाए शुभ समारोह रा संकेत दियो। इस कला के लई रोईशा बोला जाओ जे पहले वक्तों दे जब संसाधनों री कमी हो थी, तब गांव दे शादी समारोह दे प्राकृतिक संसाधनों रा पूरा उपयोग किया जाओ था। तेस वक्त घर दे लगने वाले स्वागत द्वारों री ती घर और आंगणों रे मुख्य द्वारों पाए बाँस और दो डंडों रे सारे साथी चीयरी पचड़ी रे साथी स्वागत गेट बनाए जाओ थे, जो सीधे तौर पाए ए संदेश।

शो था जे घर और देखो ई शादी या मुंडन समारोह असो हिमाचल दे द्वार लेखनरी कला रा इतिहास 20वीं सदी द ई देखा जाई सको। चित्रकला रे रूपो दे एथेरा जनक बड़ई के माना जाई सको। तीने इस कला के चित्रकला रे रूपो दे प्रयोग किया। आहिस्ता आहिस्ता ए लेखन परंपरा शादी समारोह दो लई रो मुंडन आदि शुभ कामों दे प्रचलित होने लगी। पक्के मकानों रे बनने साथी घरों दे द्वार लेखनरी परंपरा विलुप्त होने लगी। एवे शादी ब्याह दे द्वार लेखनरी ती बाजारों दो कागजों पाए बने द्वार लेखनों के प्रयोग किया जाओ जनी से घर री द्वार खराब ना हो। हालांकि इबू भी कांगड़ा कला संग्रहालय दे चित्रों रे रूपों दे इस लेखनों के उकेरा गुआस हो सिरमौरों री समृद्ध संस्कृति और सभ्यता रा परिचायक इतिरा लोहिया प्रदेशों दे ही नहीं बल्कि देश विदेशों दे भी प्रसिद्ध सो। लोहिया सिरमौरों रे ट्रांसगिरी क्षेत्रों री पहचान और पारंपरिक वेशभूषा सो यानी के ठंडों रे दौरान इस क्षेत्र रे लोग शौक साथी पहनो। सामाजिक कार्यक्रमों दे मुख्य अतिथि के सम्मानों रे तौरों पाए लोहिया भेंट करने री परंपरा आज भी जारी है सो। पारंपरिक तौरों पाए सर्दियों रे मौसमों दे टाले पांदे पहने जाने वाला लोहिया ऊनोरा बना हुंदा हो। बेड बकरियों रे पेशे साई जुड़े लोग ऊनों के आपी काती रहो और ग्रामीण स्तरों पाई स्थानीय बुनकरों दो 9 इंच चौड़ी पट्टी बुनवाई जाओ और तबे तीनों पट्टियों के जोड़ी रो लोहिया बनाया जाओ। चमड़े पाए जरी और रेशमोरे धागे साई महीन कारीगरी सही तैयार चंबा चप्पलोरा डंका देश विदेशों दे बजो। चंबा चप्पलोरा इतिहास 500 साल पुराना बताया जाओ। चंबा रुमाल अपनी अद्भुत कला और शानदार कशीदा कारीगरी तई के जाना जाओ। चंबा रुमालोरी कारीगरी मलमल सिल्क और कॉटनों रे कपड़े पाए की जाओ। श्री कृष्ण के बहुत ही सुंदर डंगों साई रुमालों पांदे धुई किनारे कढ़ाई के करी रो उकेरा जाओ। कुल्लू शौले भी देश विदेशों दे अपनी अनूठी पहचान बनाई है सो। आधुनिकता रे दौरों दे वे कुल्लू शॉल अपने आकर्षक डिजाइनों और पैटर्नों रे तई के जानी जाओ। कुल्लू रा हस्तशिल्प दुनिया भरों दे प्रसिद्ध सो। ए तीरी टोपी शॉल मफलर और जुराबों रा हर कोई दीवाना सो और ए तीरी जो पूड़िया सो से भी काफ़ी प्रसिद्ध सो। मंडी कुल्लू दे पूड़ों के बांग और रेशे साथी साथी जड़ी बूटियों साई तैयार किया जाओ। बांग और पाचों रे तने रे साथी ब्यूड़ों रे रेशे रा भी इत्थे के बनाने दे इस्तेमाल किया जाओ। इनों के पवित्र माना जाओ। इनों के पहनी रहो देव स्थलों दे भित के जाने दे कोई पाबंदी नहीं होंदी। एक पूड़ों रा जोड़ा बनाने दे 3 तो 4 दिहाड़े लगी जाओ। चंबा रुमाल थाल और चप्पल भी देशी नहीं विश्व पटलों पाए चंबा के अलग पहचान दिलाई है सो। एती पितलों री थालों पाए होने वाला मेटल वर्क और मूर्ति कला दे चंबा रे शिल्पियों रा दूर दूर तई के कोई सानी नहीं है सो। कुल मिलाई रो हिमाचल रा हस्तशिल्प उद्योग बहुत बढ़िया असो और देशों दे ही नहीं बल्कि विदेशों दे भी ये तेरी बहुत मांग असो। तो जी ये तो थी बातचीत हस्तशिल्प उद्योग और हिमाचल रे बारे दी। ए वे सुनो तुसे ये लोकगीत।

असा केड़े रोज बोलना तो जी बिमला चौहानोरी आवाज़ों दा तुसे ये लोकगीत सुना ये बारिया सो आज की खबर सारोरी। धर्मशाला पालमपुर मंडी और सोलन नगर निगमों साथी प्रदेशों रे 51 शहरी निकायों दे कल मतदान होना। मतदान भैंसरी 7 बजे तो शुरू होना जो दोपहर बाद 3 बजे तई के जारी रहना। नगर परिषद और नगर पंचायतों ने तई डाले गए वोटों की गिनती मतदान खत्म होने रे तुरंत बाद शुरू होनी और कल ब्याले तई परिणाम घोषित करी दिते जाने। इत्थे अलावा नगर निगमों री तई डाले गए वोटों की गिनती 31 मई के होनी। शहरी निकायों री तई प्रदेशों के 439 पदों की तई 1147 उम्मीदवार मैदानों दे असो। नगर निगमों रे चुनाव पार्टी चिन्हों पाए करवाए जाने लगी रोए और मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा रे बीचे होना। दोनों ही पार्टी अपने अपने प्रत्याशी मैदानों दे उतारे असो और प्रदेश रे सभी बड़े नेताओं चुनाव प्रचारों रे दौरान मतदाताओं के रिझाने री कोशिश की। नगर पंचायतों और नगर परिषदों रे चुनाव पार्टी चिन्हों पाए नहीं करवाए जाने लगी रोए। शहरी निकाय चुनावों दे लगभग 380,000 मतदाता अपने मताधिकारों का प्रयोग कर ले। नगर निगम सोलनों दे मतदानों रे तई 28 मतदान केंद्र बनाए गए असो। इन्हां विचों दो 14 मतदान केंद्रों का जिम्मा महिला कर्मचारियों के सौंपा गया असो। जिला निर्वाचन अधिकारी मनमोहन शर्मा बताया जे पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान केंद्रों रे तई

रवाना करी दी गई असो, तीनों शहरों रे सभी लोगों के मतदान करने री अपील की असो। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस असो केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूपों सही घोषित इस दिहाड़े का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसूनों तो पहले इथे के खिलाफ निवारक उपायों के मजबूत करना असो। ये दिहाड़ा मच्छरों के प्रजनन के रोकने के उद्देश्य सही आसान नियंत्रण रणनीतियों के बढ़ावा देने तई मनाया जाओ। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डे इस मौके पाए नागरिकों दो डेंगू री रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने री तई एकजुट होने का आह्वान किया। नड्डे बोला जे केंद्र सरकार बेहतर निगरानी व्यापक परीक्षण बेहतर उपचार सुविधाओं और व्यापक जागरूकता अभियानों के माध्यमों से डेंगू नियंत्रण री कोशिशों के मजबूत करना जारी रखे होंगे असो। इस सालों का विषय असो डेंगू नियंत्रण तई सामुदायिक भागीदारी जांच करो साफ करो और डको। JP नड्डे डेंगू के खिलाफ लड़ाई दे सक्रिय सामुदायिक भागीदारी रे महत्व पाए बल दिता असो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE 12वीं कक्षा रे छात्रों री तई परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं रे बारे दे एक नोटिस जारी किया असो। इंदे निष्पक्ष पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया रे प्रति अपनी प्रतिबद्धता के दोहराया गया असो। CBSE बोला जे जो छात्र अपने परिणामों दो संतुष्ट नहीं असो से दो चरणों वाली समीक्षा प्रणाली रा लाभ उठाई सको। तो जी ये तो थी कुछ खबर सार और ये भी सुनो तुसे ये लोकगीत।

0: महास्वी कार्यक्रम के साथ ही हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होते हैं। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। अब आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi is scheduled to hold bilateral talks with Dutch Prime Minister Rob Jetten. He called on King Willem Alexander and Queen Maxima in The Hague this afternoon. The visit carries significance beyond bilateral ties and is expected to shape broader India-EU relations following the recently concluded India-Europe Free Trade Agreement. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, Prime Minister said the world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts, and an emerging energy crisis.
2: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: Highlighting global efforts to strengthen economic resilience, the Prime Minister said, India and the Netherlands are jointly focusing on building robust supply chains. Prime Minister Narendra Modi also underlined India's growing global role, describing the country as a land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values.
2: 21st सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: After concluding his visit to the Netherlands, Prime Minister Modi will travel to Sweden tomorrow on the third leg of his five-nation tour. Economic Offences Wing, EOW, of Delhi Police has busted a Goods and Services Tax, GST, fraud cartel and has arrested six people. Addressing the press conference,

0: Additional Commissioner in EOW, Ravi Kumar Singh, said that the accused were operating fake firms. He informed that accused used 50 fake shell companies for GST returns, fake billing and wrongful input tax credit claims. He said that fake GST transactions worth approximately 128 crore rupees were carried out through these firms. The Central Bureau of Investigation, CBI, today arrested a mastermind connected with the leak of biology questions in the NEET undergraduate 2026 paper leak case. The accused, named Manisha Gurunath Mandare, is a senior botany teacher from Pune, Maharashtra. CBI said that she was involved in the NEET undergraduate 2026 examination process and was appointed as an expert by the National Testing Agency. The investigation agency said that the accused had complete access to the botany and zoology question papers. The Ministry of Education has expressed serious concern over the growing number of out-of-school children in the country, especially in the 14 to 18-year age group. A high-level meeting chaired by School Education and Literacy Secretary Sanjay Kumar discussed the issue and reviewed the implementation strategy for a proposed new initiative by the National Institute of Open Schooling. During the meeting, Mr. Kumar said that according to available data, out of every 100 children entering class 1, only 62 reach class 12. He noted that more than 2 crore children in the 14 to 18 years age group are currently out of school. India Meteorological Department has forecast heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Assam, Meghalaya and South Interior Karnataka during the next 2 days. According to IMD, similar conditions will also prevail over Arunachal Pradesh, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal tomorrow. At the Asian Weightlifting Championships in Gandhinagar, India's Sanjana has won 3 bronze medals in the women's 77kg category. And that is the end of this news bulletin.
1: पर आप आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण सुन रहे हैं। 7:10 हुए हैं। लीजिए पेश है हमारा दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।
2: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान व बागवान भाई बहनों को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, कृषि जगत कार्यक्रम में मैं हूं हेमराज शर्मा।
3: और मैं कुलदीप।
2: कुलदीप जी, क्या हालचाल है आपके?
3: बहुत ही अच्छे हेमराज जी, और हम आशा करते हैं कि हमारे जो किसान और बागवान भाई बहन हैं वो भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आजकल देखिए, हमारे किसान और बागवान भाई बहन हेमराज जी काफ़ी ज़्यादा व्यस्त है, क्योंकि देखिए जो पुरानी फसलें हैं वो तैयार हो चुकी है, उनको समय रहते उन्हें इकट्ठा करना है, और साथ ही साथ जो आने वाली फसलें हैं उनकी तैयारी भी करनी है, तो उनकी व्यस्तता देखिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है
2: जी।
3: तो देखिए हेमराज जी, सबसे पहले अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले अपने सभी किसान और भगवान भाई बहनों को जानकारी देना चाहेंगे आज के मुख्य आकर्षणों की। तो हेमराज जी, आज आप हमारे किसान और बागवान भाई बहनों के लिए कौन से विशेष आकर्षण लेकर आए हैं?
2: कुलदीप जी, देखिए काम की बातों के अंतर्गत किसान भाइयों से आज बात की जाएगी अनाज का सुरक्षित भंडारण उन्होंने किस तरह से करना है, इस विषय के बारे में। और उसके बाद पहाड़ी लोकगीत के माध्यम से मनोरंजन करेंगे किसान श्रोताओं का। और जानकारी पूर्ण बातचीत के तहत आज किसान भाइयों को जिस विषय के बारे में जानकारी दी जाएगी वह है प्राकृतिक खेती में उर्वरक प्रबंधन। डॉक्टर मोहिंदर सिंह से जानकारी हासिल करेंगे राजेंद्र। तो इसका पुनः प्रसारण हमारे किसान भाई सुनेंगे और कार्यक्रम के अंत में बात करेंगे कल के मुख्य आकर्षणों के बारे में
3: जी। तो देखिए, जैसे हेमराज जी आप पहले ही हमारे किसान और बागवान भाई बहनों को बता चुके हैं कि आज हम अपने किसान और बागवान भाई बहनों के साथ बातचीत करने जा रहे हैं अनाज का सुरक्षित भंडारण के बारे में
2: जी।
3: देखिए, जैसे हम पहले भी बात की हमने कि हमारे किसान और बागवान भाई बहनों की बहुत सी फसलें हैं, अनाज वाली फसलें हैं जो तैयार हो चुकी है, और तैयार होने के बाद उन्हें उसका सुरक्षित भंडारण करना है। तो अगर हमारे किसान भाई अनाज वाली फसलें हैं उनका भंडारण करना चाहते हैं, तो कौन सी विशेष बातें हैं जिनका ध्यान उनको रखना है, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं।
2: बिल्कुल।
3: क्योंकि सबसे पहले अगर हम बात करें कि फसल की कटाई और गाही की अगर हम बात करें, तो फसल की कटाई जो है किसान भाइयों आपको सही अवस्था में ही करनी होती है। समय से पहले की गई कटाई से पैदावार जो है या जो फसल है उसकी गुणवत्ता व मात्रा दोनों काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। आमतौर पर जब फसल के दानों में लगभग 18 से 25% नमी रहती है

0: तब फसल आपको काट लेनी चाहिए। इसके विपरीत यदि फसल पक्की अवस्था से देरी से काटी जाए तो फसल जो है खेत में ही कई बार झड़ सकती है, जिससे आर्थिक हानि आपको उठानी पड़ सकती है। जैसे कि यदि गेहूं की अगर हम बात करें, कुछ एक किस्में ऐसी होती है अगर उनको देर से काटा जाए तो फसल खेत में ही झड़ जाती है, और इस तरह खेत में चूहे और कीटों या पक्षियों द्वारा भी आपकी जो अनाज वाली फसलें हैं उनको नुकसान पहुँचाया जा सकता है।
1: बिल्कुल जी। और कुलदीप जी देखिए, काटी गई फसल को पतली परतों में डालकर खेतों में सुखा लिया जाना चाहिए और छोटे छोटे बंडल बांधकर फसल की थ्रेशिंग द्वारा दानों को इकट्ठा किया जाना चाहिए। और जो पैदावार होती है किसान भाइयों की, उसकी साफ़ सफाई की बात करें तो देखिए, थ्रेशिंग करने पर पैदावार साफ़ नहीं होती। इसमें भूसी, तिनके, कंकड़, टूटे दाने, घासों के बीज इत्यादि मौजूद रहते हैं, इसलिए भंडारण से पहले पैदावार को साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। और पैदावार को छानकर भूसी, कंकड़, घासों के बीज, टूटे दाने, इन सबको जो है पैदावार से अलग कर लिया जाना चाहिए। और इसके अलावा छज्जों की सहायता से छनी पैदावार का हवा में प्रवाह किया जाना चाहिए ताकि पैदावार में जो धूल इत्यादि होती है वो निकल जाए। और इसके अलावा भंडारण से पहले यदि पैदावार को साफ ना किया जाए तो कंकड़, घास के बीज इत्यादि जो होते हैं वो भंडारण के समय अनाज में हवा के प्रवाह को रोकते हैं, जिससे उत्पादन की जो गुणवत्ता होती है वो प्रभावित होती है।
0: जी तो देखिए हेमराज जी, ये तो आपने बात की कि हमारे किसान भाइयों को कटाई के समय कौन सी बातें हैं जिनका विशेष ध्यान रखना है। देखिए कटाई के बाद या थ्रेशिंग के बाद भी कुछ एक बातें हैं जिनका विशेष ध्यान आपको रखना है कि साफ़ किए गए अनाज को सुखाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। सुखाने के लिए जो समय है वो मौसम पर निर्भर करता है। तो किसान भाइयों, आप जो नमी है, फसल की नमी को इस तरह भी देख सकते हैं। आपको क्या करना है कि दांतों के नीचे अगर जैसे दाना है टूट जाए, ये जो अवस्था होती है वो भंडारण के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस अवस्था में दानों में लगभग 9-10% के आसपास नमी रहती है। आपकी जो तैयार फसल है उसको आपको सीमेंट के फर्श पर या सख्त समतल दरारों रहित फर्श पर आपको रखना है। अगर ये उपलब्ध नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि मैदान पर तरपाल या प्लास्टिक शीट बिछाकर उसके ऊपर फसल को आप फैला सकते हैं। पैदावार को जब आप सूखने के लिए डालना है तो उसको क्या करना है कि समान तह आपको उसमें रखने हैं। सभी जो फसल के दाने हैं उनको पूरी धूप अच्छी तरह से मिलनी चाहिए और सारे के सारे जो दाने हैं, आपकी जो तैयार फसल है, वो अच्छी तरह सूखनी चाहिए।
1: बिल्कुल कुलदीप जी। और देखिए, हवा चलने की स्थिति में जो अनाज है उसको तरपाल से ढक देना चाहिए ताकि धूल मिट्टी से बचाव हो सके। और भंडारण गृह जो होता है, जहाँ पे हमारे किसान भाई अपने अनाज का भंडारण कर रहे हैं, उसका रखरखाव भी बहुत ज़रूरी होता है। गोदाम को अच्छी तरह से साफ किया जाना चाहिए तथा उसमें सफ़ेदी भी करनी चाहिए। और इसके अलावा गोदाम का फर्श हमेशा ज़मीनी सतह से ऊंचा होना चाहिए ताकि प्राकृतिक नमी जो है फर्श तक ना पहुँच पाए और चूहे जो है वो भंडारित सामग्री तक ना पहुँच जाएँ। और इसके अलावा भंडारण या जो गोदाम है उसकी जो दीवारें हैं वो ज़मीन से 1.5 मीटर तक कोलतार के साथ उनको रंग देना चाहिए। फर्श की सभी दरारों, दीवारों की दरारों और छत के छेदों को सीमेंट लगाकर बंद किया जाना चाहिए। और इसके अलावा भंडार के लिए उपयोग किए जाने वाली संरचना को पूरी तरह से साफ एवं संक्रमण निष्क्रिय किया जाना चाहिए। कूड़ा करकट साफ किया जाना चाहिए। भंडारण में पहले पड़े अन्न अवशेष पूरी तरह से साफ किए जाने चाहिए तथा इसे जला भी देना चाहिए।
0: जी देखिए साथी हेमराज जी, अगर हमारे किसान भाई पैदावार जो है उनकी, उसका भंडारण बोरियों में करना चाहते हैं तो कौन सी बातें हैं जिसका विशेष ध्यान उनको रखना है। यदि संभव हो तो नए बोरों या नए बैगों का ही किसान भाइयों आपको इस्तेमाल करना है। और यदि आपके पास नए बोरे या बैग उपलब्ध नहीं है तो आपको क्या करना है, इन्हें जीवाणुओं या कीटाणुओं से निष्क्रिय करने के लिए 15 मिनट के लिए उबले हुए पानी में डुबोकर 6 घंटे धूप में आपको सुखाना है। और उसके बाद क्या करना है कि मैलाथियन के घोल में लगभग 10 मिनट डुबो के रखना है और उसके बाद अच्छी तरह से उनको सुखाने के बाद ही उसमें आपको अपने अनाज का भंडारण करना है। साथ ही साथ 100 भाग पैदावार को लगभग 1-2 भाग नीम के बीज के पाउडर से उपचारित करके भी आप अच्छी तरह से सुरक्षित भंडारण अपने अनाज का कर सकते हैं। यदि अनाज बोरियों में भंडारण किया जाना हो तो बोरियों को लकड़ी के मंच पर 50 सेंटीमीटर जमीन से ऊपर आपको उनकी तह लगानी है। तह 7-8 बोरी से ऊंची नहीं आपको लगानी है। जो तह है वो आपके जो गोदाम की दीवारें हैं उनको नहीं छूना चाहिए। भंडारण के लिए सिडबिनों का भी इस्तेमाल आप किसान भाइयों कर सकते हैं।
1: बिल्कुल कुलदीप जी, इसके बाद आती है

0: कि हमारे किसान भाइयों की जो पैदावार है उसका भंडारण उन्होंने किस तरह से करना है। तो देखिए, भंडारण से पहले अनाज पूरी तरह से साफ होना चाहिए, और इसमें तिनके व घास के बीज पैदावार में हवा के प्रभाव को रोकते हैं, जिससे भंडारित अनाज के खराब होने की संभावना जो है वो लगातार बनी रहती है। पैदावार में अधिक नमी या भंडारण में अधिक नमी होने से कीट एवं फफूंद की जो समस्या है वो उत्पन्न होती है, जो कि भंडारित की गई पैदावार की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। और भंडारण से पहले अनाज को ठंडा किया जाना चाहिए। भंडारण में तापमान भी पैदावार को प्रभावित करता है। भंडारण के दौरान दानों में श्वसन क्रिया होती रहती हैं, जिसके कारण गर्मी उत्पन्न होती है। ठंडे तापमान पर फफूंदों की गतिविधियां कम होती है, इसलिए पैदावार को ठंडे तापमान में भंडारण करके हम इसे लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, और पैदावार का भंडारण खुले ढेर में नहीं करना चाहिए।
1: जी, ये तो आपने बात की कि अनाज जो उपयोग के लिए हमारे किसान भाई भंडारण करना चाहते हैं, साथ ही साथ देखिए हमें बीज भी रखना होता है, तो बीज का भंडारण हमारे किसान और बागवान भाई बहनों को किस तरह से करना है उसके बारे में भी थोड़ी सी बात हम करना चाहेंगे। फसल कटाई एवं इसकी फसल की अगली बिजाई के बीच लगभग 7 से 8 महीनों का देखिए अंतराल रहता है, इसलिए पिछली फसल के प्राप्त बीजों को अगली बिजाई के लिए 7 से 8 महीने सुरक्षित भंडारण आपको करना होता है। इसलिए अगली फसल के लिए बीज की गुणवत्ता पिछली फसल द्वारा उत्पादन किए गए बीज के सही भंडारण पर ही निर्भर करती है। बीज भंडारण के दौरान कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान आपको रखना है? सबसे पहले, भंडारण से पहले आपको अपने गोदाम की, जैसे हम पहले भी किसान भाइयों को बता चुके हैं, कि पूरी तरह से साफ सफाई करनी है, और साथ ही साथ जिस फसल का या जिस बीज का आप भंडारण करने जा रहे हैं उसकी भी आपको अच्छी तरह से साफ सफाई करनी है। साथ ही साथ भंडारण के समय सेल्फोस से आप उपचार अपने बीज का कर सकते हो। 1 गोली प्रति 100 किलोग्राम बीज प्रत्येक बोरी में डालना है, और साथ ही साथ आपको अपने बीज का निरीक्षण समय समय पर करते रहना है। और सीडबिन में अगर आप बीज का भंडारण करते हैं तो उनको आपको पूरी तरह से एयरटाइट कर देना है, उसमें हवा का संचार नहीं होना चाहिए। बीज जो थोड़ी मात्रा में भंडारण किए जाने हैं उन्हें थैलियों में भरकर भी आप रख सकते हो। बिजाई से पहले बीज अंकुरण जांचने के लिए 100 दाने बीज गीली रेत में आपको बोना है। यदि लगभग 85 बीज का अंकुरण हो जाए तो बीज बुआई के लिए उपयुक्त माना जाता है, और उन्हीं बीजों का आपको भंडारण करना है अगली फसल के लिए।
0: बिल्कुल कुलदीप जी, और देखिए, भंडारण के बाद भी कुछ बातें हमारे किसान भाइयों ने ध्यान रखनी है, जैसे कि समय समय पर भंडारित जो पैदावार है उसका निरीक्षण करना है, और पैदावार को समय समय पर धूप में सुखाकर पुनः भंडारण उसका करते रहना है, और भंडारण संरचना व भंडार के चारों ओर साफ सफाई का भी उन्हें विशेष ध्यान रखना है।
1: तो देखिए हेमराज जी, ये तो हुई अपने सभी किसान और बागवान भाई बहनों के साथ बातचीत कि जो आजकल उनकी जो तैयार फसलें हैं उनका भंडारण, या अनाज वाली जो तैयार फसलें हैं उनका भंडारण उन्हें किस तरह से करना है। तो देखिए हेमराज जी, अब इस जानकारी के बाद हमारे सभी किसान और बागवान भाई बहनों को इंतजार होगा एक प्यारे से लोकगीत का। तो हेमराज जी, आइए सुनते हैं अपने सभी किसान और बागवान भाई बहनों के साथ समूह स्वरों में ये प्यारा सा पहाड़ी लोकगीत।

0: किसान भाइयों, अभी आपने समूह स्वरों में सुना ये लोकगीत, तो लोकगीत के बाद अब समय आ गया है कि आपको एक जानकारीपूर्ण बातचीत सुनाई जाए। जानकारीपूर्ण बातचीत का विषय है प्राकृतिक खेती में उर्वरक प्रबंधन। डॉक्टर मोहिंदर सिंह भवानी से जानकारी हासिल कर रहे हैं राजेंद्र, तो आइए सुनते हैं इसका पुनः प्रसारण।
1: किसान भाइयों नमस्कार। आज हमारे स्टूडियोज में डॉक्टर मोहिंदर सिंह भवानी जी से आए हैं। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
2: जी धन्यवाद।
1: किसान भाइयों, आज का हमारा विषय है प्राकृतिक खेती में उर्वरक प्रबंधन। तो डॉक्टर साहब, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि प्राकृतिक खेती क्या है और इसके बारे में कुछ बताएं।
2: जैसे आप शायद मालूम होगा कि प्राकृतिक खेती जो है एक नया विषय है हिमाचल प्रदेश में जो शुरू हुआ है। इसमें जो मुख्य हमारा उद्देश्य है वो ये है कि हमें घर के ही उत्पादों से, घर की चीज़ों से ही हमें जो है कृषि करनी है, क्योंकि आप जानते हैं कि पुराने टाइम से हमारी रासायनिक कृषि चल रही है, तो इसके काफ़ी दुष्परिणाम जो है हमारे सामने आ रहे हैं और इसमें लागत भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उद्देश्य रहा है कि हम जो है किसानों की आय को बढ़ाने के लिए एक नेचुरल तरीके से और घर के संसाधनों से जो है हम प्राकृतिक कृषि करें। प्राकृतिक कृषि में बेसिकली ये है कि हम इसमें गाय आधारित जो है सारे उत्पाद बनाते हैं। गाय का जैसे गोबर है, गाय का गौमूत्र है, और जो हमारे वहाँ के आसपास की जो जंगली जड़ी बूटियां हैं उसके आधार पे ही जो है हम ये प्राकृतिक कृषि करते हैं। इसमें कोई भी बाहर का रसायन, बाहर का कोई खाद या दवाई, कोई भी चीज़ हम इसमें नहीं डालते हैं, ताकि किसानों को जो है इसमें किसी भी प्रकार का कोई बाजार के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो इसलिए जो है ये प्राकृतिक कृषि जो है ये हमारी शुरू हुई है।
1: प्रश्न हमारा ये उठता है कि प्राकृतिक खेती में उर्वरक प्रबंधन क्या है?
2: जी, इसमें जैसे अब आप जानते हैं कि खेती बाड़ी के लिए जो है हमारे को सबसे पहले कि जो हमारी ज़मीन में जो है उर्वरकता होनी चाहिए। उर्वरकता जो है जैसे आप जानते हैं कि हमारे जो बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो ज़मीन में होने चाहिए, इसमें मुख्य तौर से अगर मैं बताऊं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इसके मेन कंपोनेंट्स है।
1: जी
2: इसके बाद फिर नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटाश है, और साथ में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और इसके अलावा जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जैसे जिंक है, मोलिब्डिनम है, सेलेनियम है या मैगनीज है। इस तरह के जो है हमारे 17 पोषक तत्व होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हमारे मिट्टी में होनी चाहिए। तो सबसे इसमें जो मेन चीज़ है उर्वरकता में वो आता है हमारा ऑर्गेनिक कार्बन। ऑर्गेनिक कार्बन जैसे हम सब जानते हैं कि ये हमारे अवशेषों से ही निकलता है, जैसे हमारे फसलों के अवशेष है या दूसरे जो भी हमारे बाहर की जड़ी बूटियां हैं। तो इसके आधार पे क्या है कि हमारा जो है ऑर्गेनिक कार्बन ज़मीन में बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इस काम के लिए अदरवाइज़ क्या है कि जो अब जैसे हमारी जैविक कृषि भी है उसमें गोबर का इस्तेमाल होता है जो कि टनों के हिसाब से होता है, परंतु प्राकृतिक खेती में इससे थोड़ा भिन्न है। इसमें जो है जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसमें अपने घर में ही जो है सारी चीज़ें तैयार करते हैं। गाय के जो गोबर है और उसके जो गौमूत्र है उसके अवशेषों के बेस पे हम ये तैयार करते हैं। तो इसमें जो मुख्य तौर पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं वो है एक जैसे जीवामृत, एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जीवामृत जो है जैसे गाय का गोबर हम लेते हैं, इसमें गाय के गोबर के साथ गौमूत्र लेते हैं, गौमूत्र थोड़ा इसमें हम जो है गुड़ डालते हैं और दाल का आटा डालते हैं जैसे बेसन, और कुछ जंगल की मिट्टी डालते हैं जहाँ पे हमारा कोई पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ ना हुआ हो। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उर्वरक हम बोल सकते हैं नेचुरल फार्मिंग में। इसको हम जो है ज़मीन पर भी डालते हैं और पौधों में भी सीधे हम इसकी स्प्रे कर सकते हैं ताकि हमारा उर्वरक

0: जो है इसमें काफ़ी मात्रा में पौधों को मिल सके। इसके अलावा दूसरा हमारा जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट घटक जो है वो है घन जीवामृत। तो घन जीवामृत जो है हमारा इस गोबर से, ताज़े गोबर से बनता है। ताज़े गोबर के को जो है हम थोड़ा इकट्ठा करके साफ़ करके जो उसमें खरपतवार या घास वगैरह है इसको निकाल के इसको हम एक साफ़ जगह में बिछा देते हैं, और इसके बाद इसमें जैसे आपका गौमूत्र डाल देते हैं और गुड़ और बेसन इसको मिक्स करके फिर इसको हम अच्छे से मिला के फिर इसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद जो है इसको हम अपने 4-5 दिन के बाद जो है ये जैसे थोड़ा सा सूख जाता है पलटने के बाद इसको फिर हम इकट्ठे करके किसी बोरी वगैरह में अपने पास रख सकते हैं। तो ये जो हमारा घनजीवामृत बनता है इसको जो है हम कम से कम 6 महीने साल तक भी इवन रख सकते हैं तो ये ख़राब नहीं होता है। फसल की बुआई से पहले जो है हम इसमें फसलों में जो है घनजीवामृत डलवाते हैं, और इसके बाद जो है फिर जैसे फसल हमारी बढ़ती जाती है तो इस हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ऊपर से टॉप एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं। और साथ में जैसे फलदार पौधे हैं, फलदार पौधों में भी जैसे रासायनिक खादें पड़ती हैं उसी तरह से हम जो है इसको खादे को ना डाल के जो है हम इसमें घनजीवामृत डालते हैं। तौलियों में सेबों के लिए है या दूसरे हमारे आड़ू है, बादाम है, कोई भी फल फ्रूट है तो इसमें जो है हम ये डालते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला घटक आता है वो है हमारा मल्चिंग, जिसको हम आच्छादन भी बोलते हैं। तो आच्छादन में क्या होता है कि हम जो हमारी धरती की जो सतह होती है, जैसे सपोज करो पौधे हैं, हमारे पौधों का जो तौलिया होता है, तौलिए के ऊपर जो है हम एक लेयर बना देते हैं जिसको कि जो घास फूस या जो आसपास के हमारे जो वेस्ट बचता है या जैसे गाय के नीचे की घास होती है उसको जो हम पौधों के तौलिए में बिछा देते हैं, या फिर फसलों के जो सब्जियां हैं सब्जियों के नीचे जो है पौधों में लगा देते हैं ताकि जो है इसमें डायरेक्ट धूप हमारी ना जाए। तो इससे जो है हमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है। एक्चुअली जैसे हमारे केंचुए हैं, देसी केंचुए होते हैं, तो ये छाया में जो है रहना पसंद करते हैं, सूरज की रोशनी से ये दूर भागते हैं। जब हमारे पास अच्छा आच्छादन होता है तो इससे जो है हमारे पौधों की नमी बनी रहती है, ज़मीन की नमी बनी रहती है, साथ में जो केंचुओं के लिए जो है बहुत अच्छा वातावरण होता है। तो इसमें जो केंचुए हैं हमारे बहुत अच्छा रोल करते हैं। ये जो केंचुए होते हैं ज़मीन में नीचे 10-15 मीटर तक जो है ऊपर नीचे चलते रहते हैं, एक टनल बनाते हैं एक प्राकृतिक, जिससे क्या है कि हमारी हवा और जो पानी का जो मिश्रण जो है वो प्रॉपर बनता है जो पौधों को बहुत अच्छी तरह से मिलता है। इसके बाद जो है दूसरा जो हमारा घटक है वो है वापसा। वापसा एक्चुअली ऐसा होता है कि जैसे हम इंसान है, इंसानों की तरह पेड़ पौधे भी हमारे सांस लेते हैं, तो जो वापसा जो है एक ऐसी कंडीशन होती है कि इसमें नमी और हवा का जो है एक बहुत अच्छा मिश्रण बनता है, जिसमें हमें हम बोलते हैं कि 50-50% में हमें जो है अच्छी ग्रोथ के लिए पौधों के लिए नमी भी चाहिए और इसमें जो है आपका हवा का संचार भी होना चाहिए। तो इससे जो है जो वापसा है हम इस तरह का वहाँ कंडीशन तैयार करते हैं कि जो है उसमें आपकी अच्छी एरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो है हमारा पौधों की जो है या फसल की जो है ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। साथ में जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कि हम इसमें उर्वरक प्रबंधन के लिए जो है हम इसमें मल्टी क्रॉपिंग करते हैं, मतलब बहुत सारी फसलें बहु फसलें हम इसमें लगाते हैं। और साथ में जो हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग फसलें होती हैं जैसे दलहनी फसलें हैं या लेगुमिनस क्रॉप जिनको हम बोलते हैं, मटर है हमारा और ये बीन्स है, राजमाश है या माश है या उड़द है, मूंग है, तो ये जो फसलें होती हैं ये हमारे जो वातावरण से जो हमारी नाइट्रोजन होती है इसको इकट्ठा करके पौधों की जड़ों में जो है फिक्स कर देती हैं। तो इससे क्या होता है कि जो जितनी इनकी रिक्वायरमेंट होती है वो ले लेते हैं, बाकी जो बचता है वो इनकी जड़ों में नेडुल के तौर पे जो है ये जमा हो जाती है। तो इस कारण जो है ये जो है दूसरे पौधों को जो है मिल जाती हैं। कुछ तो हमारी आच्छादन से आपकी नाइट्रोजन मिल जाएगी और दूसरी जो है कुछ है ये बैक्टीरिया कर देते हैं, कुछ फंगस या जो भी हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, और तीसरा जो है हमारा जो हम ऊपर से ये घनजीवामृत या जीवामृत डालते हैं। तो इस तरह से हमारी जो नेचुरल फार्मिंग जो है उर्वरक का बहुत अच्छा प्रबंधन हो जाता है, इससे हमारी फसलों की बहुत बढ़वार होती है।
1: जी डॉक्टर साहब, प्राकृतिक खेती की आवश्यकता क्यों पड़ी?
0: हाँ जी हाँ, देखिए जैसे आप जानते हैं कि रसायनों के जो है बहुत सारे दुष्प्रभाव है, इससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो रही है, हमारा वातावरण एक ख़राब हो रहा है, खास करके बच्चों वगैरह के लिए हम देखें या कोई भी पेस्टिसाइड या फंजीसाइड डालता है तो उसके दुष्प्रभाव जो है हमें दिन प्रतिदिन देखने को आ रहे हैं। खास करके हिमाचल प्रदेश में देखा गया है कि हम जो हमारी देश की जो औसत है अभी तक 2.2% जो है हम हिमाचल में करते हैं, जबकि देश में जो है 6% जो है कैंसर की अभी तक जो संभावना है। तो हिमाचल में हम जो है बहुत ज़्यादा इसमें पेस्टिसाइड होने की वजह से कैंसर के लिए भी ज़्यादा जो हमें चांसेस ज्यादा है, तो इस करके हमें जो है ये कम करना है। दूसरा से कि आप जानते हैं कि सेबों में जो है साइंटिफिकली ही कम से कम 8-10 हम स्प्रे जो है रिकमेंड करते हैं। अब डे बाय डे जो है हमारे जो पेस्टिसाइड का कंज्यूमशन है वो बढ़ता जा रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 1965-66 से जो जब हरित क्रांति हुई थी देश में तो उस टाइम जो है खाद का काफ़ी इस्तेमाल हुआ था, तो उस टाइम जो औसत थी वो 23 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जो

0: कि अब जो है बढ़ करके 54 kg हो गई है, जो कि एक बहुत चिंता का विषय है। तो इस वजह से हमारी जो भूमि की जो उर्वरकता क्षमता है वो बढ़ने के बजाय जो है घटती जा रही है। उसकी जो हमारी गुण है मिट्टी के वो भी ख़राब हो रहे हैं, मतलब उस मिट्टी बहुत सख्त हो जा रही है। ऑर्गेनिक कार्बन जो है हमारा बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। तो इस करके जो है हमें जो है इसकी ओर शिफ्ट करना पड़ेगा, ताकि हम लंबे समय के लिए, जिसको हम बोल सकते हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हम कर सकें, ताकि हमारा पर्यावरण भी बचा रहे और हम जो है अपना जो खर्चा भी कम कर सकें। तो ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं इसकी वजह से जो है हमें इसकी ओर जाना बहुत ज़रूरी है। जो प्राकृतिक खेती के थ्रू जो हमारा उत्पाद तैयार होता है, उसका एक तो टेस्ट बहुत अच्छा होता है, दूसरा उसकी शेल्फ लाइफ बहुत बढ़िया होती है, जो काफ़ी 10-15-20 दिन तक जो है इवन ख़राब नहीं होता, और तीसरा है कि लोग जो है इसको, खास करके जो मंडी में अगर हम बात करें, तो आढ़ती भी इसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसकी जैसे शेल्फ लाइफ ज़्यादा होने की वजह से जो है ये इसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और उचित ज़्यादा रेट देते हैं, बल्कि 100-200 रुपया जो है पर क्विंटल तक।
1: जी डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियोज में आए और आपने प्राकृतिक खेती में उर्वरक प्रबंधन के विषय पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान और बागवान भाइयों से साझा की। इस जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: किसान भाइयों, ये तो सुनिए आपने जानकारी पूर्ण बातचीत, जिसका विषय था प्राकृतिक खेती में उर्वरक प्रबंधन, और हमें इस विषय में अधिक जानकारी दे रहे थे डॉक्टर मोहिंदर सिंह भवानी, और इनसे जानकारी हासिल कर रहे थे राजेंद्र। तो इस जानकारी के बाद अपने सभी किसान और बागवान भाई बहनों के साथ हम थोड़े से जो समसामयिक कार्य हैं जो हमारे किसान और बागवान भाई बहनों को आजकल करने हैं, उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा हम करना चाहेंगे। अगर हम बात करें सबसे पहले निचले पर्वतीय क्षेत्रों की, तो देखिए निचले पर्वतीय क्षेत्रों में हमारे किसान भाइयों को खीरा, करेला और कद्दू में यूरिया की खाद की जो तीसरी मात्रा है वो डालनी है। बात करें खीरा में, तो खीरा में खाद की मात्रा रहेगी 5 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से। बात करें करेला में, तो करेला में खाद की मात्रा रहेगी 6 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से, और कद्दू में जो यूरिया खाद की मात्रा है वो लगभग 8 किलोग्राम के हिसाब से डाल सकते हैं। साथ ही साथ देखिए निचले पर्वतीय क्षेत्रों में कड़वी मिर्च की पनीरी भी हमारे किसान भाई आजकल डाल सकते हैं, उपयुक्त समय चल रहा है। और बात करें एशियन प्रजाति मूली और शलगम की, तो बीज वाली फसल की तुड़ाई व गहाई आजकल हमारे किसान भाई निचले पर्वतीय क्षेत्रों में कर सकते हैं।
3: बिल्कुल कुलदीप जी, और इसके साथ हमारे किसान भाई अगर मध्यवर्ती क्षेत्रों की बात करें, तो हमारे किसान भाई भिंडी की बिजाई 60 बाई 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आजकल करें। इसके अलावा हमारे किसान भाई टमाटर, शिमला मिर्च, कड़वी मिर्च तथा बैंगन में यूरिया खाद जो है आजकल डालें, और फ्रासबीन, खीरा, करेला और कद्दू की खेतों में बिजाई करें। और इसके अलावा कुलदीप जी देखिए, अदरक की बिजाई 3 बाई 1 मीटर आकार की तथा 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंची क्यारियों में 30 बाई 20 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। बिजाई वाली गठियों का उपचार डाइथेन M45, मास M45 250 ग्राम तथा बेविस्टिन मेविस्टिन 100 ग्राम को 100 लीटर पानी में घोलकर 1 घंटे तक उपचारित करने के बाद गठियों को छाया में सुखाएं, फिर बिजाई कर दें। और टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च तथा कड़वी मिर्च की तैयार पौध अगर लगाने के लिए रह गई है तो आजकल अपने खेतों में लगा सकते हैं।
2: जी, और साथ ही साथ देखिए नए पौधों को कटुआ कीड़ों से बचाने के लिए खेतों में किसान भाइयों को क्या करना है, आपको कि फॉलिडॉल या मेलाथियन धूल जो है लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से आप खेतों में रोपाई से पहले डालनी है, या फिर पौधों के आसपास गोलाई में आप इसको डाल सकते हो। गोभी की बीज वाली फसल में तना सड़न रोग तथा तेले की रोकथाम के लिए आपको क्या करना है कि फॉलिडॉल या मेलाथियन धूल का छिड़काव उसमें करना है। ये तो हेमराजी बात हुई मध्यवर्ती क्षेत्रों की। साथ ही साथ देखिए हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में आजकल कौन से काम हमारे किसान भाइयों को करने हैं। देखिए ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में खीरे की बिजाई हमारे किसान भाई आजकल कर सकते हैं, उपयुक्त समय चल रहा है। फ्रासबीन की बोनी तथा गोल वाले किस्मों की बिजाई भी किसान भाइयों आजकल आप कर सकते हो। मटर की बोनी किस्मों की बिजाई लगभग 30 बाई 8 सेंटीमीटर की दूरी पर किसान भाइयों ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में आपको करनी है, और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में ही मूली, गाजर तथा शलगम की बिजाई भी आजकल आप कर सकते हो, यानी उपयुक्त समय चल रहा है। आप अगर सही समय पे आप अपनी फसलों की बुआई करते हैं तो आपको उत्पादन भी अच्छा मिलता है और लाभ भी किसान भाइयों आपको अच्छा होता है। तो देखिए हेमराज जी, ये तो हुई बातचीत कौन से समसामयिक कार्य हमारे किसान भाइयों को आजकल करने हैं। तो देखिए हेमराज जी, अब इस जानकारी के बाद हमारे सभी किसान और बागवान भाई बहनों को इंतजार होगा एक और प्यारे से लोकगीत का। तो आइए सुनते हैं कृष्णलाल सहगल की आवाज़ में।

0: किसान भाइयों, अभी आपने सुना ये लोकगीत।
1: तो चलते चलते अपने सभी किसान और बागवान भाई बहनों को जानकारी देना चाहेंगे कल के मुख्य मुख्य आकर्षणों की।
0: बिल्कुल कुलदीप जी, कल काम की बातों के अंतर्गत बात करेंगे दुधारू पशुओं के लिए संतुलित आहार और उनका स्वास्थ्य प्रबंधन, इस विषय के बारे में। पहाड़ी लोकगीत के माध्यम से मनोरंजन करेंगे किसान श्रोताओं का और एक जानकारीपूर्ण बातचीत भी किसान भाइयों को सुनाई जाएगी।
1: तो देखिए हेमराज जी, अब तो घड़ी की सुइयां भी हमें इशारा कर रही है कार्यक्रम को यहीं

0: संपन्न करने का, तो अपने सभी किसान और बागवान भाई बहनों से अनुमति चाहेंगे।
1: नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार।
2: किसानों और बागवानों के लिए यह था कृषि जगत कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला का प्रसारण 103.7 MHz पर। अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
3: थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार प्रसार भारती की रेडियो DTH सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुने जा सकते हैं।
4: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
5: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
6: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
7: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में 51 शहरी निकायों के लिए कल होगा मतदान। सुबह 7 बजे से 3 बजे तक डाले जाएंगे वोट। प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने सभी मतदाताओं से की वोट डालने की अपील। मतदान को बताया जिम्मेदारी व गौरव का प्रतीक। पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर भी गतिविधियां तेज। कांगड़ा जिला में सबसे अधिक 17,643 प्रत्याशी मैदान में। शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने सहब सोसाइटी के सफाई कर्मचारियों से की हड़ताल समाप्त करने की अपील। और धर्मशाला में कल RCB व पंजाब किंग्स के बीच खेला जाएगा IPL का अहम मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने कल प्रदेश में होने वाले शहरी निकाय चुनावों के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और पोलिंग पार्टियों को गंतव्य स्थानों पर भेज दिया गया है। शहरी निकायों को लेकर प्रदेश में 439 पदों के लिए 1,147 उम्मीदवार मैदान में है। नगर निगम के चुनाव पार्टी चुनाव चिन्ह पर करवाए जा रहे हैं और मुख्य मुकाबला कांग्रेस व भाजपा के बीच माना जा रहा है। नगर पंचायतों और नगर परिषदों के चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं करवाए जा रहे। शहरी निकाय चुनाव में लगभग 3,80,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन नगर निगमों सहित प्रदेश के 51 शहरी निकायों के लिए कल सुबह 7 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यदि मतदान के दिन मतदाता के पास किसी कारणवश मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो उसके स्थान पर किसान पासबुक, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड जैसे 17 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाया जा सकता है। नगर परिषद और नगर पंचायतों के लिए डाले गए वोटों की गिनती कल मतदान खत्म होने के तुरंत बाद शुरू होगी और शाम तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा नगर निगमों के लिए डाले गए वोटों की गिनती 31 मई को होगी। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेश के सभी मतदाताओं से शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव शहरों व कस्बों को बेहतर नागरिक सुविधाएं और योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। राज्यपाल ने कहा कि मतदान केवल संवैधानिक अधिकार ही नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का महत्वपूर्ण कर्तव्य भी है। उन्होंने पहली बार मतदान करने वाले युवाओं से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। कविंद्र गुप्ता ने कहा कि पहली बार मतदान करना राष्ट्र निर्माण के प्रति जिम्मेदारी और गौरव का प्रतीक है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शहरी निकायों में पार्टी की जीत का दावा किया है। उन्होंने आज शिमला में कहा कि चारों नगर निगमों में कांग्रेस पार्टी ने ईमानदार व कर्मठ प्रत्याशी उतारे हैं और सभी शहरी निकायों का संतुलित विकास करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
1: चाहे वो मंडी है, चाहे वो धर्मशाला है, चाहे वो पालमपुर है, चाहे वो सोलन है, हर जगह में जो ऑब्जर्वर्स लगाए गए थे, जिनको जिम्मेवारियां पार्टी की ओर से दी गई थी, हमने पूरी मजबूती से पार्टी को जिताने का हर संभव प्रयास किया है। हम शहरी विकास के लिए

0: ये प्रतिबद्ध है। हमने एक पूरा रोड मैप जो है वो जनता के बीच में रखा है कि किस तरीके से हम शहरी विकास के लिए कार्य करेंगे, उसमें चाहे पार्किंग्स का डेवलपमेंट होना है, हाइड्रोलिक पार्किंग्स का डेवलपमेंट होना है, सिवरेज सिस्टम का डेवलपमेंट होना है। और हमने हमेशा केंद्र से भी हिमाचल के, चाहे वो मेरे PWD से संबंधित मसले हैं, वैसे ही शहरी विकास में भी, उसमें भी हमने बजट लाने का प्रयास किया।
1: दूसरी ओर प्रदेश भाजपा ने भी नगर निगम चुनाव में अपनी जीत का दावा किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज नाहन में कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने शहरी निकायों में विकास कार्यों की अनदेखी की है और लोगों को झूठी गारंटियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि चारों नगर निगमों में भाजपा की जीत से विकास का नया दौर शुरू होगा और जनता को कांग्रेस सरकार की विफलताओं से मुक्ति मिलेगी। बिंदल ने कहा कि भाजपा की जीत के बाद नगर निगमों में पेयजल, पार्किंग, सड़क और अन्य आधारभूत सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में मतदान को लेकर प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं। जिले में धर्मशाला और पालमपुर नगर निगमों के अलावा अनेक नगर परिषदों व नगर पंचायतों में मतदान हो रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज बैरवा ने बताया कि मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की पार्किंग या अन्य गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने जिला के सभी मतदाताओं से वोट डालने की अपील की है।
2: जो पोलिंग डे का टाइम है, सुबह 7 बजे से लेके शाम को 3 बजे तक पोलिंग का टाइम है। उसके बाद जो EVMs हैं वो EVMs को सील किया जाएगा और जो नगर निकाय में जो नगर निगम हैं उनको छोड़कर बाकी की काउंटिंग वहां पर जो तय काउंटिंग स्थल है वहां पर काउंटिंग की जाएगी। सारे जगह पोलिंग पार्टीज हमारी मूव कर चुकी हैं। सभी से समान रूप से अनुरोध है कि सब आएँ और अपने मत का प्रयोग करें।
1: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शिमला से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। उनका कल नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम जाने का कार्यक्रम है, जहां वे 18 मई को केरलम के नए मुख्यमंत्री VD सतीशन के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू का 19 मई को शिमला लौटने का कार्यक्रम है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। नगर निगम सोलन में मतदान के लिए 38 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 14 मतदान केंद्रों का जिम्मा महिला कर्मचारियों को सौंपा गया है। शहर में 7 मतदान केंद्र संवेदनशील घोषित किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी मनमोहन शर्मा ने बताया कि पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दी गई हैं। उन्होंने शहर के सभी लोगों से मतदान करने की अपील की है।
3: नगर निगम सोलन का चुनाव है, उसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। इसमें हमारे जो शहर में इस वक्त 38 पोलिंग बूथ्स बनेंगे, इस बार हमने 14 पोलिंग बूथ्स जो पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित किए जाएंगे। ये प्रयत्न किया है कि महिलाओं को इस चुनाव में उनकी ड्यूटी लगाई जाए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए एडेक्वेट पुलिस पर्सनल डिप्लॉय किए गए हैं। और मैं सभी सोलन निवासियों से निवेदन करूंगा कि वो इस अवसर पर अपने मतदान का प्रयोग करें और भारी संख्या में लोग जो है अपने घरों से बाहर निकलकर मतदान अवश्य करें।
1: शहरी निकाय चुनावों के अलावा प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर भी गतिविधियां जारी हैं। राज्य में इस बार 26, 28 और 31 मई को 3 चरणों में पंचायती राज चुनाव करवाए जा रहे हैं। कांगड़ा जिला में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए सबसे अधिक 17,643 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। उधर सिरमौर जिला में 28 पंचायतें निर्विरोध चुनी गई हैं और सरकार द्वारा इन्हें 25-25 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका वर्मा ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए जिले में कुल 3,909 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं।
4: जिला परिषद में टोटल 53 कैंडिडेट्स हैं जो कंटेस्ट करेंगे। पंचायत समिति टोटल 36 प्रधानों के उसमें जाते हैं और 8 ब्लॉकों के जो टोटल कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं वो 8-6 हैं। जिला सिरमौर में इस बार 28 पंचायतें ऐसी हैं जिन्होंने निर्विरोध ग्राम पंचायत की सूची में ये जो शामिल हुई हैं।
1: शिमला शहर में सहब सोसाइटी से जुड़े सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिससे सफाई व्यवस्था पर असर पड़ा है। शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने सफाई कर्मचारियों से हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने की अपील की है। उन्होंने आज शिमला में कहा कि चुनाव आचार संहिता के बाद 10% वेतन वृद्धि का फैसला लिया जाएगा और वे सफाई कर्मचारियों की सभी जायज समस्याओं को मुख्यमंत्री व शहरी विकास मंत्री से उठाएंगे।
5: किसी के बहकावे में आकर के आप ये इन चीजों को मत करिए, क्योंकि नुकसान किसका हो रहा है? गार्बेज जो कलेक्टर है उसका होता है। सफाई व्यवस्था का होना यहाँ बहुत जरूरी है। आप जल्द से जल्द इस हड़ताल को वापस करके इस तरह से वो करना शिमला का नाम खराब

0: आप करना कोई अच्छी बात नहीं है। नगर निगम के इतिहास में 30 लाख तक का इंश्योरेंस मैंने करवाया, जो शायद इन्होंने कभी मांग नहीं रखी थी मेरे पास। 7 डेज की छुट्टी हमने एक्स्ट्रा बढ़ा दी। ईजीएम में जो कह रहे हैं कि 10% हमारी वृद्धि का जो फैसला ईजीएम में होता है, हमारा भी कोड ऑफ कंडक्ट है, जल्द से जल्द में एक ही सिंगल उसको लेकर के जा सकता हूँ, मैं ईजीएम करवाऊंगा।
1: आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मॉनसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये दिवस मच्छरों के प्रजनन को रोकने के उद्देश्य से सरल नियंत्रण रणनीतियों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने इस मौके पर नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ व सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार बेहतर निगरानी, व्यापक परीक्षण, बेहतर उपचार सुविधाओं और व्यापक जागरूकता अभियानों के माध्यम से डेंगू नियंत्रण प्रयासों को मजबूत करना जारी रखे हुए हैं। इस वर्ष का विषय है डेंगू नियंत्रण के लिए सामुदायिक भागीदारी, जांच करें, साफ करें और ढकें। जेपी नड्डा ने डेंगू के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर बल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में कल आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल का एक अहम मुकाबला खेला जाएगा। दोनों ही टीमों ने आज जमकर अभ्यास किया। इस मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह है। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। अंक तालिका में आरसीबी 16 अंकों के साथ शीर्ष पर बनी हुई है, वहीं पंजाब किंग्स 13 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है और प्ले ऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए उसे ये मैच जीतना जरूरी है। धर्मशाला में कल होने वाले नगर निगम चुनावों को देखते हुए प्रशासन ने मैच देखने आने वाले क्रिकेट प्रेमियों के वाहनों के लिए अलग से वैकल्पिक पार्किंग व्यवस्था की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 51 शहरी निकायों के लिए कल होगा मतदान। सुबह 7 बजे से 3 बजे तक डाले जाएंगे वोट। प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने सभी मतदाताओं से की वोट डालने की अपील। मतदान को बताया जिम्मेदारी व गौरव का प्रतीक। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर भी गतिविधियां तेज। कांगड़ा जिला में सबसे अधिक 17,643 प्रत्याशी मैदान में। शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने सहब सोसाइटी के सफाई कर्मचारियों से की हड़ताल समाप्त करने की अपील। और धर्मशाला में कल आरसीबी व पंजाब किंग्स के बीच खेला जाएगा आईपीएल का अहम मुकाबला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी के हमीरपुर धर्मशाला केंद्रों और FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। आइए सुनते हैं देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे देशगान, आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: शिमला की वादियों से आपके दिलों तक आ गया है आपका अपना भरोसेमंद साथी 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी FM शिमला। खबरें, संगीत, संस्कृति और मनोरंजन का बेमिसाल

0: पर्यटन की बात हो या संस्कृति की, हर मुसाफिर की जो आवाज बनता है, जुड़िए उस आवाज से जो हिमालय की गूंज जैसी है। आकाशवाणी FM शिमला, शुभवाणी लाभवाणी, ये है जन जन की वाणी, आकाशवाणी।
1: एक 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला का प्रसारण।

चांद की चादर, तारों की तान और कोमल हवा की थपकी के साथ शुरू हो रही है शब्दों से संवरी ये रात्रि सभा, जहां आकार लेती अंधेरे की खामोशी गुनगुना रही है। जी हाँ दोस्तों, रात के रेशमी आंगन में यादों के दीप जलाकर हम लेकर आए हैं बातों की बारिश और गीतों की सौंधी सौंधी खुशबू। आकाशवाणी FM केंद्र शिमला पर रात्रि सभा का स्वागत करते हुए हाजिर हूं मैं वीरेंद्र शर्मा। सभी को सस्नेह भरा नमस्कार। दोस्तों, गर्मी का मौसम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दिन भर भगवान भास्कर खूब गर्मी बिखेर रहे हैं। शाम आते आते कुछ राहत तो जरूर मिल जाती है। प्रकृति के इस चक्र में धूप के बाद छांव तो आती ही है, जो हमें हमारे जीवन को भी एक खूबसूरत सीख देती है कि रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, परिश्रम करते रहें, सफलता का सुकून निश्चित ही नसीब होता है। परेशानियों के बाद मिलने वाले सुकून के पल दिल को फिर मुस्कुराना सिखा देते हैं। धूप, छांव, तकलीफें, मुस्कुराहट, सभी तरह के एहसास संगीत की सरिता के तट पर आकाशवाणी FM शिमला के साथ बांटने के लिए आप भी तैयार हो जाएं। बहरहाल शुरू हो चुका है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आगाज कर लेते हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का। जिंदगी भी कितनी दिलचस्प है दोस्तों। कभी ये हमें जिम्मेदारियों की राहों पर ले जाती है, तो कभी किसी चेहरे की मासूम अदा दिल को फिर से जवान बना देती है। जब मोहब्बत की शरारतें

दिल की धड़कनों से सुर मिलाने लगें, तब फर्ज फिल्म का ये चुलबुला नगमा याद आ जाता है। आप भी सुनें।

जिंदगी की भीड़ में जब कोई एक चेहरा सुकून बन जाए तो समझ लीजिए दिल फलसफा प्यार का समझने लगा है।

मोहब्बत जब शब्दों से ज्यादा खामोशियों में महसूस होने लगे तो फिजाओं में अपने आप गूंज उठता है, ये समा समा है ये प्यार का।

0: आकाशवाणी एफएम शिमला से आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे एक अंतराल के बाद।
1: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
2: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: फिर से स्वागत करते हैं सभी सुनने वाले श्रोता साथियों का। आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ आप बने हुए हैं, सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत। मोहब्बत भी अजीब सफर है दोस्तों, कभी मुस्कुराहटों की वजह बनती है तो कभी खामोशियों की जुबान। और यही एहसास खूबसूरत अंदाज में कहते

दोस्तों, मोहब्बत कभी दस्तक देकर नहीं आती, वो तो चुपके से दिल की दुनिया में उतरती है। जैसे चांदनी रात में कोई पुरानी याद मुस्कुरा उठी हो।

कभी हंसी कभी तन्हाई, कभी अपने तो कभी पराए, बस इन्हीं रंगों का नाम है जिंदगी का सफ़र। जब इंसान रास्तों से दोस्ती कर ले तो फिर हर सफ़र एक नई कहानी बन जाता है। जिंदगी में ठहराव से ज़्यादा खूबसूरत चलते रहना होता है। आइए सुने ये नगमा।

0: भूले बिसरे गीत अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी एफएम शिमला से।
1: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में, सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
2: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान, राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। फिल्म संगीत आइए सुने। फिल्म का नाम ब्रह्मचारी, मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर की आवाजें, हसरत जयपुरी की शब्द रचना।

आकाशवाणी एफएम शिमला से फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं। अगला नगमा आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम चौदहवीं का चांद, टाइटल सॉन्ग है ये, मोहम्मद रफी की आवाज, रवि की तर्ज़।

कार्यक्रम का आखिरी नगमा आपको सुनवा रहे हैं फिल्म राजा और रंक फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज़ है, आनंद बख्शी की शब्द रचना।

0: इसी दिलकश तराने के साथ फिल्म संगीत में फिलहाल के लिए इतना ही। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण। 8:45 होने को है, समाचार संध्या और उसके बाद 9 बजे न्यूज एट 9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
2: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा।

0: प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्रपत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्रपत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
1: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: And also infrastructure development that has happened.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
2: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और

0: आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
2: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितम्बर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और उपयोग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य

चार एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारी को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला का प्रसारण 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।
2: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है, वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
3: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी FM शिमला का प्रसारण आप सुन रहे हैं और ये वक्त है एक फिल्म से कार्यक्रम का। दोस्तों, आज आपको हम सुनवा रहे हैं 1957 की क्लासिकल फिल्म नया दौर के कुछ बेहतरीन फिल्म गाने। शुरुआत गीत के साथ कर लेते हैं, उसके बाद फिल्म का विवरण भी जानेंगे और स्टार कास्ट को क्या है इस फिल्म की वो भी बताएंगे आपको।

0: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
1: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
0: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
1: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: एक फिल्म से कार्यक्रम आप आकाशवाणी FM शिमला से सुन रहे हैं और आज कार्यक्रम में शामिल फिल्म है नया दौर। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएं इस फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आए दिलीप कुमार, वैजयंती माला, अजीत और साथ में जॉनी वॉकर। जैसा हमने जिक्र किया, नया दौर 1957 की एक बेहद लोकप्रिय हिंदी फिल्म थी जिसे भारतीय सिनेमा की महान क्लासिक्स में गिना जाता है। इस फिल्म में गाँव, इंसानियत, मेहनत और मशीनों के बीच संघर्ष को बेहद प्रभावशाली ढंग से दिखाया गया है।

0: फिल्म की कहानी एक गांव के तांगे वालों के संघर्ष पर आधारित है। जब गांव में बस सेवा शुरू होती है तो तांगे वालों की रोजी रोटी पर संकट आ जाता है। दिलीप कुमार का किरदार मेहनत, दोस्ती और इंसानियत के दम पर मशीनों से मुकाबला करता है। फिल्म का संदेश था, तकनीक जरूरी है लेकिन इंसानियत और रोजगार की कीमत पर तो नहीं। अगला गाना आइए सुनते हैं इस फिल्म का, लेकिन उससे पहले एक अंतराल ले लेते हैं।
1: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
2: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
3: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
4: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: मतदान का संकल्प ले, एक वोट साफ शहर बेहतर सड़क पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: एक फिल्म से कार्यक्रम में आज आपने नया दौर फिल्म के गीत सुने। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें एफएम शिमला के साथ।
1: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में, सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
2: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी एफएम केंद्र शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिल की आवाज भी सुन कार्यक्रम आप सुनेंगे एक अंतराल के बाद।
1: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
2: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
1: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
2: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: आप आकाशवाणी एफएम केंद्र शिमला सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। दिल की आवाज भी सुन कार्यक्रम का आगाज इस गीत के साथ कर रहे हैं। फिल्म का नाम है लेकिन। लता मंगेशकर की आवाज है, गुलजार की शब्द रचना, संगीत है हृदयनाथ मंगेशकर का।

0: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
1: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
0: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
1: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है, वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
1: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला से कार्यक्रम दिल की आवाज भी सुन। यह अगला गाना फिल्म का नाम क्रांति। लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजें, संतोष आनंद की शब्द रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज़।

0: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
1: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
2: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
3: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
2: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
3: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
2: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: दिल की आवाज़ भी सुन कार्यक्रम आप आकाशवाणी FM शिमला से सुन रहे हैं।

0: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है, वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में, सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
1: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
1: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
0: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
1: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: दिल की आवाज भी सुन कार्यक्रम आप आकाशवाणी एफएम शिमला से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब सुन लेते हैं तेजाब फिल्म का गीत। 1980 की ये फिल्म है, गीत गाया है अमित कुमार और साथियों ने, जावेद अख्तर की शब्द रचना है और संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
1: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
0: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
1: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: फिल्मी गीतों पर केंद्रित दिल की आवाज भी सुन कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
3: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
4: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
1: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक।

0: अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
1: राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला।
3: सुरीला सफर संगीत का, साथ हो मनमीत का, घर आंगन में महके जो, क्या कहना उस प्रीत का।

सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला। मस्त चुनो, मस्त सुनो। जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है, वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में, सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
1: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
1: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
0: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
1: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी FM केंद्र शिमला, आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज पर गजलें आप सुन रहे हैं। जिंदगी का शहर भी अजीब है दोस्तों, कहीं ख्वाबों की रोशन शहर है तो कहीं यादों की वीरान गुजरगाह। कभी दिल तसव्वुर के उजालों में मुस्कुराता है तो कभी तन्हाई की शब में खुद से बातें कर रहा जाता है। ऐसे ही किसी नरम एहसास की तरह जगजीत सिंह की गजल कहती है, शायद मैं जिंदगी की सहर लेके आ गया।

0: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
1: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
2: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
3: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
1: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
0: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
1: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी FM शिमला।

0: का, आपके शहर का आने वाला कल, सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
1: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी एफएम शिमला से आप गजलें सुन रहे हैं, आइए सुनते हैं तलत अजीज को।

0: तुझे छूके। अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
1: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
0: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
1: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी FM केंद्र शिमला का प्रसारण आप सुन रहे हैं 103.7 MHz पर। लीजिए पेश है सदाबहार नगमे। फिल्म का नाम है काला पत्थर। 1977 की फिल्म। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें। साहिर के बोल, राजेश रोशन की तर्ज।

0: जा।
1: दोस्तों, कल्पनाएं भी कभी कभी मृग तृष्णा की तरह होती हैं, दूर से चमकती हुई, मन को आकर्षित करती हुई और दिल को एक नई दुनिया में ले जाती हुई। फिल्म मृग तृष्णा का गीत नवकल्पना भी कुछ ऐसा ही एहसास जगाता है। सपनों की कोमल उड़ान भावनाओं की मधुर सरगम है और मन के आकाश में उभरती नई उम्मीदों की रंगीन तस्वीर है।

अब सुनते हैं किशोर कुमार को फिल्म मेरे जीवन साथी में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल है राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: सदाबहार नगमे, अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11 बजने को हैं। अब हम आपको लेकर चलेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली, जहां से आप सुनेंगे पहले हिंदी में समाचार और उसके बाद 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार।

0: के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि ये सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतू गुप्ता सीबीआई की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The new

सुन रहे हैं। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। कल प्रातः 5:55 पर हम फिर हाजिर होंगे। अब आज्ञा दीजिए। जय हिंद।